हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103.4 MHz पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 20वीं तिथि, तदनुसार 11 जुलाई सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:56:29 हुए हैं। इसी के साथ शुरुआत होती है हमारी आज की ये सभा।

हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार, तत्पश्चात विविध भारती के कार्यक्रम वंदनवार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच मुक्त व्यापार समझौते सहित वाणिज्य और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बातचीत जारी है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और प्रमुख उद्योग तथा खेल जगत की हस्तियों से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की यात्रा पूरी करने के बाद न्यूजीलैंड पहुंचे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। भारतीय समुदाय ने भी उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी की दो दिवसीय

0: के स्वागत में ऑकलैंड के प्रसिद्ध स्काई टॉवर को भारतीय तिरंगे के रंगों से रोशन किया गया है। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये न्यूजीलैंड की 40 साल बाद पहली यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपोई साइवई ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों को लाभ होगा।
1: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
2: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावना है। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं, तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुँचा सकेंगे।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज बिहार के गया जी का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। स्वदेशी स्टील फिग्रेट INS महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना भारत की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसीलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। ये सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस बीच रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल की जाती है। भाजपा ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर मतदान 30 जुलाई को होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन अहमद अल मुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा AI क्षेत्रों पर केंद्रित रही। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा सिक्किम में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खेलों में फीफा विश्व कप में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 88वें मिनट में किया। आज तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। विंबलडन टेनिस में आज महिला सिंगल्स फाइनल में चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा का मुकाबला लिंडा नोस्कोवा से होगा। दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये है विविध भारती वंदन वार।

स्वामी विवेकानंद का कथन है, जिस तरह से विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न धाराएं अपना जल समुद्र में मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना गया हर मार्ग, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, भगवान तक जाता है। भक्ति संगीत।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। झरोखा सुनिए विविध भारती से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। श्री रामचरितमानस गान का 246वां भाग आप सुनेंगे अब से बस कुछ ही देर बाद सुबह 6:35 पर। सुबह 6:45 और शाम 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों चल रही है श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। आज 11वीं कड़ी, कलाकार हैं बांसुरी वादक पंडित रोनू मजूमदार। प्रस्तुति अनुश्री पाठक।

15 मिनट पर त्रिवेणी, 8:30 पर चित्रलोक, सुबह 9:30 और शाम 9:30 पर आप सुनेंगे आज के फनकार कार्यक्रम। हास्य अभिनेत्री और गायिका उमा देवी पर यह कार्यक्रम केंद्रित है। सुबह 10 बजे गीतों भरी कहानी। आज की कहानी है वो पुरानी बेंच। लेखिका है सौम्या शर्मा, प्रस्तुति राघवेंद्र सिंह नेगी। 11 बजे चित्रपट संगीत कार्यक्रम होगा। 11:30 पर मैटिनी शो। 12:05 पर सुनिए यादों की महफिल। दिन में 1 बजे सुरीला सफर, दिन में 2 बजे त्रिवेणी। दो बजकर 30 मिनट पर सदाबहार नगमे। दिन में 3 बजे मनचाहे गीत कार्यक्रम होगा। 3:30 पर नाट्य तरंग के अंतर्गत आप सुनेंगे नाटक रहीम की ढाणी। लेखक हैं हरी राम आचार्य और निर्देशक महेंद्र मोदी।

0: शाम 4 बजे पिटारा में बॉम्बे टॉकीज के अंतर्गत लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग सुनवाया जाएगा, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। शाम 5 बजे छाया गीत, 5:30 पर तराने नए पुराने। 6:35 पर संध्या रंजन कार्यक्रम होगा। 6:45 पर संगीत सरिता में श्रृंखला चल रही है, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 11वीं कड़ी आज। शाम 7 बजे अभिनेता प्राण द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला कार्यक्रम सुनवाया जाएगा। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत जिज्ञासा। रात 8 बजे हवा महल में सुनो कहानी श्रृंखला के अंतर्गत कहानी विश्वास का दूसरा भाग, वाचक स्वर अमरकांत दुबे। 8:15 पर चित्रलोक, 9 बजे आपके लिए। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा हास्य अभिनेत्री और गायिका उमा देवी पर। 10 बजे छायागी, 10:30 पर ढलती जाए रात। 10:30 रूपरेखा आज दिन भर के कार्यक्रमों की, सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक और आ गया।
2: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए
0: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, आइए सुने श्री रामचरितमानस का भाग 246।

मुनि अगस्त्य के एक परम ज्ञानी शिष्य थे सुतीक्ष्ण, जिनकी श्री राम चरणों में अथोर प्रीति थी। वन में विचरण करते हुए जब उन्होंने अपने आराध्य के आगमन का समाचार सुना, तो प्रेम और भक्ति भरे पुलक से उनका शरीर कंटकित

हो गया। उन्हें विश्वास नहीं होता कि वे प्रभु के दर्शन पाएंगे। प्रेम में मग्न सुतीक्ष्ण प्रभु का गुणगान करते राह में नाचने गाने लगे। उनके पग आगे पड़ते हैं या पीछे, इसकी भी सुधि नहीं रही। श्री राम एक पेड़ की आड़ लेकर उनकी उन्मत्त दशा देख रहे थे। भक्तों का उद्धार प्रभु की बाण है, वे सुतीक्ष्ण के हृदय में प्रकट हुए। मुनि प्रेमोन्मत्त होकर बीच राह में अचल समाधि सी स्थिति में स्थिर बैठ गए। अपने आराध्य के निकट आ जाने के बाद भी जब उनका ध्यान नहीं टूटा, तो प्रभु ने उनके हृदय में अपना राजसी रूप छोड़ चतुर्भुज रूप प्रकट किया, और उस रूप के अंतर ध्यान होते ही सुतीक्ष्ण को श्री राम, लक्ष्मण और सीता के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हुए। वे दंड की भांति श्री राम के चरणों में गिरे ही थे कि प्रभु ने उठाकर उन्हें हृदय से लगा लिया।

0: में आपको सुनवा रहे हैं श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। लीजिए सुनिए इस श्रृंखला की 11वीं कड़ी।
1: श्रोताओं नमस्कार। पंडित जी, आज हमारे श्रोताओं को बताइए कि पंडित जगन्नाथ पहाड़ी आपके गुरु जी थे, उनके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। और हमें याद आ रहा है कि पंडित छन्नूलाल मिश्र से भी आपकी बड़ी गहरी मित्रता थी और बहुत कुछ उन्हें आप गाते हुए सुनते थे।
2: गाते हुए सुनते थे, उनको मैं चाचा कहता था और वो इतना प्यार करते थे कि बनारस में जब मैं बजा रहा था कला प्रकाश के लिए तो उनका फेवरेट राग हंसध्वनि था
1: जी,
2: और हंसध्वनि मैं उस दिन बजा रहा था। तो मेन राग हंसध्वनि कोई बजाना नहीं चाहते क्योंकि उसमें कॉम्बिनेशन कम है ना
1: जी, जी।
2: वो 10 मिनट बाद तो कलेजे के ऊपर आने लगता है राग
1: जी।
2: तो मैंने 1 घंटा बजा दिया, 1 घंटे से ज्यादा। तबले में उनके पुत्री थे पंडित राम कुमार मिश्रा, और आके लिपट लिए मुझे, बोले कहा बजौला, कहा बजौला तू हंसध्वनि, हमके चाचा हिले तो तुके सुनावत रहली। तो बहुत प्रसन्न हुए। तो एक चीज उनका मैं बजाता हूँ, और रामायण भी बहुत अच्छा गाते थे। तो मेरी जो आध्यात्मिक जीवन है उस वजह से हम लोग कभी कभी छन्नू महाराज और हम एक होटल में रहते थे तो बड़ा आध्यात्मिक चर्चा करते थे। वो बोलते थे कथा प्रवचन क्यों छोड़ दिया तूने।
1: यहाँ पर अपने श्रोताओं को हम बता दें कि पंडित रोनू मजुमदार पहले एक कथावाचक थे और अभी भी इनके सामने न कोई कागज है न कलम है, ये ऐसे स्पॉन्टेनियस बोल रहे हैं बिना किसी तैयारी,
2: बिना कुछ किसी चीज की मुझे जरूरत नहीं। तो मैं छन्नू महाराज जी को, एक उनकी चीज है जिसमें खोलो श्याम अब चंदन केवड़िया, अकेली डर लागेला धीरे धीरे, सावन झर लागेला धीरे धीरे। तो ये बजा के जो बोलते हैं लोग कि आपके बजाने में कुछ आध्यात्मिक रस आ रहा है, वो पंडित जगन्नाथ पहाड़ी जी का देन
1: जी,
2: है
1: जी। तो तनी पंडित जी, पंडित छन्नूलाल मिश्र वाला सुनावे बांसुरी पर आप।
2: हाँ

0: वाह अद्भुत।
1: उससे पहले जगन्नाथ पहाड़ी जी की आपने बात कही तो पंडित जगन्नाथ पहाड़ी बहुत बड़े कथावाचक हुए। 20,000 लोग, जब मैं उल्लासनगर बनारस से आने के बाद पहले उल्लासनगर में झूलेलाल मंदिर में वो आते थे, उनकी एक लाइन सुना रहा हूं कि धुनी उसके दर पे तू रमा ले, वो तुम पे रीझ जाएगा, उसके दर को अपना घर बना ले, वो तुझ पे रीझ जाएगा, वो दिल पसीज जाएगा। मेरे भगवान को मगरूर नहीं भाती है, उसे तो भावना की डोर खींच लाती है। पुकार दिल से निकले वो अर्श हिलाती है, जाके भगवान के दहलीज से टकराती है। तो ऐसे कवि हुए कि जिसका जवाब ही नहीं
0: जी। और कविता का गुण आप में भी आया है
1: जी, उनसे इंस्पायर होके मैंने लिखा, उन्हीं की कृपा। ये समझिए जनेऊ संस्कार होता है हमारे हिंदुओं में। बाल योगी जी ने मेरा जनेऊ किया था हरिद्वार में जब मैं 13 साल का था
0: जी।
1: तो मैं उनके साथ संन्यास लेके जाने के लिए तैयार हो गया था।
0: ओ।
1: तो फिर उन्होंने मेरे कपाल को देख के कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान पार्टीशन जब हुआ तो सब कुछ हमारा लूट गया, तो वो सब वापस आएगा तुम्हारे नसीब से ही, तुम गृहस्थ आश्रम में रह के बांसुरी की सेवा करो क्योंकि तुम पूर्ण कथावाचक नहीं हो, तुम थोड़ी कुछ कथा करते हो फिर बीच में बांसुरी बजाते हो, ये नई चीज है, ये तुम्हें जीवन में काम आएगा। तो उससे मैं इंस्पायर होकर मैंने लिखा, चाहे ऊंचे महल बना लो मालाओं से कंठ सजा लो, चाहे ऊंचे महल बना लो मालाओं से कंठ सजा लो, जब तक हृदय न तिलक करेगा ये अभिनंदन व्यर्थ रहेगा।
0: वाह।
1: ये मैंने नरेंद्र मोदी जी को भी सुनाया जब मुझे पद्मश्री मिला तो अलग से वो आए फोटो खिंचाने के लिए मेरे पास।
0: क्या बात है।
1: अरे कैसे हैं मजुमदार जी, अब कब मिले थे जब वो उनके ऊपर लगा था कि वो इंटॉलरेंस और वो सब, तब से लेके ये कब मिले, और ये पद्मश्री तो मुझे 2024 में 26 जनवरी को अनाउंस हुआ कि इनको पद्मश्री दिया जाएगा रोनू मजुमदार जी को, मगर मिला तो मुझे 25 में ना, जिस दिन अवार्ड वितरण करते हैं, मगर उनको याद था कि मैं कविता करता हूँ।
0: क्या बात है,
1: कविताएं लिखना चालू है ना
0: जी। अच्छा
1: हाँ जी। मजुमदार जी और क्या हाल है आपका,
0: क्या बात
1: तो
0: है?
1: मैं आज भी लिखता हूँ, ये मेरा लिखा हुआ है
0: जी।
1: अजहू न आए घनश्याम, राह तकत हारे नैन हमारे
0: जी।

0: आज भी कितनी बंदिशें मैंने कोरोना काल में लिखे होंगे कि पूरी ग्रंथ भर गई।
1: क्या बात है।
0: जो मेरा बड़ा बेटा कह रहा है कि पिताजी छपवाइए इसको, पिताजी की बंदिशें।
1: हाँ, हमारी ओर से।
0: मैंने कहा कि मैं क्या साथ में ले जाऊंगा बेटा। बोले आप साथ में कुछ लेके नहीं जा सकते, इसीलिए दे के जाइए।
1: बिल्कुल सही बात।
0: उससे मैं जीत नहीं पाता हूँ। मेरा जो बड़ा बेटा है वो बहुत मेरा फैन सबसे बड़ा वो है,
1: संगीत के क्षेत्र में है वो भी।
0: वो डेंटिस्ट है मगर बांसुरी बहुत अच्छा बजाता है।
1: अच्छा।
0: उसने इसको अपना प्रोफेशन, अपना व्यवसाय नहीं बनाया मगर वो प्लेइंग में कम नहीं है।
1: जी,
0: छोटे बेटे ने बनाया, ऋषिकेश ने।
1: जी जी, रोनुदा आप एक साधक के रूप में भी जाने जाते हैं, बांसुरी को आपने साध लिया है, तो जब एक साधक अध्यात्म की ओर जाता है तो क्या होता है?
0: ओशो रजनीश के वहां भी मैंने बजाया और वो बोले कि आज तुमने बहुत अच्छा बजाया।
1: जी।
0: तो मैंने जवाब दिया मैं अपने लिए बजा रहा था। बोले क्यों? मैंने कहा क्योंकि आप पैसे तो देते नहीं है तो मैं अपने लिए क्यों ना बजाऊं। बोले कि जब पैसे मिले तब भी अपने लिए बजाना। जब आध्यात्म मालूम पड़ने लगता है

0: तब इंसान अपने लिए बजाने लगता है। इसीलिए राजन भैया को मैं इतना मानता हूं, जब राजन भैया गए तो मैं इस तरह रोया कि जैसे बच्चे फूट फूट के रोते हैं। वो कहते थे कि जब तुम ईश्वर के लिए बजाओगे तो सब सुनेंगे, जब तुम उनके लिए बजाओगे तो वो सुनेंगे नहीं।
1: जी
0: इसीलिए ईश्वर तो अंदर है, तो इसीलिए खुद के लिए बजाओ।
1: जी
0: हर चीज में ऐसा सोचो कि तुम छात्र हो, सब्जेक्ट से प्यार करो, सक्सेस से नहीं।
1: जी जी
0: आजकल जो शिष्य आते हैं मेरे पास, वो पहले बोलते हैं कि YouTube में मेरे लाइक्स नहीं बढ़ रहे हैं। अरे मैंने कहा YouTube में लाइक्स बढ़ भी जाएंगे तो तेरा बजाना थोड़ा ही अच्छा होगा, वो तो पैसे से भी तू लाइक्स खरीदा जाता है आजकल। ये नहीं पूछ रहा है तू कि मिराज़े गजल में आपने ऐसी फ्लूट कैसे बजाई थी,
1: जी जी
0: ये क्यों नहीं पूछ रहा है?
1: बिल्कुल।
0: सलोना सा सजन और मैं हूं, ये कैसे उसमें फ्लूट आया? कहां आशा जी गुलामली मिलके कर रहे हैं काम और मैं उसमें बांसुरी बजा रहा हूं। तू ये क्यों नहीं पूछ रहा है कि जमीन आसमान में वो आपका आलाप गुरुजी, वो रे को सा करके क्यों बजाया आपने, ओरिजिनल सा में क्यों नहीं बजाया?
1: जी तो हम तो आपसे अनुरोध कर रहे हैं पंडित जी कि बजा के सुनाए हमारे श्रोताओं को।
0: देखिए मैं आपको ओरिजिनल सा से भी सुनाता हूं, आपको आनंद नहीं आएगा। अभी ठीक ठाक है, अब रे से बजाऊंगा।
1: जी

0: ऐसे करके लुई बैंक्स घुसते हैं, मेरी बांसुरी खत्म होती है। तो मैं चाहता हूं कि जो संगीत में बांसुरी लेना चाहते हैं, अगर उसको फुल टाइम लेना है तो सक्सेस के बारे में इतना ना सोचें,
1: जी जी
0: सब्जेक्ट के बारे में सोचें। मैं कितने प्रकार के विश्व के बांसुरी ट्राई करो। अभी स्पीक मैके ने मुझे आयरलैंड भेजा था,
1: जी जी
0: आयरिश फ्लूट मुझे
1: जी,
0: गिफ्ट किया उन लोगों ने,
1: क्या
0: और
1: बात है।
0: वो ऐसी बांसुरी है कि आप देखेंगे, आज नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं आयरिश बांसुरी आपको, पूरा ब्लैक है,
1: जी जी
0: तो आज भी मैं इकट्ठा कर रहा हूं
1: जी जी
0: कि कुछ ना कुछ मुझे मिलता जाए।
1: जी, अब आज की इस कड़ी को यहाँ पर विराम दे रहे हैं। कल नई जानकारी और बांसुरी की तान के साथ उपस्थित होंगे फिर से। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।
2: शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की 11वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने। बांसुरी संगत कल्पेश सांचला की और तबला संगति अजीत पाठक की। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी किरण बंग, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

बारादरी फिल्म का ये गीत आपने सुना, 1955 में ये फिल्म आई थी। इस गाने में आवाजें थी मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की, खुमार बाराबंकी के बोल थे और संगीतकार थे नौशाद। अक्सर संगीतकार नौशाद के गानों में उन्हें नौशाद समझ लिया जाता है। संगीतकार नौशाद का नाम था शौकत अली दहलवी और 1947 में उन्होंने फिल्म दिलदार में सबसे पहले संगीत दिया था। उनकी जो सबसे मशहूर फिल्म है वो बारादरी है। हालांकि एक फिल्म आई थी नगमा, जिसमें उनके कुछ बेमिसाल गाने थे और फिल्म नगमा के जरिए ही असल में वो नौशाद कहलाए। इससे पहले की फिल्मों में उनके जो उनका जो नाम रिकॉर्ड पर आया वो था शौकत अली दहलवी। तो नगमा फिल्म का गाना सुनते हैं, शमशाद बेगम की आवाज, जे नक्षप के बोल हैं।

और अब संगीतकार नाशाद का अगला गाना बड़ा भाई फिल्म से है। अशा भोसले और तलत महमूद की आवाजें और गीतकार हैं प्रेम सक्सेना।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। और इस कार्यक्रम में अब हम याद कर रहे हैं गायिका उमा देवी को, जो अभिनय की दुनिया में टुनटुन कहलाईं।

उमा देवी की आवाज में दर्द फिल्म का ये गाना आपने सुना। 1947 में ये फिल्म आई थी, शकील बदायूनी के बोल थे और संगीत नौशाद का था। बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि तकरीबन 22-23 साल की उम्र में उमा देवी अपने घर से भागकर बंबई आ गई थी। उस समय ये शहर बंबई कहलाता था और नौशाद साहब ने उनका ऑडिशन लिया। दर्द फिल्म के ये गाने बड़े ही लोकप्रिय हुए और एक तरह से ये कि उमा देवी जो हैं वो एक बड़ी गायिका बन गई थी। फिर अनोखी अदा फिल्म में उन्होंने गाने गाए और एक बड़ी ही कामयाब पार्श्व गायिका के तौर पर उन्होंने अपनी जगह बनाई। लेकिन दिलचस्प बात आपको बताते हैं और वो ये कि दिलीप कुमार ने उनका नाम एक्टिंग के लिए उमा देवी की बजाय टुनटुन रखा था और लोगों ने उन्हें देखकर रुपहले पर्दे पर बहुत मजे लिए। उन्होंने पूरी जिंदगी लोगों को बहुत हंसाया।

0: चांदनी रात है, हाय क्या बात है।
1: दो फिल्मों की गीत हमने आपको सुनाए, अनोखी अदा और चांदनी रात। दोनों गाने शकील बदायूनी के और संगीत नौशाद का था। आज है उमा देवी की याद का दिन और सुबह 9:30 और रात 9:30 पर आप सुनेंगे उन्हीं पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम।

ये था उमा देवी और बाबुल की आवाजों में अंजुम जयपुरी का लिखा गीत, बिपिन बाबुल का संगीत था। इसी के साथ आज का अबूले बिसरे गीत कार्यक्रम खत्म होता है।

0: लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम।

नमस्ते रोहतास कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी श्रोताओं को आपके रेडियो दोस्त सचिन के तरफ से। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सुविचार से।

सुविचार के उपरांत अब आइए एक नज़र डालते हैं आज के इतिहास पर। आज के दिन घटित ऐतिहासिक घटनाओं की बात करें तो आज 11 जुलाई है और आज ही के दिन सन 1921 ईस्वी में मंगोलिया को चीन से आज़ादी मिली, तो वहीं सन 1930 ईस्वी में सर डॉन ब्रेडमैन ने लॉर्ड्स के मैदान में इंग्लैंड के खिलाफ एक दिन में 309 रनों की पारी खेली थी। और अब बात करते हैं सन 1977 की। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया, तो वहीं सन 1995 ईस्वी में आज ही के दिन अमेरिका एवं वियतनाम के बीच कूटनीतिक रिश्ते बने। सन 2002 ईस्वी में आज ही के दिन चांग शांग दक्षिण कोरिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, तो वहीं सन 2003 ईस्वी में लाहौर में दोस्ती बस और दिल्ली से सदा ए सरहद बस का परिचालन शुरू हुआ था। और अब जान लेते हैं आज के दिन जन्म लेने वाले महापुरुषों के नाम। तो सन 1902 ईस्वी में आज ही के दिन जन्म हुआ था सरदार बलदेव सिंह का। वे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ एवं देश के प्रथम रक्षा मंत्री के रूप में काम किए थे। सन 1857 ईस्वी में सी शंकरन नायर का जन्म हुआ, जो कि भारतीय न्यायाधीश एवं राजनेता थे। तो श्रोताओं, ये थे आज के दिन जन्म लेने वाले महापुरुषों के नाम। और अब जान लेते हैं आज के दिन दुनिया को अलविदा कहने वाले व्यक्ति। सन 2003 ईस्वी में भीष्म साहनी ने दुनिया को अलविदा कहा। वे मशहूर भारतीय लेखक थे। तो वहीं सन 2011 ईस्वी में लेफ्टिनेंट रामा राघोबा राणे, जो कि परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक थे, उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। तो ये थे आज के दिन दुनिया को अलविदा कहने वाले महान लोग। और अब दिवस की बात करें तो आज 11 जुलाई है, यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस। आज का यह दिन सिर्फ बढ़ती हुई आबादी के आंकड़े गिनने का नहीं है, बल्कि हमें यह सोचने का अवसर देता है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को कैसा भविष्य सौंप रहे हैं। जब हम छोटे परिवार और बेहतर शिक्षा की ओर कदम बढ़ाते हैं, तब हम हर युवा को उज्जवल भविष्य और पर्यावरण के अनुकूल दुनिया दे सकते हैं। आइए आज के दिन हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम अपने सीमित संसाधनों का समझदारी से उपयोग करेंगे और आने वाले कल को सुरक्षित बनाएंगे। कार्यक्रम में आगे एक नज़र डालेंगे स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों पर। फिलहाल आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम में एक गीत।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: अंतराल के बाद पुनः आप सभी का एक बार स्वागत करते हैं और अब जानते हैं रोहतास एवं कैमूर में आयोजित स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में। रोहतास जिलाधिकारी श्री दीपक कुमार मिश्र ने संग्रहालय स्थित कार्यालय कक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में सहयोग पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की प्रगति एवं गुणवत्ता की विस्तृत समीक्षा की। जिले में सहयोग पोर्टल पर अब तक कुल 9,382 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 8,128 आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है। 967 आवेदन लंबित है तथा 287 आवेदन नियमानुसार अस्वीकृत किए गए हैं। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने विभिन्न आवेदनों का विवरण स्वयं पोर्टल पर देखकर उनके निष्पादन की गुणवत्ता का बारीकी से परीक्षण किया। उन्होंने कहा कि केवल आवेदनों का निष्पादन कर देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका गुणवत्तापूर्ण एवं संतोषजनक होना भी अत्यंत आवश्यक है। बैठक में बताया गया कि सहयोग पोर्टल पर आवेदन के निष्पादन के उपरांत आवेदकों द्वारा 1 से 5 तक की रेटिंग देने का प्रावधान है, जिसमें कि 1 न्यूनतम संतुष्टि तथा 5 सर्वोच्च संतुष्टि को दर्शाता है।

मुफ्त बिजली योजना एवं यूटिलिटी स्कीम की प्रगति की समीक्षा को लेकर जिलाधिकारी रोहतास श्री दीपक कुमार मिश्र की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में रूफटॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना, प्राप्त आवेदनों, नेट मीटरिंग, बैंक ऋण, सब्सिडी भुगतान एवं लंबित मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करते हुए पात्र उपभोक्ताओं को बिना विलंब योजना का लाभ उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने पंचायत से लेकर शहरी क्षेत्रों तक व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने तथा आवेदन, तकनीकी स्वीकृति, नेट मीटरिंग की प्रक्रिया को सरल एवं समयबद्ध बनाने पर जोर दिया।

रोहतास जिला पदाधिकारी श्री दीपक कुमार मिश्र की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई, जिसमें कि उप विकास आयुक्त रोहतास के अतिरिक्त जिला स्तरीय बैंकों के पदाधिकारी उपस्थित हुए। विदित हो कि पूर्व वर्ष की भांति इस वित्तीय वर्ष में भी इस योजना में कुल 339 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिसमें अभी तक विभिन्न बैंकों द्वारा मात्र 12 ऋण आवेदनों की स्वीकृति एवं 3 आवेदनों का भुगतान किया गया है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में अवर निरीक्षक मद्य निषेध के पद पर चयन हेतु लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन कल यानी कि 12 जुलाई 2026 को रोहतास जिले में एकलपाली में किया जाएगा। परीक्षा को स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं कदाचार मुक्त वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला पदाधिकारी रोहतास श्री दीपक कुमार मिश्र एवं पुलिस अधीक्षक रोहतास श्री रोशन कुमार ने समरहालय स्थित DRDA सभागार में प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों एवं सभी केंद्र जी के साथ बैठकर ब्रीफिंग के साथ की तथा आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए।

और अब बात कैमूर जिला की। जिला प्रशासन द्वारा जनता की समस्याओं के त्वरित निष्पादन और सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कैमूर जिले के सभी कार्यालयों में जनसंवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों में जिला मुख्यालय से लेकर सुदूर पंचायतों तक के अधिकारियों ने हिस्सा लिया और आम नागरिकों से सीधा संवाद किया गया। जिला पदाधिकारी महोदय के जनता दरबार में विभिन्न विभाग से संबंधित कुल 36 आवेदन प्राप्त हुए, जिसका नियमानुसार त्वरित निष्पादन संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया। ऑनलाइन पोर्टल पर किए गए प्रविष्टि के अनुसार अब तक के जिला मुख्यालय स्तर पर 20 अधिकारियों ने 87 नागरिकों के साथ संवाद स्थापित किया।

के पेंशनधारियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत 1100 रुपये की राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी के खाते में स्थानांतरित की गई है। इस अवसर पर कैमूर जिला के जिला पदाधिकारी उप विकास आयुक्त सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग जिला प्रोग्राम पदाधिकारी लाभार्थियों के साथ ऑनलाइन माध्यम से जुड़े। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री बिहार के द्वारा कहा गया कि राज्य के सभी गरीबों, वृद्धजनों, विधवा महिलाओं एवं दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। तो श्रोताओं, ये था रोहतास एवं कैमूर में आयोजित गतिविधियां। कार्यक्रम में आगे एक नज़र डालेंगे समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। फिलहाल आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम में एक और गीत।

और अब श्रोताओं नज़र डालते हैं समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। हमारे स्टूडियो में इस समय मौजूद है दैनिक भास्कर, प्रभात खबर, हिंदुस्तान और दैनिक जागरण। बिहार में बांकीपुर उपचुनाव में भाजपा ने बदला प्रत्याशी, यह खबर सभी समाचार पत्रों की सुर्खियां रही हैं। हिंदुस्तान के हवाले से खबर है, बांकीपुर में अभिषेक की जगह अब नीरज बने भाजपा के प्रत्याशी। प्रभात खबर अपने पहले पेज पे लिखा है, भाजपा ने बदला प्रत्याशी, अभिषेक की जगह नीरज। दैनिक जागरण ने लिखा है, भाजपा ने बदला प्रत्याशी, अब नीरज सिन्हा को दिया अपना सिंबल। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, भाजपा ने 72 घंटे में अपना प्रत्याशी बदला।

दैनिक जागरण की सुर्खियां है, केंद्र सरकार ने फिर माना E20 से 5% तक माइलेज घटना संभव, और राम मंदिर के 20 गणनाकर्मियों ने सामूहिक इस्तीफा दिया। एक देश एक चुनाव के तहत हो सकते हैं 2029 के लोकसभा चुनाव, और ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप कुरुक्षेत्र के लिए भूमि अधिग्रहण की तैयारी शुरू।

दैनिक भास्कर के हवाले से खबर है, बिहार में हर महीने की 10 तारीख को पेंशन दिवस के रूप में मनेगा। और विश्व कप फुटबॉल में मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा फ्रांस। और मोबाइल रिचार्ज का गणित बदलेगा, बिना डेटा के प्लान सस्ते किए जाएंगे, ट्राई ने मसौदा पेश किया।

प्रभात खबर की सुर्खियां हैं, आज गया जी में विधायकों की ट्रेनिंग, उपराष्ट्रपति भी रहेंगे। बिहार में कल यानी कि 12 और 13 को झमाझम बारिश की संभावना, और पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के आखिरी दिन ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के साथ दोनों देशों के बीच खेल सहयोग रोडमैप जारी किया, और 26 जुलाई को बिहार में 72वीं बीपीएससी पीटी की परीक्षा होगी।

हिंदुस्तान के हवाले से खबर है, नीट डमी परीक्षार्थी बनने के लिए 15 से 20 लाख में हुआ था सौदा। और सासाराम में बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या में फांसी की सज़ा बरकरार। साथ ही साथ बिना पर्ची अब नहीं मिलेंगी।

12% से ज़्यादा अल्कोहल मिश्रित दवा, राजपाल यादव की सज़ा पर हाई कोर्ट की भी लगी मुहर। मेडिकल कॉलेज सीसीटीवी निगरानी के नियम माने,

सरकार और संगठन में समन्वय बढ़ाए गए एनडीए राज्य के सर्वांगीण विकास और जन कल्याण पर जोर। बड़ी मुश्किल से बिहार को संवारा है, ये कहना है बिहार के पूरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। और बीपीएससी 72वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 26 जुलाई को आयोजित की जाएगी। और अब श्रोताओं, समय हो चला है कार्यक्रम में आपसे विदा लेने का, तो अपने रेडियो दोस्त सचिन को दीजिए इस कार्यक्रम से इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। दिल्ली से प्रसारित समाचार प्रभात के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

रक्षा, आपदा प्रबंधन और पशुपालन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरी आज नौसेना में शामिल होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की। मजबूत तटीय सुरक्षा उपायों के निर्देश दिए। फीफा विश्व कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में, आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से। और विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा हमवतन लिंडा नोस्कोवा के साथ खेलेंगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन एवं डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ब्यौरा हमारे

0: संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑकलैंड स्थित गवर्नमेंट हाउस में औपचारिक स्वागत किया गया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने उन्हें राजकीय सम्मान के साथ रिसीव किया। औपचारिक स्वागत के बाद दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान रक्षा, पशुपालन, डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ, जिससे भारत न्यूजीलैंड साझेदारी को नई गति मिली। इसके बाद दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड बिजनेस एंगेजमेंट कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने रिकॉर्ड कार समय में मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने पर खुशी जताई और विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2 गुना हो जाएगा। उन्होंने न्यूजीलैंड के उद्योग जगत को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि भारत केवल एक बड़ा बाजार ही नहीं बल्कि वैश्विक विकास का एक सशक्त लॉन्च पैड भी है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
0: वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 40 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
2: 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है और एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है। ये मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। ये हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा, हमारी मित्रता के नए संकल्प को दोहराने वाला है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा। प्रधानमंत्री ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते को द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने वाला एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
2: लोकतांत्रिक मूल्यों के में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य है उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
0: न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई देगी। उन्होंने कहा कि सामरिक साझेदारी से व्यापार सहित कई क्षेत्रों में सहयोग का दायरा और बढ़ेगा।
3: Marking the first visit by an Indian Prime Minister to New Zealand in 40 years. This visit is also a significant milestone in the New Zealand-India relationship. When I visited last year, you welcomed me and my delegation with great warmth and tremendous generosity.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और उद्योग तथा खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से भी मुलाकात करेंगे। स्वदेशी स्टील फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। ये भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का प्रमुख संरक्षक है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है।
4: हमारे व्यापार का 90% से अधिक हिस्सा समुद्री मार्ग से ही होता है। विशाल इकोनॉमिक जोन है, हमारे आइलैंड टेरिटरीज है और यह जो रीजन है वह आज पहले से कहीं अधिक कॉम्प्लेक्स और अधिक चैलेंजिंग होता जा रहा है और इस रीजन में एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स की प्रेजेंस और एक्टिविटी लगातार बढ़ रही है, जिससे आप प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहे हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
5: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे

0: परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। उन्होंने वर्तमान बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हुए पत्तन सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया।
2: इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, खुफिया ब्यूरो के निदेशक, सीमा प्रबंधन सचिव, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय सचिव, मत्स्य पालन विभाग के सचिव, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। BOPS का गठन मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 की धारा 13 के प्रावधानों के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में किया जा रहा है। ब्यूरो का नेतृत्व एक महानिदेशक करेंगे और यह पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के अधीन काम करेगा। श्री शाह ने मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के साथ मछली पकड़ने वाले बंदरगाहों और मछली उतारने के केंद्रों के लिए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज एक दिन के बिहार दौरे पर गया जी जाएंगे। इस दौरान वे बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हाल के तनाव के बावजूद अमेरिका और ईरान वार्ता जारी रखने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने वार्ता जारी रखने का अनुरोध किया है और अमेरिका इस पर सहमत हो गया है। अमेरिका ने ईरान से होर्मुस जलडमरू मध्य में जहाजों पर हमले रोकने की मांग की है। इन हमलों के कारण तनाव बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। वेनेजुएला में पिछले महीने आए 2 शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या 4,000 से अधिक हो गई है। वेनेजुएला संसद प्रमुख जॉर्ज रोड्रिगेज के अनुसार अब तक 4,118 लोगों की मौत हो चुकी है और 16,740 लोग घायल हुए हैं, वहीं हजारों लोग अब भी लापता हैं। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत लोगों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के काम में लगे आशीष अग्रवाल से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
3: प्लास्टिक को रिप्लेस कर दिया हमने कपड़े के बैग से, वैसे ही प्लास्टिक की बॉटल्स को रिप्लेस कर दिया मेटल की बॉटल से, टिश्यू पेपर को रिप्लेस कर दिया रुमाल वगैरह से। इन अनरीड मेल्स 2000 रहेंगे, 5000 रहेंगे, 10000 रहेंगे, 100 रहेंगे, कितना बड़ा मेल है उसमें अटैचमेंट है कि नहीं है, तो सिर्फ इनबॉक्स को अगर हम लोग क्लियर रखते हैं उससे बहुत सारे एमिशंस बच सकते हैं।
4: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये चर्चा आज सवेरे 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड पर प्रसारित होगी। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 3 दिन मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। और अब खेल खबरों के साथ है मुकेश कुमार।
5: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। लॉस एंजलिस में आज क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हरा दिया। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 88वें मिनट में किया। इससे पहले फ्रांस ने पहले क्वार्टर फाइनल में मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 शुरू होगा। वहीं चौथे क्वार्टर फाइनल में कल मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। उधर विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज की कैरोलिना मुकोवा का सामना लिंडा नेस्कोवा से होगा। चेक गणराज की दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची हैं। पुरुष सिंगल्स फाइनल में कल विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सेनर का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव से होगा। सेनर ने सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच को और ज़वरेव ने ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इस बीच लंदन के लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में कल के 21 रन पर 1 विकेट के स्कोर से आगे खेलेगा। कल का खेल समाप्त होने के समय माया बाउचियर 17 और हीथर नाइट 1 रन बनाकर क्रीज पर थी।

0: इससे पहले भारत ने पहली पारी में 285 रन बनाए थे। स्मृति मानधना ने 83 रन, कप्तान हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने अर्धशतक बनाए।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद कनक। पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण से संबंधित खबर आज अखबारों के पहले पन्ने पर है। हिंदुस्तान ने सरकार का बयान दिया है, E20 से माइलेज थोड़ा घटेगा मगर इंजन सुरक्षित। जनसत्ता लिखता है, पेट्रोलियम मंत्रालय ने दी जानकारी, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से 5% कम हो जाएगी औसत। पत्र ने संपादकीय में लिखा है, ये अच्छा हुआ कि अंततः सरकार की ओर से ये स्पष्ट किया गया कि E20 ईंधन से गाड़ियों का माइलेज भले ही कम होता हो लेकिन ये ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ पर्यावरण के लिए उपयोगी होने के साथ ही किसानों के लिए लाभकारी भी है। अल्कोहल युक्त दवाओं पर नए नियम लागू होने पर नवभारत टाइम्स ने नहीं मिलेगी छूट से लिखा है, अल्कोहल 12% से अधिक तो डॉक्टर की पर्ची से ही दवा, सरकार ने कहा हो रहा था गलत इस्तेमाल। सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान बदतमीजी करने पर याचिकाकर्ता को कक्ष से बाहर निकाले जाने की खबर दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स और हिंदुस्तान में है। दिल्ली में भूजल में तय सीमा से अधिक यूरेनियम, NGT सख्त, अमर उजाला की खबर है। वंदे मातरम जन गण मन को लेकर नई गाइडलाइन पर पंजाब केसरी लिखता है, सभी राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं और पहले वंदे मातरम तथा उसके बाद जन गण मन गाया जाएगा। फीफा विश्व कप की खबर देते हुए जनसत्ता ने लिखा है, गोल्डन बूट की दौड़ में अब एम्बाप्पे आए मेस्सी के बराबर। अमर उजाला ने अमरनाथ यात्रा पर लिखा है, प्रकृति में दखल से जल्दी अंतर्ध्यान हुए बाबा बर्फानी। दैनिक भास्कर ने अपने खास आलेख में लिखा है, अतीत आज से बेहतर ये सच नहीं, बीते कल की चाहत में आज गुम न होने दें, यादों से ऊर्जा लें, भविष्य की चुनौतियों से लड़ सकेंगे।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने आर्थिक तथा रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा, आपदा प्रबंधन और पशुपालन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वदेशी स्टील फ्रिगेट महेंद्र गिरे आज नौसेना में शामिल होगा। फीफा विश्व कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा। आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। और विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा अपने ही देश की लिंडा नोस्कोवा से खेलेंगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे दिल्ली से प्रसारित समाचार प्रभात। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103.4 MHz पर। प्रातः के 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है देशभक्ति संगीत।

इसी के साथ ही देशभक्ति संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है आपके पत्रों पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो दोस्त सचिन। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ से। आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। इस गीत को सुनने के लिए जो पत्र हम तक पहुंची है, आप हैं फुटानी चौक नरहन एस्टेट से ललन मिश्रा जी, उदयकांत ठाकुर, अमन परासर, बेबी आराध्या और लल्लू पंडित। आप हैं मिसर मोहल्ला नरहन बाजार से भाई फटफटिया झा, गुंजन परासर, अमित, सुमित, छोटू, बी के सूर, गनैया। और आप हमारे श्रोता हैं सदाबहार रेडियो श्रोता संघ ताजपुर मुरवा से भाईकारी रायकारी, श्रीमती मीनाकारी, पुंजराज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की।

नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा, ढोली सकरा से आप हमारे श्रोता हैं जयंत कुमार बैरागी। और आप हमारे श्रोता हैं ब्रह्मपुरा मणिगांछी से भाई अच्छेलाल राय, श्रीमती पानो देवी, मुकेश कुमार राय, प्रेम कुमार और प्रिंस कुमार।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने जीवन मृत्यु फिल्म का ये गीत सुना। आनंद बख्शी के बोल थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। और अब लीजिए सुनिए आशा भोसले और कुमार सानू की आवाज़ों में, रानी मलिक के बोल हैं, नदीम शर्मन का संगीत है, फिल्म का नाम है जान तेरे नाम। इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश आई है छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से, द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और आप हैं झवेंद्र कुमार वर्मा। आप सब श्रोता हैं महादेव घाट अमलेश्वर से, डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर।

आप हमारे श्रोता हैं गोकुल चौक गंगा जिला सहरसा से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन विद्यार्थी, राजीव रंजन विद्यार्थी, संजय कुमार विद्यार्थी, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम कुमारी साक्षी, आप हैं बुल्की वाली फलना झा, नया नगर सुपौल से श्वेता रंजन, पप्पू जी, रजनीश कुमार, आनंद कुमार, आशुतोष कुमार, अमिताभ कुमार और आप हैं गजेंद्र कुमार निराला। और आप हमारे श्रोता हैं नगर निगम वार्ड 28 नाज मंजिल में असौल सीतामढ़ी बिहार से अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, बहू रुबीना वसीम, बाबू आरिज वसीम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, नवासा अरहान बाबू, आप हैं नवासा हमजा बाबू, नवासा मुजम्मिल बाबू, नवासी हुमैरा नाज, नवासी सुमैरा नाज, नवासी अबीहा नाज, साजिया शाहिन नाज, नाजिया नूरी नाज, बच्चू शेख और चीना शेख। आप हमारे श्रोता हैं कोकिलवारा औराई जिला मुजफ्फरपुर से मोहम्मद फैसल शेख और नुजह जहाँ नाज। आप हमारे श्रोता हैं शेख टोली समस्तीपुर से मोहम्मद शहनवाज परवेज और मुसरत जहाँ नाज शिक्षिका।

0: तीनों कॉलेज में।
1: डोंट वरी,
0: फीस तो देखो।
2: क्या हाल है, क्या हुआ?
1: फीस की टेंशन,
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
3: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा, और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल।
2: वो कहाँ है?
3: मिठाई।
4: आरबीआई कहता है,
5: करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और शमशाद बेगम की आवाज में। शकील बदावनी के बोल हैं और नौशाद का संगीत है। इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश आई है रिंगनी छत्तीसगढ़ से। आप हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। आप हैं कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय। आप हैं शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। और आप हमारे श्रोता हैं आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां।

लता मंगेशकर और शमशाद बेगम के गाए इसी गीत के साथ ही पसंद आपकी कार्यक्रम अब यहीं पे संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब आप सुनेंगे पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: डेंगू का मच्छर साफ पानी में भी पनपता है, इसीलिए कहीं भी पानी जमा ना होने दे। डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, इसीलिए अपने आसपास साफ रखे और अपने शरीर को ढक कर रखे। समय समय पर फॉगिंग करे और मच्छरदानी का प्रयोग करे। बच्चों को बाहर भेजने से पहले मच्छर भगाने की क्रीम लगाए। खिड़की दरवाजों में मच्छर जाली लगवाए।
1: जब होगा पूरा प्रयास हमारा, तभी मिलेगा डेंगू से छुटकारा। जीवंत बिहार, सपना हो साकार। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 104 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य विभाग और सूचना व जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल, जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
5: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो

0: रजुगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन आज गया जी में बिहार विधानसभा के सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। प्रदेश में आज से 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के बुजुर्गों के लिए होम रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी शुरू। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हाजीपुर में करेंगे शुभारंभ। वरिष्ठ न्यायाधीश सुधीर सिंह पटना उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। और प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय। मौसम विभाग ने आज पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, दरभंगा और अररिया समेत 12 जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन आज एक दिन के बिहार दौरे पर गया जी आ रहे हैं। इस दौरान वे बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: गया जी के बिपाड परिसर में विधायकों के लिए 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर सह प्रबोधन कार्यक्रम आज से शुरू हो रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। शिविर का उद्देश्य नए और पुराने सभी सदस्यों को संसदीय कार्य प्रणाली और विधानसभा की नियमावलियों से परिचित कराना है। कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार और विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह समेत अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। जिला प्रशासन ने सुरक्षा और प्रोटोकॉल की तैयारियां पूरी कर ली है। आकाशवाणी समाचार के लिए गया जी से धर्मवीर भारती।
0: प्रदेश में आज से 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए होम रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू हो रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी वैशाली जिले के हाजीपुर स्थित जिला निबंधन कार्यालय में आयोजित समारोह में इस सुविधा का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान वे मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट की भी शुरुआत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव तथा मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन मंत्री मदन सहनी भी मौजूद रहेंगे।
2: यह व्यवस्था प्रदेश के सभी 145 निबंधन कार्यालयों में लागू होगी। निबंधन के पूर्व संबंधित व्यक्तियों को अंचलाधिकारी को जमीन के संबंध में पूरी जानकारी उपलब्ध करानी होगी। इसके लिए GIS तकनीक से निरीक्षण किया जाएगा। वहीं मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट के माध्यम से जमीन, फ्लैट या प्लॉट की घर बैठे रजिस्ट्री की सुविधा उपलब्ध होगी। इच्छुक व्यक्ति अधिक जानकारी के लिए eNibandhan.bihar.gov.in पर जा सकते हैं। इसके अलावा टोल फ्री नंबर 1-4-5-4-4 पर भी संपर्क किया जा सकता है। समाचार कक्ष से मैं सविता पारी।
0: प्रदेश में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नगर विकास और आवास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार ने बताया कि पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के लिए 3008 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। श्री कुमार ने पटना, सारण, गया और मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारियों को टाउनशिप के सामाजिक प्रभाव का आकलन करने के लिए निर्देश दिए हैं। प्रधान सचिव ने बताया कि सोनपुर में हरिहरनाथ टाउनशिप के लिए 2000 एकड़, गयाजी के मगध टाउनशिप के लिए 1629 एकड़ और मुजफ्फरपुर के तिरहुत टाउनशिप के लिए 1191 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों का नियोजित विकास और विस्तार तथा नई आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में सैटेलाइट टाउनशिप मददगार साबित होगी। भारतीय जनता पार्टी ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को नया उम्मीदवार बनाया है। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति के निर्णय के बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सह मुख्यालय प्रभारी अरुण कुमार सिंह ने उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा के नाम की घोषणा की। श्री सिन्हा ने उम्मीदवार बनाए जाने पर पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया है।
3: मैं शुरू से मैं बूथ मंत्री बना, बूथ अध्यक्ष बना, महामंत्री बना।

0: और मैं 2 बार से मंडल अध्यक्ष रहा और जिला उपाध्यक्ष का भी कार्य मैं युवा मोर्चा में किया हूँ। जीत तो बहुत जबरदस्त होने जा रही है और सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर और हमारे आम जनता हम लोग बांकीपुर नमन को बहुत बहुत आशीर्वाद देने जा रही है। इसके लिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो उनके कार्य को देख करते हुए आज ही लोग यहाँ पे देंगे।
1: प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री सिन्हा 13 जुलाई को नामांकन करेंगे। इससे पहले पार्टी ने अभिषेक कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया था। श्री कुमार ने 9 जुलाई को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और एनडीए के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया था। पटना में पार्टी प्रदेश कार्यालय में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि पारिवारिक कारणों से उपचुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है।
2: मुझे भारतीय जनता पार्टी ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में एनडीए के प्रत्याशी बनाया था, उसके लिए केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। विनम्रता के साथ आपको आग्रह करना चाहता हूँ कि मैं पारिवारिक कारण से विधानसभा उपचुनाव लड़ने में असमर्थ हूँ। मैं एक कार्यकर्ता के नाते निष्ठापूर्वक सेवा देते रहूंगा।
1: गौरतलब है कि भाजपा अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन के इस्तीफे के कारण बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। नामांकन की अंतिम तिथि 13 जुलाई निर्धारित है। उपचुनाव के लिए मतदान 30 जुलाई को होगा जबकि मतगणना 3 अगस्त को कराई जाएगी। बिहार और हरियाणा के बीच सुरक्षित और सुलभ परिवहन के लिए अंतर्राज्यीय बस सेवाओं की शुरुआत की जाएगी। इस संबंध में दोनों राज्यों के बीच कल द्विपक्षीय बस परिचालन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते पर बिहार सरकार की ओर से राज्य परिवहन आयुक्त आरिफ अहसन ने हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत दोनों राज्यों के बीच नियमित बस सेवाओं का संचालन किया जाएगा जिससे यात्रियों को किफायती दरों पर सुरक्षित, आरामदायक और गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हरियाणा के गुरुग्राम, अंबाला, सोनीपत, पानीपत सहित अन्य निर्धारित शहरों से बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के 6 प्रमंडलों पटना, पूर्णिया, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर के लिए आधुनिक वातानुकूलित बसों का नियमित परिचालन किया जाएगा। पटना उच्च न्यायालय के वरीय न्यायाधीश सुधीर सिंह पटना उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। गौरतलब है कि वर्तमान मुख्य न्यायाधीश मीनाक्षी मदन राय आज सेवानिवृत्त हो रही हैं। कल उच्च न्यायालय के शताब्दी भवन में आयोजित समारोह में उन्हें औपचारिक विदाई दी गई। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। इसके प्रभाव से पटना समेत कई जिलों में देर रात से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 7 दिनों तक राज्य में बारिश की परिस्थितियां बनी रहेंगी। मौसम विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज जिले में अत्यधिक भारी बारिश, जबकि अररिया, किशनगंज, सुपौल, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी और सीवान जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
1: राज्य के उत्तर पश्चिम भाग के अधिकांश स्थानों पर, उत्तर मध्य एवं दक्षिण मध्य भाग के अनेक स्थानों पर और उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व एवं दक्षिण पश्चिम भाग के कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण और गोपालगंज जिलों में कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के अररिया, दरभंगा, किशनगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान एवं सुपौल जिलों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: इधर विभाग ने अगले 2 से 3 घंटों के दौरान पटना, अरवल, खगड़िया, समस्तीपुर, सीतामढ़ी,

दरभंगा, वैशाली और मुजफ्फरपुर समेत 20 जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण जिले के मैनाटांड में रिकॉर्ड 195.6 मिलीमीटर बारिश हुई है। गोपालगंज, वैशाली, पूर्णिया और मधेपुरा जिले में भी कुछ स्थानों पर भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई। प्रदेश में हर महीने की 10 तारीख को बिहार पेंशन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कल 97,84,000 से अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के खाते में डीबीटी के माध्यम से राशि भेजने के बाद यह घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि हर महीने की 10 तारीख को पात्र लाभुकों के खाते में पेंशन राशि पहुंच जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को हर पात्र व्यक्ति को पेंशन योजना से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि प्रदेश में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता है। श्री सिन्हा ने पटना में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को उर्वरकों की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही किसानों तक समय पर खाद पहुंचाने को भी कहा गया है। श्री सिन्हा ने उर्वरकों की कालाबाजारी, अवैध भंडारण और अवैध परिवहन की रोकथाम के लिए जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया। कृषि मंत्री ने किसानों से आग्रह किया है कि वे उर्वरक खरीदते समय रसीद अवश्य लें। बिहार लोक सेवा आयोग ने एकीकृत 72वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा की तिथि की घोषणा कर दी है। आयोग की ओर से जारी सूचना के अनुसार परीक्षा 26 जुलाई को राज्य के विभिन्न जिला मुख्यालयों में आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक एक ही पाली में ली जाएगी। बिहार की टीम हैदराबाद में खेली जा रही 2 दिवसीय राष्ट्रीय जूनियर बालक रग्बी 7 प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में बिहार का मुकाबला केरल से होगा। प्री क्वार्टर फाइनल में बिहार ने छत्तीसगढ़ को 34-0 से पराजित किया। और अब जिलों से प्राप्त अन्य समाचार। भोजपुर जिले के अगियांव थाना क्षेत्र अंतर्गत आहर के पास छापेमारी कर पुलिस ने सामुदायिक सेवा केंद्र को लूटने की योजना बना रहे अपराधी गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार अपराधियों की तरफ से फायरिंग होने पर पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की है। मौके से फरार अपराधियों की तलाश की जा रही है। मधुबनी पुलिस ने बेनीपट्टी थाना के डायल 112 टीम के जवानों पर जानलेवा हमला करने के मामले में अभियुक्त मोहम्मद अब्दुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच जारी है। अररिया के जिलाधिकारी विनोद दुहन ने समाहरणालय में आयोजित जनता दरबार के दौरान 96 मामलों की सुनवाई की। कई मामलों का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी अखबारों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखा है, पेंशन योजना के पात्र व्यक्तियों को जोड़ने का अभियान चलेगा। दैनिक जागरण ने लिखा है, केंद्र ने E20 की लागत अधिक बताकर कीमत भी नहीं घटाने का दिया संकेत। सरकार का स्पष्ट संदेश, शुद्ध पेट्रोल या E10 लौटना अब संभव नहीं। दैनिक भास्कर ने बांकीपुर उपचुनाव पर लिखा है, भाजपा ने 72 घंटे में प्रत्याशी बदला, नीरज कुमार सोमवार को करेंगे नामांकन। प्रभात खबर लिखता है, राहत, बीपी, शुगर, कैंसर समेत 39 नई दवाओं की कीमत तय। आज अखबार की सुर्खी है, 15 अगस्त के बाद जिलों का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज गया जी में बिहार विधानसभा के सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। प्रदेश में आज से 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के बुजुर्गों के लिए होम रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी शुरू। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हाजीपुर में करेंगे शुभारंभ। वरिष्ठ न्यायाधीश सुधीर सिंह पटना उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। और प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय। मौसम विभाग ने आज पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, दरभंगा और अररिया समेत 12 जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: वाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री
3: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर

अभी आप सुन रहे थे पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड के 103.4 MHz पर।

प्रस्तुत है आज प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि ठीक 9:10 पर आप सुनेंगे हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मालिका। 9:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम आज के फनकार। पूर्वाह्न 10:00 आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार और 10:05 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे साप्ताहिक कार्यक्रम विकास के सोपान। 10:30 पर आप सुनेंगे भोजपुरी एल्बम लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी और 10:45 पर आप सुनेंगे भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स पर आधारित हमारा कार्यक्रम रसधार। शाम की सभा की शुरुआत होगी 5:10 पर वंदन कार्यक्रम से और 5:30 पर आप सुनेंगे युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी। शाम 6:00 हम आपके लिए लेकर आएंगे भोजपुरी लोकगीत। पर आप सुनेंगे पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार बुलेटिन और 6:10 पर आप सुनेंगे किसान बहनों एवं भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी। शाम 6:40 पर आप सुनेंगे भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ गीत और 7:15 पर आप सुनेंगे सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम। सात बजकर 25 पर आप सुनेंगे पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार एवं जिले की हलचल और 7:50 समय होगा फोन इन फरमाइसी गीतों का कार्यक्रम हेलो मन पसंद का। 8:00 आप सुनेंगे हमारा प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।

8:45 पर आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा। गजलों का कार्यक्रम महफिल सजेगी रात्रि 9:15 पर और 9:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम आज के फनकार। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसरंग और 10:30 समय होगा हिंदी फिल्म संगीत चित्रपट तराने का। 11 बजे आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। तो श्रोताओं, ये था आज प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत मल्लिका।

लता मंगेशकर और एमजी श्री कुमार की आवाज़ में अभी आपने ये गीत सुना, गुलजार के बोल थे और एआर रहमान का संगीत था। और अब लीजिए सुनिए किशोर कुमार की आवाज़ में मंजिल फिल्म का ये गीत, योगेश के बोल हैं और आर डी बर्मन का संगीत है।

किशोर कुमार की आवाज़ में अभी आपने अमर प्रेम फिल्म का ये गीत सुना। आनंद बख्शी के बोल थे और आरडी बर्मन का संगीत है। और अब लीजिए सुनिए किशोर कुमार की ही आवाज़ में शोले फिल्म का ये गीत। आनंद बख्शी के बोल हैं, आरडी बर्मन का संगीत है।

0: किशोर कुमार के गाए इसी गीत के साथ ही गीत मालिका कार्यक्रम अब यहीं पे संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। अब आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम आज के फनकार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: चश्मे बदूर उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
3: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
5: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की। 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर
6: सुनिए। आप सुन रहे हैं विविध भारती।
7: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है? किशोरदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: हूँ।
1: जिन्होंने अपनी अदाओं से लोगों को मोहित किया, जिन्होंने अपनी मेहनत से हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की और महज 13 बरस की उम्र में वे मुंबई

0: तो अब आपको बता ही देते हैं, आज की फनकार हैं गायिका उमा देवी यानी टुनटुन।
1: हमारे देश के, मेरे इधर के उधर के, आमने के सामने के, थोड़े भाइयों थोड़े मेरे प्यारों, मेरा आप सबको बहुत बहुत मोटा मोटा आशीर्वाद, प्यार और फिर छोटा सा मुन्ना सा नमस्कार।
0: टुनटुन नाम से उन्होंने अपने अभिनय की पारी जीती। 1947 में उमा देवी को अपना पहला एकल गीत गाने का मौका मिला, जिसके लिए उन्हें 200 रुपए की राशि भी मिली थी और ये राशि उन दिनों बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी।
1: सुरैया जी, फिल्म स्टार सुरैया, हाय हाय हाय हाय, उन्हीं के साथ मेरा पहला मौका गाना गाने का दर्द में मिला। आप लोग काफी सुनते हैं ये गाना, उसमें मैं भी हूँ उनके साथ, उनसे लिपटी खड़ी होके गाना गा रही थी, बेताब है दिल दर्द मोहब्बत के असर से। इसी में हम दोनों ने अपनी अपनी गाने की अदायगी की है।

0: मेरी नजर।
1: दोस्तों, उमा देवी को नौशाद साहब का संगीत बहुत पसंद था। जब नौशाद साहब ने उमा देवी का ऑडिशन यानी स्वर परीक्षा ली तो वे भी उमा देवी के गायन से काफी प्रभावित हुए और जब दर्द में उन्होंने पहला गाना गाया तो पहला ही गीत सुपर डुपर हिट हुआ। उसके बाद तो उनके गायन का सिलसिला तेजी से चल पड़ा।

गाना। जब ये यूपी में पिक्चर लगी, इसका नाम है अनोखी अदा। तो साहब सिनेमा में इतने पैसे फेंकते थे इसके रिदम और गाने पर कि मैं बयान नहीं कर सकती।

0: दोस्तों, चूंकि संगीत की दुनिया बदल रही थी और नई प्रतिभाएं अपना असर दिखा रही थीं, इसलिए उमा देवी के गाने लगातार कम होते चले गए। उन्होंने अपने दोस्त दिलीप कुमार साहब से कहा कि वो अपनी किसी फिल्म में अभिनय का मौका दें। इस तरह 1950 की फिल्म बाबुल में पहली बार नजर आई दिलीप कुमार के साथ।
1: देखो, पहले मैं गाने गाती थी और अच्छी बहुत मशहूर हीरोइनों के गाने दिए मैंने, तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा शौक पैदा हुआ कि मैं भी हीरोइन बन जाऊं। अब मुश्किल ये हुई कि हीरोइन सिंगल होती और मैं डबल। मैंने दिलीप कुमार जी के संग रोल लिया और वो पिक्चर थी बाबुल। बाबुल में मैं उनकी प्रेमिका थी, लेकिन मुश्किल ये हुई कि 2-3 हाथ मारे तो वो फिर पलट के कभी नहीं।
0: दिलीप कुमार ने ही उनका नया नाम रखा था टुनटुन।

0: उमा देवी के गायन का सफर दोपहर की तेज धूप की तरह चमका, लेकिन इससे पहले कि शाम ढले यानी उनके गायन का सफर धीमा हो, उन्होंने एक नया रास्ता चुन लिया। वो रास्ता था अभिनय का, और अभिनय का ये सुझाव भी संगीतकार नौशाद की ओर से ही था, और उमा देवी बन गई टुनटुन।
1: हाय हाय हाय हाय।
0: हास्य अभिनेत्री के रूप में उन्होंने अनगिनत किरदार निभाए, और फिल्मी पर्दे पर लोगों को दिल खोलकर हंसाना उनका शगल बन गया।
1: हाय हाय हाय हाय।
0: लोगों को उमा देवी के करियर का ये दूसरा रास्ता इतना पसंद आया कि लोग आज भी उन्हें टुनटुन के ही नाम से याद करते हैं। एक रूढ़िवादी पंजाबी परिवार में जन्मी उमा देवी को परिवार की ओर से कोई बढ़ावा या कोई मदद न मिली, इसलिए जीवन के खट्टे मीठे रास्तों को तय करती हुई अपने हुनर को ही उन्होंने अपनी जिंदगी में मील का पत्थर

50 और 60 के दशक में टुनटुन ही एक महिला कॉमेडियन थी जिनके पर्दे पर आते ही हॉल में ठहाके गूंजने लगते थे। उस दौर में हर दूसरी तीसरी फिल्मों में वे नजर आया करती थीं। ये थी उनके अभिनय की कामयाबी और यही थी उनकी प्रतिभा। गुरुदत्त के साथ टुनटुन ने 3 फिल्मों में अभिनय किया, प्यासा, मिस्टर एंड मिसेस 55 और आर पार।

0: बचत कर लो।
1: अमिताभ बच्चन के साथ टुनटुन नजर आई फिल्म नमक हलाल में। दोस्तों आखिरी बार टुनटुन फिल्म कसम धंधे की में नजर आई। आज उमा देवी यानी टुनटुन हमारे बीच नहीं है, लेकिन वे अपनी आवाज अपने फन के जरिए आज भी हम सबके दिलों पर राज कर रही हैं।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गायिका उमा देवी यानी टुनटुन पर। शोध, आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आन मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद दोनों देशों के बीच रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 40 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
3: न्यूजीलैंड की इनोवेशन, एंटरप्राइज और फ्यूचर ओरिएंटेड सोच का प्रतीक है। भारत की ओर से मैं 140 करोड़ लोगों की एस्पिरेशंस और एम्बिशंस का संदेश लेकर आया हूं। फ्रेंड, यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब भारत और न्यूजीलैंड के संबंध एक टर्निंग पॉइंट पर है। आज हम अपने संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के सूत्र में बांध रहे हैं। यह केवल एक डिप्लोमेटिक माइलस्टोन नहीं है, यह हमारे साझा भविष्य का एक नया संकल्प है।
2: न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते को द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने वाला एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
3: इस वर्ष दोनों देशों के बीच 9 महीनों के रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। यह आप सभी के लिए मार्केट एक्सेस, इन्वेस्टमेंट, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और टैलेंट मोबिलिटी के नए अवसर लेकर आएगा। मुझे विश्वास है हम 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना बढ़ाएंगे।
2: इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने उद्योग और खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। स्वदेशी युद्धपोत INS महेंद्रगिरि को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का प्रमुख संरक्षक है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसीलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। उन्होंने वर्तमान बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हुए पत्तन सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण शीघ्र शुरू करने का

0: निर्देश दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज बिहार के गया जी जाएंगे। इस दौरान श्री राधाकृष्णन बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच परिवहन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और साझा परिवहन रणनीति पर चर्चा की जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हालिया तनाव बढ़ने के बावजूद अमेरिका और ईरान वार्ता जारी रखने पर सहमत हो गए हैं, लेकिन पिछले महीने हुए युद्ध विराम समाप्त हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने वार्ता जारी रखने का अनुरोध किया है और अमेरिका इस पर सहमत हो गया है। स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। लॉस एंजलिस में आज क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हरा दिया। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 88वें मिनट में किया। तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 2:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 3 दिन मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में अगले 5 दिन भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा दिन में आज राजधानी दिल्ली में बारिश होने की आशंका व्यक्त की गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम विकास के सोपान।

0: श्रोताओं नमस्कार। प्रस्तुत है विकास कार्य तथा योजनाओं से संबंधित जानकारियों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम विकास के सोपान और इस अंक के साथ मैं लाल बहादुर दुबे। श्रोताओं कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे रोहतास जिला के सासाराम प्रखंड अंतर्गत नगर निगम क्षेत्र सासाराम स्थित वार्ड नंबर 1 के मोहल्ला डंगुला डीह के बारे में। सासाराम नगर निगम कार्यालय से उत्तर लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर सासाराम करगहर रोड से थोड़ी दूरी पर स्थित है डंगुला डीह। बाराडीह पुल से सासाराम जाने वाली बाईपास सड़क से होते हुए शिवपुर चितौली के रास्ते वहां पहुंचने का सुगम मार्ग है। लगभग 80 से 100 घरों की बस्ती में रहने वाले लोगों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिखी। मोहल्ला में प्रवेश मार्ग को छोड़कर अन्य कोई भी गली पक्की नहीं दिखी। नाली भी कच्ची ही है। कई लोगों के मिट्टी के खपरेल घर दिखे, कुछ घर फूस तथा प्लास्टिक से ढका दिखा तो कुछ पर टीन के शेड जीर्ण शीर्ण अवस्था में दिखाई पड़ा। डंगुला डीह में न तो कोई विद्यालय है और न ही आंगनबाड़ी केंद्र जहां बच्चे पढ़ सकें। श्रोताओं ये तो रही नगर निगम सासाराम क्षेत्र स्थित वार्ड नंबर 1 के मोहल्ला डंगुला डीह की बाहरी स्थिति जो हमें देखने को मिला, लेकिन वास्तव में वहाँ विकास की क्या स्थिति है। नाली गली पेयजल शिक्षा स्वच्छता स्वास्थ्य सुविधा के बारे में मोहल्ला वासियों का क्या कहना है। सरकार द्वारा जनहित में संचालित योजनाओं का लाभ वहाँ रहने वाले पात्र लोगों को क्या मिल रहा है, इन सभी जानकारियों के लिए हमने संपर्क किया डंगुला डीह के लोगों से और बातचीत की। विषय है रोहतास जिला के सासाराम प्रखंड अंतर्गत नगर निगम सासाराम क्षेत्र स्थित वार्ड नंबर 1 के मोहल्ला डंगुला डीह में विकास कार्य और योजनाएं। श्रोताओं आज हम रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 के मोहल्ला डंगुला डीह जो कि तुर्की का यह टोला है यहाँ पर हम उपस्थित हैं और आज हमारे साथ डंगुला डीह के कुछ लोग हैं, तो आइए मिलते हैं और बातें करते हैं। जी आप अपना नाम बताएं।
1: मेरा नाम धीरेंद्र कुमार चौधरी पड़ेगा, डंगुला डीह का निवासी हूँ।
0: अब नगर निगम हो गया है ना?
1: जी जी नगर निगम हो गया है, 1 नंबर वार्ड से मैं हूँ।
0: आप बता रहे थे कि डंगुला डीह 2 भागों में है, एक साइड में जो घर है यह दूसरे वार्ड में पड़ता है।
1: जी जी जी, एगो 6 नंबर वार्ड में पड़ता है, एगो 1 नंबर वार्ड में पड़ता है।
0: यानी कि जो ये गली है आपका, इसे गली ही बंटवारा किया है?
1: पूर्व साइड में 1 नंबर, पश्चिम साइड में 6 नंबर।
0: तो आप किस वार्ड के रहने वाले हैं?
1: हमें 1 नंबर वार्ड के रहने वाले हैं।
0: अच्छा ये बताइए कि

0: यहाँ पर विकास की क्या स्थिति है, गली नाली बिजली के बारे में परिवर्तन से बताइए।
1: यहाँ लाइन का व्यवस्था तो ठीक है, यहाँ ना पानी का व्यवस्था है, कल वगैरह ये सब कुछ नहीं है, नल जल का व्यवस्था है तो यहाँ कोई स्टाफ नहीं है, गांव का लड़का चालू करता है अपने से, टंकी भी फट फूट गया है। गली में कोई दिक्कत नहीं है, जो गली से रास्ता फूटा हुआ है ना मोहल्ला में जाने के लिए, वो सब गली नहीं बना हुआ है, दो चार ठो गली है वो सब नहीं बना हुआ है।
0: मेन गली को जोड़ने वाला है वह नहीं बना हुआ है।
1: हाँ, मेन गली का जोड़ने वाला है वो नहीं बना है, न तो डायरेक्टली जो बना है गली।
0: अच्छा, नाली हम देख रहे हैं किनारे किनारे ऐसे ही एक तरफ से मिट्टी देकर निकाला गया, ये इसी तरह से है?
1: जी जी, गांव का ही लोग सब इसको खलियाते हैं, बढ़िया से छोपते छापते हैं पानी निकालने के लिए।
0: मतलब नाली की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर?
1: नहीं है।
0: अच्छा, पानी की आपने बात की, पेयजल की, यहाँ टंकी तो यहाँ बगल में है जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं प्रोग्राम कर रहे हैं, तो पेयजल आप लोगों को उपलब्ध हो पाता है?
1: हो पाता है, गांव का लड़का रहता है तो चालू करता है, या नहीं रहता है तो बंद रहता है।
0: स्वेच्छा से वह काम करता है, रहता है तो चालू करता है,
1: रहता है तो चालू करता है, नहीं रहता है तो नहीं करता है।
0: अच्छा, यहाँ पर बच्चों को पढ़ने के लिए कोई व्यवस्था, सरकारी विद्यालय आंगनबाड़ी है कि नहीं?
1: मिडिल स्कूल है, यहाँ से 1.5 किलो 2 किलोमीटर के दूरी में मिडिल स्कूल है, वो आंगनबाड़ी है, तो उसमें सामुदायिक भवन है, उसी में मैडम एक पढ़ाती हैं, तो इस गांव के बच्चे नहीं जाते हैं, उसी गांव से वहाँ 42 गो बच्चा होते हैं, उसी गांव से भरपाई हो जाते हैं, तो इस गांव को कौन पूछता है?
0: बच्चे क्यों नहीं पढ़ने जाते हैं?
1: कहाँ से जाएंगे, वहाँ का मैडम अभी नहीं करती है, बच्चे खुद अवेलेबल वहाँ पे हैं।
0: मतलब कि बच्चों को यहाँ पढ़ने के लिए व्यवस्था नहीं है?
1: नहीं है, बच्चों को पढ़ने के लिए यहाँ सुविधा नहीं है, कोई प्राइवेट में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो भाई शिक्षा तो कोई छोड़ेगा नहीं, किसी तरह मजबूरी वास्ते अपना बच्चों को ले जाकर पढ़ाते हैं, कोई समय पहुंचाते हैं, कोई साइकिल से ले जाता है तो कोई कंधा पर टांग कर ले
0: जाता
1: है।
0: यहाँ आबादी जो कि डोंगलाडीह आप कह रहे हैं, कितनी होगी
1: डोंगलाडीह का? यहाँ का आबादी 600 से कम नहीं होगा।
0: अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सा घर मिट्टी का बना हुआ है, खपरेल है, फूस डाला हुआ जिस पर चमकीला डाल करके।
1: यहाँ का जो स्थिति है, दलित का बस्ती है, गरीब का बस्ती है, तब पेट अपना जिलाएगा कि पहले मोहल्ला बनाएगा, बच्चों का शिक्षा वगैरह भोजन पानी सब व्यवस्था करता है, कमा कर अपना मजदूरी, सब मजदूरी लोग यहाँ।
0: अच्छा, सरकारी योजना का लाभ यहाँ लोगों को मिला है?
1: मिलता है, किसी का कोई आदमी का कोई थोड़ा मोड़ा राशन मिलता है, न तो कोई सरकारी योजना का लाभ देख नहीं रहे।
0: सरकारी में राशन मिलता है, यहाँ आवास मिला है कि नहीं लोगों को?
1: आवास 1 नंबर वार्ड से कहाँ मिला है, नहीं मिला है, हम लोग भी भरे थे, नहीं मिला है। ये भी 1 नंबर के हैं, इन्हीं का घर इनका देख रहे हैं, ऐसा घर बहुत मिलेगा आपको देखने के लिए, कुछ नहीं मिला है।
0: मतलब कि यहाँ पर सरकारी योजना में सिर्फ राशन कार्ड आप लोगों को उपलब्ध है, उसका लाभ ले पाते हैं?
1: हाँ, गरीब आदमी कमाने पर उस पर ज्यादा ध्यान
0: नहीं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं?
1: मजदूरी करते हैं,
0: खेती
1: किसानी यहाँ किसी का उतना नहीं है, खेत रहता तो आदमी घर द्वार नहीं बना, कितने जिंदगी कष्ट में जी रहा है देख नहीं रहे हैं।
0: जी जी, धन्यवाद। आइए, एक व्यक्ति इधर बैठे हुए हैं, इनसे हम मिलते हैं और बातें करते हैं। जी, आप अपना परिचय दें, क्या नाम है आपका?
2: गफाली चौधरी,
0: डोंगलाडीह के रहने वाले हैं
2: जी।
0: क्या अभी स्थिति है यहाँ की?
2: यहाँ की स्थिति देखते हैं कि नाली गली खराब है, सब गरीब आदमी कमाता है खाते है,
0: नाली तो की स्थिति खराब है, गली तो ठीक है लग।
2: हाँ
0: जी, बिजली यहाँ रहती है?
2: हाँ, बिजली रहते है।
0: बिजली में सरकार कुछ छूट दे रही है, उसका लाभ आप लोगों को मिल रहा है कि नहीं?
2: मिलता है, मिलता है।
0: अच्छा, यहाँ पर आवास योजना का लाभ मिला है लोगों को, कुछ घर जो कॉलोनी कही जाती है?
2: ना ना ना, जब मिलता पैसा लोग था आपका सामने।
0: अच्छा, ये नहीं हो पाया यहाँ, बहुत से लोगों का मतलब आवास नहीं मिला। आपकी उम्र कितनी है?
2: उम्र कम से कम 65-66।
0: अच्छा, पेंशन योजना का लाभ लेते हैं, बूढ़ा पेंशन?
2: हाँ हाँ, मिला था।
0: राशन कार्ड है?
2: हाँ, राशन कार्ड बा।
0: पानी की भी समस्या यहाँ लोग बता रहे हैं?
2: हाँ हाँ, पानी की भी समस्या है, टाइम से पानी नहीं मिलता है।
0: तो यहाँ जरूरी आपको क्या लग रहा है?
2: अभी नाली की स्थिति खराब बा, पहले नंबर बनना चाहिए
0: जी।
2: अच्छा, घर की भी स्थिति खराब बा, सब कमाए खबर आदमी बन
0: जी। धन्यवाद, आइए अगले व्यक्ति से मिलते हैं, उनका परिचय जानते हैं। क्या नाम है आपका?
3: मेरा नाम मनोज कुमार गौतम है, मैं डोंगलाडीह के निवासी हूँ, इसी गाँव के वार्ड नंबर 1 का।
0: जी, अब तो गांव न कहिए इसे,
3: ठीक है, मोहल्ला कहिए,
0: डोंगलाडीह मोहल्ला है, वार्ड नंबर 1, नगर निगम सासाराम। अच्छा, ये बताइए यहाँ पर विकास के मामले में कैसा आपका मोहल्ला भी है?
3: देखिए, सरकारी विकास के मामले में तो यहाँ पे शून्य है। देखिए, गली जो बहुत पहले बनाया गया है
0: जी,
3: लेकिन नली जो है हमारे कोई न वार्ड ध्यान देते हैं, न कोई विधायक जी ध्यान देते हैं, कोई जो है सरकारी तंत्र जो है यहाँ ध्यान नहीं देता है
0: जी,
3: जो कि गरीबों का ही टोला है। और यहाँ से आप सीधे चले जाइए, देखिए यहाँ से कितने झोपड़पट्टी लगा हुआ है, ना यहाँ जिला प्रशासनों का ध्यान रहता है, ना हमारे यहाँ के वार्ड का रहता है ध्यान कि नहीं यहाँ कॉलोनी मिलना चाहिए। आंख से देखने वाली चीज है, आपके सामने प्रत्यक्ष दिखाई
0: अच्छा,
3: दे रहा
0: है। कॉलोनी यहाँ कुछ लोगों को मिली है कि नहीं, ये हमें जानना चाहिए।
3: नहीं, इधर इस समय नहीं मिला, जो जब से हम लोग को नगर निगम बना है।
0: अच्छा, उससे पहले कुछ लोगों को मिली है?
3: पहले जो मुखिया पंचायत था उस समय जो मिला होगा 10 साल पहले, वो दूसरी मैटर है, लेकिन अभी
0: 2-4-5 साल नहीं मिला
3: जब से नगर निगम।

0: हुआ है नहीं
1: नगर
0: हुआ।
1: निगम तो हुए लगभग 3 साल के आसपास हो रहा होगा,
0: उनका दायित्व तो बनता है ना, मेयर
1: बिल्कुल,
0: हो
1: बिल्कुल।
0: वार्ड हो जो भी मेयर है उनका दायित्व तो क्या बनता है। अभी देखिए ये जो रोड है देख रहे हैं ना, टूट रहा है।
1: अच्छा, यहाँ पर पीने वाला पानी आप लोगों को मिलता है, नल जल योजना का लाभ?
0: समरसेबुल चलने से मतलब है, समरसेबुल चले और हमारे यहाँ घर में पानी न पहुँचे तो समरसेबुल चलने से ना स्टाफ रहे चला दे। हम तो यहाँ एक बाल्टी पानी भरने में 10 से 15 मिनट लगता है, 20 मिनट तक वो लगता है। ये बताइए कौन ऐसा समरसेबुल, हमारा क्या जरूरत है।
1: अच्छा, यहाँ पर बच्चों को शिक्षा के लिए क्या व्यवस्था है?
0: यहाँ पर कोई विद्यालय नहीं है,
1: सरकारी विद्यालय नहीं,
0: कोई नहीं, एक भी नहीं है ना, आंगनबाड़ी है ना, आपको मिडिल प्राइमरी कोई भी है यहाँ नया विद्यालय।
1: तो बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं?
0: ये बगल में एक तुर्की का वही है, सुपिस्तोली में एक सामुदायिक भवन टाइप का है, वो आंगनबाड़ी नहीं है, वो आंगनबाड़ी तो तुर्की में है। यहाँ तुर्की यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है। या ना फिर चितौली में चले जाइएगा तो वहाँ पे है मिडिल स्कूल।
1: कुछ बच्चे हम देख रहे हैं कि प्राइवेट से भी पढ़ कर आते हैं, तो कुछ लोग प्राइवेट भी पढ़ाते हैं।
0: हाँ तो क्या करेंगे, मजबूरी मानी, जितना दूरी पर हम सरकारी में भेजेंगे वहाँ प्राइवेट भी वहीं इतना दूरी पड़ता है, तो जिसका जितना ऑर्गेनाइज कर पाए
1: उसकी क्षमता है, वो
0: क्षमता के अनुसार वो अपना काम कर रहा है, पढ़ा रहा है, बच्चा को पढ़ाना भी जरूरी है।
1: अच्छा, यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा के लिए कोई है व्यवस्था कि कोई बीमार पड़ जाए अचानक?
0: नहीं नहीं नहीं, वो तो कोई व्यवस्था नहीं है। आप अपने से 102 डायल कीजिए, चाहे अपना प्राइवेट गाड़ी से लेके जाइए, यानी सासाराम में आपको जाना है।
1: सासाराम से तो ये लगभग हमको लगता है कि 6-7 किलोमीटर पड़ता
0: है। हाँ,
1: इधर कोई व्यवस्था नहीं है?
0: नहीं, यहाँ पर कोई चिकित्सा केंद्र कोई नहीं है, जो भी हम लोग का है सासाराम मुख्यालय में।
1: अच्छा, यहाँ लोगों को कॉलोनी तो बताए कि नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर राशन कार्ड की क्या स्थिति है?
0: नहीं, राशन कार्ड तो लगभग सबका ठीक ठाक है, राशन सब मिलते रहता है, जो मिल रहा है उसके बारे में क्या शिकायत करें।
1: राशन कार्ड वाले लोगों को बनता है, आयुष्मान कार्ड बनवाए हैं लोग?
0: हाँ, बहुत से लोग बनवाए हैं, कुछ लोग छूटे होंगे, ऐसे से लगभग जहाँ तक बनिए गया होगा।
1: पेंशन योजना का लाभ मिलता है लोगों को यहाँ पर?
0: पेंशन वाले बूढ़े लोग बताएंगे लोग।
1: आपके घर में कोई है कि नहीं?
0: नहीं, हमारे घर में एक भैया हैं, उनको एक महीना से नहीं मिला है पिछले।
1: जी जी जी,
0: हाँ हाँ
1: जी, धन्यवाद। श्रोताओं, नगर निगम सासाराम क्षेत्र स्थित वार्ड नंबर 1 के मोहल्ला डोंगलाडीह के कुछ और लोगों से की गई बातचीत हम थोड़ी देर में आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पूर्व सुनवाते हैं आपको एक गीत सुर कोकिला लता मंगेशकर जी की मधुर आवाज में। गीतकार हैं गुलजार, संगीतकार RD बर्मन और फिल्म है किनारा।

0: बंद शीशे हैं, दरीचों में खुले मंजर हैं, सब्ज पेड़ों पे, घनी शाखों पे और फूलों पर कैसे चुपचाप बरसता है मुसलसल पानी। कितनी मखलूक है, हंगामे हैं, आवाज़ें हैं, फिर भी एहसास की एक सतह पे हौले हौले जैसे चुपचाप बरसता है तसव्वुर तेरा।
1: इस गीत के बाद आइए चलते हैं लोगों के बीच। श्रोताओं, आज हमारी बातें हो रही है रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 के मोहल्ला डंगुला डीह के लोगों से, और जान रहे हैं विकास कार्यों और योजनाओं के बारे में तथा यहां पर रहने वाले लोगों को मिलने वाली सरकारी सुविधाओं के बारे में। हमारे साथ डंगुला डीह के कुछ लोग हैं, आइए मिलते हैं और बातें करते हैं। जी, आप अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका?
2: नाम भूटन चौधरी।
1: जी, कहाँ के रहने वाले हैं?
2: डंगुला टोला का।
1: ये तो नगर निगम हो गया है ना अब?
2: जी जी।
1: कितनी उम्र है आपकी?
2: 75।
1: अच्छा, गली नाली की क्या स्थिति है?
2: मेन क्लियर है, लेकिन जो मेन में से फूटा है इधर उधर वो तो ऐसे ही है, सो रहा है ना। हाँ,
1: आपने बताया कि आपकी उम्र 70-75 साल है, सरकारी योजनाओं का कुछ लाभ मिल रहा है आपको?
2: वृद्धा पेंशन मिल रहा है, वृद्धा 4 महीने का रुक गया है।
1: एक आदमा आगे पीछे हो सकता है?
2: टोटल गांव का आदमी को नहीं मिलता है यहाँ।
1: हो सकता है कोई समस्या लोगों के साथ हुई हो यहाँ। अच्छा, राशन कार्ड है आपका ना?
2: राशन कार्ड है
1: जी। समय से राशन मिलती है कि नहीं?
2: मिलता है 4 किलो
1: जी।
2: 5 किलो नियम है, लेकिन 4 किलो देता है। 4 किलो लेना है लान तो जाओ।
1: अच्छा, एक बात और बताइए कि यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा के लिए कोई व्यवस्था नहीं ना है?
2: नहीं, कोई व्यवस्था नहीं।
1: जाना पड़ता होगा सीधे सासाराम?
2: सासाराम। हाँ
1: जी। यहाँ कुछ लोगों को कॉलोनी मिली हुई है?
2: कॉलोनी देखी, जब से नगर नियम हुआ है एक कॉलोनी नहीं मिला है।
1: अच्छा, नगर निगम से पहले कुछ लोगों को मिला था?
2: पहले विधायक लोग दिया है,
1: पहले का मिला हुआ है, इधर नहीं मिला।
2: नहीं मिला है
1: जी। पानी की सुविधा तो आप लोगों को है नहीं, बहुत कम लोगों को?
2: 16 आना में 4 आना है पानी का,
1: बहुत कम मिल पाता है।
2: बहुत कम।
1: जी, धन्यवाद। श्रोताओ, अगले व्यक्ति से मिलते हैं और इनका परिचय जानते हैं, क्या नाम है आपका?
3: हमारा नाम दूधना चौधरी
1: जी।
3: मोहल्ला डंगुला डीह रहने वाले हैं, वार्ड नंबर 1।
1: तो नगर निगम की कुछ सुविधाएं आप लोगों को अभी मिल रही है कि नहीं?
3: नगर निगम की सुविधा क्या मिल रहा है, कई एक बार हम लोग कई चीज का आवास का नली गली का कंप्लेन दिए, कोई सुनवाई नहीं, तो क्या हम लोग को सुविधा बताएं? टंकियों बन गया है तो उसमें पानी 10 घर मिलता है, बाकी घर।
1: अच्छा, झाड़ू यहाँ पर लग रहा है?
3: झाड़ू लगता है 10 दिन पर 15 दिन पर एक बार लगता है।
1: सफाई?
3: सफाई भी 10 दिन 15 दिन महीनों दिन चल जाता है, जो कि नगर निगम का सिस्टम है कि झाड़ू रोज लगना चाहिए, लेकिन नहीं लग पाता है। मान लीजिए कोई त्यौहार आ जाता है तो हम लोग कंप्लेन करते हैं, तो एगो ज़्यादा से ज़्यादा एगो नहीं 2 गो करके आता है, जितने सपरता है करता है, फिर चल जाता है। हम लोग क्या करेंगे, फिर अपने से सफाई लोग करते हैं।
1: तो आपका जो मोहल्ला इसमें देख रहे हैं बना हुआ है केवल गली?
3: ये तो गली विधायक बनवाए थे, जो आज से 15 साल पहले ना हो, विधायक के दिन था।
1: 15 साल पहले जो बनी हुई सड़क है, जो गली है आपकी,
3: उसके बाद यहाँ विकास का काम कोई भी नहीं हुआ है, जो भी हुआ है वही 15 साल से पहले, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, और नगर निगम में तो यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है।
1: अच्छा, विद्यालय यहाँ से दूर पड़ता है, बच्चों को तो बहुत कठिनाई होती होगी जो जाते होंगे?
3: विद्यालय है या नहीं है? वो समडिया पंचायत में विद्यालय है, वो लोग दूसरे पंचायत में पढ़ने जाते हैं। हाँ, यहाँ विद्यालय का सुविधा कुछ भी नहीं है, बच्चा कैसे पढ़ेगा? आंगनबाड़ी भी है तो आंगनबाड़ी भी यहाँ नहीं है।
1: आंगनबाड़ी भी नहीं?
3: नहीं है, जो कि होना चाहिए था।
1: जबकि आप लोगों गाँव कह रहे हैं कि 500-600 लोगों की बस्ती है?
3: हाँ,
1: 500-600 लोग यहाँ पर लगभग रहते हैं।
3: सब लोग मिला के 600 हो जाएगा ना? वो खूब 500-600 हो जाएगा यहाँ,
1: 500-600 जनसंख्या यहाँ पर है। तो नियमतः तो यहाँ पर आंगनबाड़ी प्राथमिक विद्यालय जरूर होना चाहिए,
3: देना चाहिए, लेकिन है कहाँ, हम लोग मांगने से भी नहीं मिलता है।
1: पेयजल के लिए टंकी तो यहाँ बगल में ही हम देख रहे हैं,
3: टंकी है, ठीक है ना, समय से चालू होता है, चालू होता भी है तो पूरा गांव में पानी नहीं जाता है। ये तो जांच करने वाला चीज है कि पूरा गांव में कितने घर पानी पीते हैं, कितने घर नहीं पानी
1: देख रहे हैं। यहाँ पर सरकारी चापाकल भी टूटा फूटा अवस्था में पड़ा हुआ है।
3: चापाकल तो मान लीजिए गल गया, ठीक है, लेकिन जब बिगड़ता है तो हम लोग कंप्लेन करते हैं, तो गलाने वाला का तो गला के चला गया, प्रतिनिधि से कहते हैं।
1: सरकारी चापाकल कितने हैं आपके?
3: सरकारी चापाकल 1।

0: भी नहीं है, एक है तो बिगड़ ही गया। कंप्लेन भी किए तो कंप्लेन करने से कोई फायदा हम लोग है नहीं, तो क्या करेंगे।
1: तो यहाँ रहने वाले लोग कैसे पानी पीते हैं, मतलब हर घर में चापाकल है?
0: हैंडकल अपना अपना लोग गलाए हैं।
1: पानी की दिक्कत नहीं गर्मी में होती है?
0: पानी की तो दिक्कत होता ही है, कल टंगा जाता है, लेवर भाग जाता है, लेकिन दूसरे तीसरे घर से कम चल जाता है।
1: मिलजुल कर
0: अपनी खा पी लेते हैं।
1: अच्छा, बिजली में सरकार कुछ छूट दे रही है, उसका लाभ आप लोगों को मिल रहा है?
0: बिजली में 125 यूनिट तक हम लोग को दे रहा है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन जो पहले का ड्यूज था,
1: पहले वाला जो ड्यूज है वो अभी बरकरार है। देखिए, इसके लिए भी समय समय पर कैंप लगता है, आप लोग उसमें संपर्क करें, जो भी पहले का ड्यूज है उसमें न्यूनतम करके।
0: देखिए, कैंप से भी कोई लाभ नहीं है। कैंप ससराम न्यायालय में लगा था, हम लोग गए थे, लमसम 7-8 महीना हो गया, लेकिन अभी उसका कोई निर्णय नहीं हम लोग का है।
1: एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि बिजली विभाग में भी 10-8 दिन पर कैंप लगाते हैं, जो बिजली बिल समस्या
0: सुनाई है उसे बोलता है कि आप लोग सब भरना ही होगा। भरने के लिए किसी को क्षमता है नहीं है, और कमा रहा है, खा रहा है, खाने को नहीं जुट रहा है। कितना मजदूरी दे रहा है सरकार के, खाने को जुट रहा है, देख रहे हैं घर कितने पे हैं।
1: देख रहे हैं कि यहाँ पर कई लोगों को अभी मिट्टी का घर जिस पर खपरेल है, कहीं हम
0: बात है कि जो
1: प्लास्टिक टांग कर लोग अपना गुजर बसर करें, कहीं पर कराकट डाला हुआ है, एल्बेस्टर कहते हैं टीना का।
0: जो व्यक्ति कमा रहा है उसको कमाने से मेंटेन नहीं हो रहा है, तो बिजली बिल जो डीज है वो कहाँ से भर पाएगा।
1: सरकारी योजना में कुछ लाभ आप लोगों को जो मिल रहा हो?
0: सरकारी योजना में लाभ कुछ नहीं है, लाभ वही है
1: राशन
0: कार्ड का, स्वयं 4 किलो राशन का लाभ होता है, बाकी कुछ नहीं। और बात रह गई अगला बूढ़ा पेंशन का, अभी तो 4 महीने से सबको बूढ़ा पेंशन बंदे है, किसी को आता है, किसी को नहीं आता है,
1: कुछ लोगों को आ भी रहा है,
0: हाँ, कुछ लोगों को नहीं आ रहा है।
1: जानकारी लेनी चाहिए कि क्या कारण है कि लोगों का जिन नहीं आ रहा है, तो उसमें क्या समस्या है, क्योंकि कभी कभार वेरिफिकेशन भी होता है।
0: देखिए, बुजुर्ग आदमी लोग कहाँ जाएगा जानकारी करने के लिए,
1: ये बात आप सही कर रहे हैं,
0: चलने की क्षमता ही नहीं है, उसको क्या समझ में आ जाएगा, कहाँ बात करेंगे, क्या करेंगे।
1: जी धन्यवाद। श्रोताओं, एक महिला से मिलते हैं और बातें करते हैं, आप अपना नाम बताएं।
2: सुरजी कुंवर।
1: कहाँ के रहने वाली हैं?
2: डोंगलाडीह।
1: क्या स्थिति है अभी आपके मोहल्ला की?
2: गली में हाच हो गया है, द्वार पले हाच है, नली भी पानी भर रहा है, तो इन्हें उन्हें हाच हो रहा है, नल जल है, कबो पानी आवाता कबो बंदे रहता।
1: अच्छा, ये हमेशा नहीं चल रहा है?
2: ना, कबो चली कबो नहीं चली।
1: अच्छा, सरकारी योजना के बारे में बताइए, कुछ लाभ मिल रहा है?
2: राशन मिल रहा है, तो 4 किलो मिल रहा है, 4 किलो ले बेसी मिलते नहीं खे।
1: और वृद्धा पेंशन योजना?
2: वृद्धा पेंशन रुकिए ना गई बा, उन्हें मिलत रहे 400 रुपया, फिर बरल 1100।
1: तो अभी 1100 नहीं मिल रहा है?
2: ना, 3 महीना से रुक रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है।
1: पता की है क्या कारण है, कुछ बताएं लोग?
2: अब हमने क्या जानते जाते ऊपर का सरकार कर रहा बन का नहीं कौन कर रहा।
1: अच्छा, कभी आप लोगों को कॉलोनी मिली है?
2: कॉलोनी मिला है बहुत पहले
1: मिला है।
2: हाँ, बहुत पहले मिला है।
1: इधर नहीं मिला?
2: नहीं मिला है, 2 आदमी के ने मिला है तुर्की पार्टी में, तो छेड़े गए है, आधा बनल है आधा नहीं बना है।
1: अच्छा, यहाँ पर कोई बीमार पड़ जाए तो यहाँ कोई सुविधा है कि नहीं आप लोग?
2: कोई नहीं है यहाँ पर, कोई नहीं आशा है। महिलाओं के लेकर डिलीवरी के लेकर भागी पराई दूसरा गाँव में है, तो फोन कैला पर जाई आ न तो घर ही रही, तो लेके जाइए आदमी, आशा कहाँ है। आंगनबाड़ी भी है तो दूसरा टोला पर है, कम से जो विकास होके के चाहिए, कृषि मैंने सर्विसिया वाला नहीं है, खाली मजदूर है, घर के बाबू के खेत नहीं है, 10 कट्ठा 1 बीघा मलगुजारी पैसा पर 25,000-26,000 खेत ले रहा है, जोत रहा है, कोई नहीं जोत रहा है, कोई दुख में मर रहा है।
1: समस्या तो है आप लोगों के साथ, इस पर ध्यान देना चाहिए, जो भी जनप्रतिनिधि है उन्हें इस पर ध्यान देना चाहिए कि वार्ड नंबर 1 के अंतर्गत जो डोंगलाडीह मोहल्ला है, यहाँ पर कई तरह की समस्याएं हैं, उन समस्याओं से यहाँ के लोगों को निजात मिले,
2: विकास होकर के चाहिए।
1: जी धन्यवाद। श्रोताओं, आप सुन रहे थे नगर निगम सासाराम क्षेत्र स्थित वार्ड नंबर 1 के मोहल्ला डोंगलाडीह के लोगों से की गई हमारी बातचीत। विषय था रोहतास जिला के सासाराम प्रखंड अंतर्गत नगर निगम सासाराम क्षेत्र स्थित वार्ड नंबर 1 के मोहल्ला डोंगलाडीह में विकास कार्य और योजनाएं। श्रोताओं, यदि आप भी अपने गांव मोहल्ला में हुए विकास कार्यों के बारे में बातचीत करना चाहते हों, या आज के कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई प्रतिक्रिया हो, तो हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है, कार्यक्रम आपने लिखा द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी सासाराम, पिन 821115। पत्र के अलावा आप हमें ईमेल के द्वारा भी अपनी प्रतिक्रिया भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है akashvanisassaram akashvanisassaram@gmail.com। श्रोताओं, समय अब आपसे और अधिक बातें करने की इजाज़त नहीं दे रहा है, इसलिए

साप्ताहिक कार्यक्रम विकास के सोपान अब यहीं संपन्न होता है। अगले सप्ताह एक नई जानकारी लेकर हम पुनः आपके बीच होंगे, आज ही के दिन ठीक इसी समय। तब तक के लिए हम आज्ञा चाहेंगे, नमस्कार। कार्यक्रम संकलन एवं सूत्रधार लाल बहादुर दुबे और प्रस्तुतकर्ता संतोष कुमार।

अभी आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम विकास के सोपान, स्वर एवं संकलन लाल बहादुर दुबे, प्रस्तुतकर्ता संतोष कुमार। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103.4 MHz पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम लोक माधुरी।

भरत शर्मा व्यास के गाए इसी गीत के साथ ही लोक माधुरी कार्यक्रम अब यहीं पे संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 मेगा हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम रसधार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं गुंजन सिंह की आवाज़ से। एल्बम का नाम है बदरा रे।

कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं आलोक कुमार और ज्योति तिवारी की आवाज़ में। एल्बम का नाम है गोरिया चांद के अंजुरिया जैसन गोर बारू हो।

0: तनु प्रियंका के गाए इसी गीत के साथ ही रसधार कार्यक्रम अब यहीं पे संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 मेगा हर्ज पर। अब आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम रंग तरंग।
1: मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह और लेकर आई हूं चित्रपट संगीत।

पेंटर बाबू फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में रचना थी कतील शिफाई की। आइए अब सुने ये गाना, फिल्म का नाम हीर राजा। मोहम्मद रफी की आवाज, कैफी आजमी के बोल, मदन मोहन का संगीत है। ओ,

0: उनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
0: और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर सुनिए।

शंकर हुसैन फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। जानिसार अख्तर के बोल थे, खयाम का संगीत था। आइए अब सुने आनंद फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। गुलजार की रचना है, सलिल चौधरी का संगीत।

आनंद फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज थी। इसी के साथ चित्रपट संगीत कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम प्रस्तुत है मैटिनी शो। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको सुनवा रहे हैं बारिश वाले गीत। देश के बहुत सारे हिस्सों में बरसात हो रही है और कुछ जगहों पर बरसात नहीं हो रही है। जहां पर बरसात नहीं हो रही है, इस शुभकामना के साथ ये गाने सुनवा रहे हैं आप तक। बरसात फिल्म का गाना लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें।

तुम्हें मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी होती रातों में जागी सी।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अरे अरे अरे ना ना ना ना ना ना ना।

0: नमक हलाल फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। अनजान की रचना थी, बप्पी लहरी का संगीत था।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बद्दूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा

0: पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके? पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
1: एक और आ गया।
0: एक और आ गया।
2: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
4: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की। 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए
6: विविध भारती पर। अब आपको सुनवा रहे हैं लगान फिल्म का गाना, उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों की आवाजों में।

लगान फिल्म का गाना उदित नारायण, अलका याग्निक, सुखविंदर सिंह, शंकर महादेवन, शान और साथियों की आवाजें थी। जावेद अख्तर के बोल, एआर रहमान का संगीत था। फिल्म 1942 अ लव स्टोरी, कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू की आवाजें हैं। जावेद अख्तर के बोल

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों देशों के बीच रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। प्रधानमंत्री मोदी ने मुक्त व्यापार समझौते को द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने वाला ऐतिहासिक कदम बताया।
1: इस वर्ष दोनों देशों के बीच 9 महीनों के रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। यह आप सभी के लिए मार्केट एक्सेस, इन्वेस्टमेंट, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और टैलेंट मोबिलिटी के नए अवसर लेकर आएगा। मुझे विश्वास है हम 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना बढ़ाएंगे।
0: विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने ऑकलैंड में बताया कि दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। श्री टंडन ने बताया कि आगामी 4 वर्षों में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है। प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में श्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। उन्होंने उद्योग और खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से भी मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों को मजबूत करके एक सशक्त, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य के युद्धों में एआई और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग हो सकता है, लेकिन उन्हें दृढ़ संकल्प और सेना के साहस के साथ ही जीता जा सकता है। विशाखापट्टनम में नौसेना के बेड़े में प्रोजेक्ट 17A के 6 स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी का आज जलावतरण किया गया। उन्होंने कहा कि भारत की समुद्री ताकत को बढ़ाने और स्वदेशी रक्षा क्षमता को मजबूत करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इसमें उन्नत स्वदेशी तकनीकों का उपयोग किया गया है।
2: INS महेंद्रगिरी में मल्टी फंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन है, जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकते हैं। और इसमें इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है, टॉरपीडो लॉन्चर्स है, एक इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है और क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। ये तमाम चीजें INS महेंद्रगिरी को महेंद्रगिरी पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती हैं।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो के कार्यों में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को ही सौंपा जाना चाहिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच परिवहन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और साझा परिवहन रणनीति पर चर्चा की जाएगी। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 3 दिन मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में अगले 5 दिन भारी बारिश की संभावना है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ पहले महिला क्रिकेट

0: मैच के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में एक विकेट पर 21 रन से आगे खेलेगा। कल भारतीय टीम ने पहली पारी में 285 रन बनाए। स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात 2:30 बजे इंग्लैंड के साथ खेलेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जाने माने अभिनेता कुमार गौरव का जन्मदिन है, उन्हें जन्मदिन की बधाई देते हैं और कुछ गाने उन्हीं के नाम। फिल्म लव स्टोरी लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाजें हैं, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

लव स्टोरी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज, लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल थे, राहुल देव बर्मन का संगीत था। ये फिल्म है नाम, पंकज उधास और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: तेरी कसम फिल्म का गाना आप सुन रहे थे अमित कुमार की आवाज में, रचना थी आनंद बख्शी की, संगीतकार राहुल देव बर्मन।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
2: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

तेरे नाम इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में। समीर ने इसे लिखा था, धुन बनाई थी हिमेश रेशमिया ने। कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: रजिया सुल्तान फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे कब्बन मिर्जा की आवाज में। निदा फाजली के बोल थे, खयाम का संगीत था। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट

डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

जुबैदा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे अलका याग्निक की आवाज में। शब्दकार थे जावेद अख्तर और संगीतकार एआर रहमान। फिर तेरी कहानी याद आई, ये नाम फिल्म का है। इसी फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं। अलका याग्निक।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

साजन फिल्म का गाना आप सुन रहे थे एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में। रचना थी समीर की, संगीतकार नदीम श्रवण। 1947 अर्थ फिल्म का गाना सुनिए साधना सरगम की आवाज में। जावेद अख्तर के बोल यार रहमान का संगीत।

1947 अर्थेस फिल्म के गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं सुरीला सफर कार्यक्रम। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। वैसे जो श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज पर हैं, जुड़े हैं, उन्हें पता चल गया होगा कि आज की इबारत क्या है, लेकिन जो लोग विविध भारती के फेसबुक पेज पर मौजूद नहीं हैं, उनके लिए हम आज की इबारत बता देते हैं। वैसे संक्षेप में बता दें कि इस कार्यक्रम का स्वरूप ये है कि हम एक इबारत पोस्ट करते हैं और उस इबारत से जुड़ी हुई बातें आपको साझा करनी है। उनमें जो शब्द शामिल होते हैं, उन शब्दों से गीत आपको चुनने होते हैं और कुछ गीत हम अपने आप सहेज कर रखते हैं। तो देखते हैं कि आपके और हमारे गाने कितने मैच करते हैं। बहरहाल, इबारत जरा हम पढ़कर आपको सुना दें। ये दिल बड़ा अजीब है, कभी खुद से रूठ जाता है, कभी जमाने से, कभी खुशियों की पालकी पर इंतजार के मोती पिरोता है, तो कभी यादों की नदी में डूबकर मुस्कान सजा लेता है, कभी अनकही बातों के बोझ तले खामोश हो जाता है और हर सुबह नई आशाओं के दीप जलाकर मुस्कुरा उठता है, कभी उदास शाम को तन्हाई की चादर ओढ़ चांद का रास्ता देखता है। शायद इसी का नाम दिल है, जो टूटकर भी खामोशियों और तन्हाइयों को गुनगुनाता हुआ प्यार या प्रेम को जिंदगी में घोल लेता है। बहुत सारे श्रोताओं ने आज टिप्पणियों में गाने लिख डाले हैं, जिनमें बहुत सारे गाने हमने चुन रखे हैं, वही जो आप सुनना चाहते हैं। दोस्तों, लेकिन ये बात जरा हमें बताइए कि कौन सी वो बात है जो आपके दिल में आई और आपने उसे बड़ी रुखाई के साथ नजरअंदाज कर दिया। कौन सी वो बात है जब आपने अपने दिल की बात सुनी और मानी? कौन सा ऐसा मौका आया जब दिल और दिमाग में द्वंद हुआ? वैसे दिल बहुत जज्बाती है, तो दिल पर बोझ ज्यादा न डालें। अपने दिल की हिफाजत के लिए रोजाना आप क्या करते हैं, ये भी जरा विविध भारती के फेसबुक पेज पर बताइएगा। और हाँ, आज की इस इबारत में इंतजार भी है, खामोशी है, रास्ता है और बहुत कुछ है, तो शब्दों से जुड़ी हुई बातें भी आप लिख सकते हैं। शब्द ढूंढिए, उसमें कौन से शब्द हैं जिस पर गाने हैं, और गाने हमें सुझाते चलिए। हम सुनवा रहे हैं ये गाना, और इस गाने का जिक्र बहुत सारे श्रोताओं ने किया है। जरा देखिए, आपका गाना भी तो यही नहीं है या कोई और गाना है? कौन है हीरोइन पर्दे पर, ये भी बताइएगा, और गीतकार का नाम भी आपको बूझना है। फिल्म अनुपमा, संगीतकार का नाम पता है क्या आपको? हेमंत कुमार।

कुछ दिल ने कहा। दोस्तों बताइए जरा, आपके दिल ने कब क्या कहा और आपने किन लम्हों में खुद से गुफ्तगू की, ये बताते चलिए। और साथ में किसका इंतजार कब किया और कब किसी के इंतजार में दीप जलाए, कौन से वो गाने हैं। हमने तो आपको हिंट भी दे दिया कि कौन कौन से गाने हैं, देखते हैं कि कौन से श्रोता लिख पाते हैं हमने जो गीत चुना है वो। बहरहाल ये तो श्रोताओं वाला ही गाना था। बहरहाल आगे बढ़े और आपकी टिप्पणियां आप तक पहुंचाते चलें। एक श्रोता ने लिखा है कि किसी अपने का इंतजार दिल की सबसे खूबसूरत आदत है, हर आहट में उसका एहसास, हर दस्तक में उसके आने की आहट सुनाई देती है। जब किसी अपने के आने का इंतजार रहता है तब घड़ी की सुइयां भी जैसे थोड़ी धीरे चलने लगती हैं। बिल्कुल सही फरमाया है आपने। एक श्रोता लिख रहे हैं कि बहुत खूब है आज की इबारत जो हमें सिखाती है कि दिल का अजीब होना ही उसकी खूबसूरती है। यदि दिल में उदासी न हो तो खुशियों का मूल्य समझ में ही नहीं आएगा, और यदि वो इंतजार के मोती न पिरोए तो मिलने का आनंद अधूरा रहेगा। दिल दरअसल विपरीत भावनाओं, खुशी गम शोर खामोशी तन्हाई प्यार के बीच संतुलन बनाने की निरंतर कला है। तो अब बात इंतजार की चली है, मतलब दो श्रोताओं ने लिखा इंतजार की बात, तो इंतजार वाला गाना सुनते हैं, फिल्म छलिया। आपको पूछना है गीतकार और संगीतकार का नाम, लता मंगेशकर की आवाज़।

छलिया फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज, कमर जलालाबादी के बोल कल्याण जी आनंद जी का संगीत। श्रोताओं ने गीतकार संगीतकार का नाम बिल्कुल सही बताया। इसके पहले हमने आपसे पूछा था अनुपमा फिल्म के गाने में कौन है हीरोइन, सभी श्रोताओं ने इसका भी जवाब सही दिया, शर्मिला टैगोर, और गीतकार का नाम भी बिल्कुल सही फरमाया, कैफी आजमी। और अब अगला गीत क्या हो सकता है जरा बूझिए। तो हम आपको हिंट दे रहे हैं कि कौन सा ऐसा मौका आता है जब आप दीप जलाते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, किस खुशी के मौके पर, ये बताइए और गाना बूझिए। तब तक हम आपकी टिप्पणी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि जिस भी उम्र में जो चीज दिल को छूती है यादों में शामिल हो जाती है, कोई गहरी संवेदना एक रूप में ढलकर एक आहट बनकर बस अपनी बात कह रही हो, जैसे कि फिल्म अनुपमा का ये गीत कुछ दिल ने कहा कुछ भी नहीं, जुगनू तभी चमकता है जब जब तक उड़ता है, कमोवेश यही हाल दिल का भी है, जब इसकी धड़कन रुक जाए तो हम भी थम जाते हैं, दिल के मौसम का हाल ख्यालों और ख्वाबों की मखमली जमीन से जुड़ा है, इसलिए दिल को कभी मुरझाने मत देना, इसे अपने खूबसूरत विचारों से हमेशा सजाए रखना। क्या बात कही है, सचमुच अपने दिल की हिफाजत भी करनी चाहिए, क्योंकि दिल कई बार कमजोर भी हो जाता है, कई बार जज्बाती हो जाता है, कई बार बोझ सहन नहीं कर पाता है, इसलिए अपने जो रोजमर्रा की जिंदगी के टेंशन्स हैं, तनाव हैं, उन्हें दूर भगा दीजिए और दिल को बिल्कुल खाली रखिए, बिल्कुल खाली बर्तन की तरह। और हाँ, अभी हमने बूझने के लिए कहा है कि कौन सा गाना होगा, जरा बूझते रहिए। आपकी टिप्पणी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल ये टिप्पणी आप तक पहुंचा रहे हैं कि एक श्रोता ने लिखा है, कभी ये खुशियों की पालकी में बैठकर सपनों के आकाश में उड़ने लगता है, तो कभी इंतजार के मोती चुनते चुनते यादों की नदी के किनारे जा बैठता है, कभी मुस्कान की रोशनी से चेहरा जगमगा उठता है, तो कभी

अनकही बातों का बोझ इसे खामोश कर देता है। मेरी इबारत को थोड़ा हेर फेर करके लिख दिया है इन्होंने। अब हम आगे देखते हैं कि हमारे अगले श्रोता ने क्या लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि इस दिल को मनाने की भी कला होना जरूरी है। हम सभी को प्रभु परमेश्वर ने दिमाग सर से भी नवाजा है, इसलिए अगर जिंदगी की सही पारी खेलनी है तो अपने दिल भाई साहब को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी होता है। तो बताइए, आप कब अपने दिमाग की सुनते हैं, कब दिल को इग्नोर करते हैं, ये भी बताते चलिए। और सच बात तो ये है कि जब कोई निर्णय लेना पड़ता है तो दिल को हमें नज़रअंदाज करके दिमाग की सुननी पड़ती है। अब आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवा रहे हैं अब चित्तचोर फिल्म का गाना। और हमने आपसे पूछा था कि कब किन मौक़ों पर दीप जलाते हैं आप, ज़रा ये बताइए कि फिल्मी पर्दे पर कौन गा रहे हैं ये गाना, कौन कह रहे हैं एक दूसरे से ये बात। हीरो हीरोइन का नाम पूछना है, फिल्म चित्तचोर, ये सुदास और हेमलता की आवाजें हैं।

चितचोर फिल्म का गाना था ये, सुदास और हेमलता की आवाजें थी। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था और हमने आपसे पूछा था हीरो हीरोइन का नाम। बहुत त्वरित जवाब आया श्रोताओं की ओर से और सही जवाब आया अमोल पालेकर और जरीना वहाब पर्दे पर होते हैं। और एक भी श्रोता ने गलत जवाब नहीं दिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए। एक श्रोता ने लिखा है कि वैसे तो दीप जलाने की परंपरा दिवाली के त्यौहार के दौरान होती है, पर अपने घर के मंदिर में तो रोज ही दीपक जलाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि नवरात्रि पर, नववर्ष पर, दीपावली पर और कुछ साल पहले तो शाम होते ही हमारा काम दिया जलाकर रखने का होता था, बिजली हर वक्त नहीं रहती थी। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि दीप जलाने की परंपरा, तो जब खुशी का मौका आता है तब भी हम दीप जलाते हैं, बिल्कुल खुशी में हम दिए जलाते हैं। और खुशी का दीप जलाने की बात दिल से भी होती है कि दिल आपका, जब आप खुश होते हैं तो अपने आप दिल में खुशी का दिया जलता है। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल एक तरह से धड़कता हुआ स्पंज की तरह होता है, इसे सुचारू रूप से चलने के लिए ब्लड प्रेशर को संतुलित रखना पड़ता है। एक श्रोता ने लिखा है कि 2014 को हृदय की शल्य चिकित्सा हुई थी, तब डॉक्टर साहब ने एक बहुत सही सलाह दी थी, आज के बाद किसी भी स्थिति में सुख में बहुत ज्यादा खुश न हो, बस प्रसन्नता को खुशबू की तरह महसूस करते रहो और दुख का समय आए तो बहुत ज्यादा दुख में न घिरते हुए अपने आप को संभाल कर रखो। एक श्रोता लिख रहे हैं कि जिंदगी के चौराहे पर अक्सर हम खुद को खड़ा पाते हैं, जहां एक तरफ दिमाग की ठंडी दलीलें होती हैं और दूसरी तरफ दिल की बेबाक पुकार। दिमाग नफा नुकसान देखता है, गणित लगाता है, लेकिन दिल सिर्फ सुकून ढूंढता है। और सच तो ये है कि दुनिया के सबसे खूबसूरत फैसले, चाहे वो किसी से बे इंतहा मोहब्बत हो या किसी अजनबी की मदद के लिए हाथ बढ़ाना, हमेशा दिल से ही लिए जाते हैं फैसले। बिल्कुल सही फरमाया है आपने। और जरा आप ये भी बताइए कि कब आप खामोश हो जाते हैं, दोस्तों के बीच कौन सी वो घड़ी है जब आपको लगता है कि यहाँ तो चुप रह जाना ही बेहतर है, या घर परिवार में कौन सा ऐसा लम्हा आता है जब आपको लगता है कि चलो जाने दो, खामोश रहो, छोड़ो हटाओ, ये बात आती है। और जब आप तन्हा होते हैं तो आप अपना दिल कैसे बहलाते हैं, कोई गीत सुनते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, या फिर कहीं घूमने निकल जाते हैं यूं ही बेसबब? तो अपनी बात आप बताते चलिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर, www.facebook.com/vbsmumbai टाइप करेंगे तो पहुंच जाएंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर। अब बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने का जिक्र किया है, फिल्म आकाशदीप, तो सुन लीजिए यही गाना, दिल का दिया जलाकर। जरा गीतकार और संगीतकार का नाम बूझिए। यहाँ तन्हाई भी है, दिल भी है, क्या नोटिस किया आपने?

आकाशदीप फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज थी, रचना थी मजरूह सुल्तानपुरी के, संगीतकार चित्रगुप्त, और ये हमारा सवाल भी था, श्रोताओं ने सही जवाब लिख भेजा है। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रस्तुत गद्य इबारत की इबादत से निकले शब्दों में, मतलब इबारत से निकले शब्दों में दिल बड़ा अजीब, कभी खुद से रूठ जाता है, जमाने से, सुबह शाम, उदास, तन्हाई जैसे अनेक संज्ञा सर्वनाम विशेषण वाले शब्द हैं, तो इन शब्दों की भरमार है, तो मेरे हिसाब से गीत कुछ इस प्रकार हो सकते हैं, और गीत के बोल इन्होंने लिखे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि इस दिल की दास्तान की क्या कहें, आशा निराशा के समुद्र में हिचकोले खाता है, कभी किसी बीती बातों को दुखद याद करके मायूस हो जाता है, आंखें झरझर बहने लगती हैं, फिर अपने आप को दिलासा देकर शांत होकर अगली भोर की आशाओं की किरण के साथ प्रफुल्लित होकर एक नई ऊर्जा से भर जाता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि जब कोई मित्र परिवार का सदस्य अपने दिल का हाल या दुख बांट रहा हो तो उन्हें ज्ञान, सलाह या उपदेश की जरूरत नहीं होती, उस वक्त आपका एक शांत श्रोता बनकर उनकी बात को सुनना ही आपके लिए सबसे बड़ा सहारा होता है, मतलब ऐसे मौके पर आप शांत रह जाते हैं। तो अब क्या बात है, थोड़ी मुस्कुराने की बात की जाए, तो अपने मुस्कुराने की बात आप बताइए कि कब आप मुस्कुरा पड़ते हैं। कभी कभी यूं ही बैठे बैठे लोग मुस्कुरा उठते हैं अपने आप, कुछ लोग मोबाइल में कुछ टेक्स्ट देकर, कुछ मैसेज देखकर मुस्कुरा उठते हैं, आजकल तो रील देखकर मुस्कुराने का ज़माना बड़ा गजब का है। ज़रा अपने अनुभव भी साझा कीजिए, आप कब और कैसे मुस्कुराते हैं। बच्चों की नटखट शरारतों पर मुस्कुराना होता है, तो बताइए। फिल्म का नाम आपको बूझना है, लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, चित्रगुप्त का संगीत।

भाई, किसी की मुस्कुराहट से आपका दिल बहल जाए तो मुस्कुराना ठीक है। बहुत ज़रूरी हो जाता है किसी के लिए मुस्कुराना, और कभी कभी यूं ही खुद से गुफ्तगू करते हुए भी हम मुस्कुरा पड़ते हैं। बहरहाल, बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि हम कब कैसे मुस्कुराते हैं। ज़रा ये बताइए कि एक गाना है रूठने मनाने का, इसमें तो रूठना शब्द भी है, आप शायद भूल गए। उसके लिए बहुत कम श्रोताओं ने गाने लिखे हैं रूठने वाले। एक ऐसा गाना हम आज खोज कर ले आए हैं जिन्हें आप कभी कभार सुनते होंगे या ना के बराबर सुने हो वो, लेकिन विविध भारती के भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में वो गाना बजाया जाता है, प्रसारित किया जाता है। तो कोई ऐसा गाना रूठने वाला याद आ रहा है आपको तो ज़रा विविध भारती के फेसबुक पेज पर ज़रूर बताइए, और हम उसे देख रहे हैं और आपकी टिप्पणी वहाँ पर सुरक्षित रहती है और सेव रहती है। एक श्रोता ने लिखा है कि आपने तो अकेले लोगों के दुखती रग पर हाथ रख दिया, पत्नी के गए एक साल से ऊपर हो गए, कैसे दिन गुजरते हैं, कैसे दिल को समझाकर रखा है हम ही जानते हैं, और बेड पर एक रेडियो है, रात 11 बजे तक विविध भारती सुनते रहते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल तो है, क्या कहना इसका, कभी बिना वजह मुस्कुरा देता है, कभी छोटी सी बात पर उदास हो जाता है, ये रिश्तों में अपनापन ढूंढता है, यादों में सुकून तलाशता है और उम्मीदों के सहारे हर दिन एक नई शुरुआत कर लेता है, टूट कर भी धड़कना नहीं छोड़ता, हार कर भी प्यार करना नहीं भूलता है। एक श्रोता ने लिखा है कि मानव शरीर का मुख्य अंग हृदय यानी दिल होता है, जिंदा रहने के लिए दिल यानी हृदय का धड़कना जरूरी है, उसी तरह आकाशवाणी रूपी शरीर का दिल देश की सुरीली धड़कन विविध भारती है, जिसे हर इंसान यानी श्रोताओं के मनोरंजन के लिए दिन रात धड़कना जरूरी होता है, तभी तो हमारे आपके रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी, दोपहर 1 बजे सुरीला सफर में जुड़ने याद उनको भी आती तो होगी, हमने तो हमारे दिल की गिरह खोल दी है चुप न बैठकर, हमारे दिल ने कुछ कहा, कुछ भी नहीं, कुछ भी लिख दिया। भाई, आपका लिखा और आपका कहा विविध भारती के फेसबुक पेज तक पहुंच गया और अब श्रोताओं तक भी पहुंच गया, करोड़ों श्रोता जान गए आपके दिल की बात। चलिए अब हम इंतजार की बात करते हैं, और आपको पूछना है पर्दे पर कौन गा रहे हैं ये गाना, कलाकार का नाम और साथ में स्वर और संगीत किसका है। रूठने वाला गाना भी आपको याद करना है।

खामोशी फिल्म का गाना था और हमने आपसे पूछा था हीरो हीरोइन का नाम, राजेश खन्ना और वहीदा रहमान। स्वर और संगीत भी पूछा था लेकिन बहुत कम श्रोताओं ने लिखा है, हेमंत कुमार और गुलजार के बोल थे। और हमने आपसे पूछा था रूठने पर एक ऐसा गाना है जो आपने कभी कभार ही सुना होगा। विविध भारती के भूले बिसरे गीत कार्यक्रम से हम प्रसारित करते हैं वो गाना, तो उस गाने का जिक्र अभी तक किसी ने नहीं किया, लेकिन जिसने गानों के जिक्र किए हैं जिन श्रोताओं ने, वो ये गाने हैं, रूठे सैया मनाऊं कैसे, रूठा है तो मना लूंगा, और एक श्रोता ने लिखा है तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं। ये गाना बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, रूठा है तो मना लेंगे, रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे, ओ दिलवर जानिया रूठने मनाने में बीत न जाए जवानियां, और रूठो ना हमसे ओ बच्चों की नानी, और एक श्रोता ने लिखा है देखो रूठा न करो अजी रूठ कर अब कहां जाइएगा। भाई ये सारे गाने तो आप अक्सर सुनते रहते हैं, लेकिन ये वाला गाना पिछली बार कब सुना था, जरा याद हो तो बताइएगा। फिल्म का नाम अगर बता सके तो बताइए। गीतकार का नाम भी बताइए। फिल्म का नाम, गीतकार का नाम आपको बूझना है, पहेली जरा कठिन है।

दो फूल फिल्म का ये गाना था। लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजें थी। हंसरत जयपुरी के बोल थे, वसंत देसाई का संगीत था। इसकी जानकारी शायद किसी को नहीं थी, किसी ने इस बारे में बताया नहीं ना फिल्म का नाम, तो ये भी नहीं बताया आपने कि पिछली बार आपने कब सुना था। अब कभी भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में सुनिएगा और याद कीजिएगा ये गाना। बहरहाल रूठने पर बहुत सारे गाने हमारे श्रोताओं ने लिख भेजे हैं। कब तक हुजूर रूठे रहोगे लेकिन गुस्से में प्यार बलम जी अब तो हंसो, रूठा है तो मना लेंगे ना रूठो ना रूठो मेरी जान, देखो रूठा ना करो रूठे सैया। और एक श्रोता ने लिखा है कि धन्यवाद इस गाने के लिए, और एक श्रोता ने लिखा है कि वो तो रूठा है मना लेंगे। एक श्रोता ने लिखा है, मोबाइल पर जब कोई रील देखता हूँ तो कभी कभी हंस हंस कर पेट में बल पड़ जाते हैं, फिर मासूम बच्चों की मासूम हरकतें देखकर हंसी आ जाती है। ये इस बात पर है कि कब किन लम्हों में आप मुस्कुराते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि रूठना मनाना अच्छा जी मैं हारी, ये वाला गाना लिखा है। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है रूठने पर गाने, लेकिन ये भी बताइए कि जब कोई रूठ जाता है आपसे तो आप मनाते हैं या आप रूठने वाले को यूं ही छोड़ देते हैं, जाओ भाड़ में जाओ रूठे रहो हम तो नहीं मनाएंगे। आप मनाते हैं या आप मनुहार करवाते हैं, दोनों बातें लिखिए। एक श्रोता ने लिखा है कि जब मैं तन्हा होता हूं तो या तो मोबाइल ऐप पर विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रोग्राम सुन लेता हूं, या फिर घंटे भर के लिए कहीं घूमने चला जाता हूं, अखबार भी पढ़ लेता हूं, या पुराने गाने सुनकर अपनी तन्हाई को दूर करता हूं। और एक श्रोता ने लिखा है कि जब मैं गुस्से में होती हूं तो चुप हो जाती हूं, थोड़ी देर में अपने आप गुस्सा शांत हो जाता है। ये बहुत अच्छा नुस्खा है वैसे, कि अगर सामने वाला गुस्से में कुछ बोल रहा है, आपको भी गुस्सा आ रहा है, तो आप शांत हो जाएं तो सामने वाले का गुस्सा भी खत्म हो जाता है आपका भी। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल का विचित्र फंडा है, किसको अपनाएगा किसको छोड़ देगा इसकी जानकारी नहीं होती है। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल का क्या कहें, सुबह शाम उठते बैठते कैसे इसकी धड़कन बढ़ गई, हांफने पर डॉक्टर तक पहुंचे जिन्होंने कहा कि आपने कुछ ऐसा सोचा क्या, आप जिंदगी के निजी फैसलों में कभी दिल को न लें, बस दिमाग ही लगाएं और उनकी टैबलेट आज तक छूटी नहीं। भाई अपने दिल का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल है कि मानता ही नहीं और किसी पर भी आ जाता है, दिल एक तरह से धड़कता हुआ स्पंज है। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि दिल भी टूट के छलनी हुआ, विधि ने जो घात किया, खुशियां पल भर में लुट गई, यादों को भी नदी में ही विसर्जित कर दिया, बस एक सिर्फ एक निजी जागती उसकी निशानी

अब कलेजे से लगा के संभालना है और उसे आंखों में संभाल के रखना है जब तक सांस चलती है। और अब चलिए सुनते हैं ये गाना। जरा बताइए कौन है हीरोइन, पर्दे पर कौन गा रही है ये गाना, और गीतकार का नाम आपको बूझना है। फिल्म है भरोसा। इसमें इबारत के कौन कौन से शब्द हैं जरा ये भी बूझिए आप।

भरोसा फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज़, राजेंद्र कृष्ण के बोल, रवि का संगीत। इस गाने में एक नाराज़गी भी है और दुख भी है और साथ भी है, भूलने की बात भी है, याद भी है, दिल भी है। तो आज की इबारत के बहुत सारे शब्द इस गाने में थे और हमारे श्रोताओं ने भी इस गाने का जिक्र किया था। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं जब रूठती हूँ तो न मनाती हूँ न मनुहार करवाती हूँ। क्या बात है भाई, ये तो अच्छा नुस्खा है कि ठीक है, ना मैं मनाऊंगी ना तुम, मतलब मैं ना मैं रूठूँ ना तुम रूठो, ये वाला हिसाब किताब है ना। और बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब दिया है कि पर्दे पर आशा पारिख हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि मन की हर उदासी का सबब दिल का टूटना नहीं होता है, कई बार कुदरत का बदलता मिजाज और शरीर में विटामिन की कमी जैसी शारीरिक वजहें भी इंसान को अवसाद और डिप्रेशन में डाल देती हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि सामने वाला हमारी कोई गलती के बिना ही रूठता है तो मनाने का सवाल नहीं है, पर अगर सोचने पर हमारी गलती महसूस होती है तो ज़रूर मनाने की कोशिश करनी चाहिए। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल के बारे में क्या कहें, ये एक ऐसी चीज़ है जो अनवरत क्रियाशील रहती है, जहाँ इसने धड़कना छोड़ा व्यक्ति इस संसार से विदा हो लेता है। दिल का धड़कना और सोचना उम्र के साथ बदलता रहता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि खुशियों में

झूम उठता है दिल, गम में मौन हो जाता है, वैसे ही हमारी एक मानसिक स्थिति है जो हमारे मनोभावों को प्रस्तुत करती है, एहसास दिलाती है, चाहे वो प्यार हो, दोस्ती हो, परिवार के प्रति जिम्मेदारी। फिल्मों में दिल के संबंधित कई गाने हैं और दिल एक मंदिर है गानों की लंबी फेहरिस्त दी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दिल शब्द के ही गाने हमने आपसे पूछे थे, हमने तो आज की इबारत से जुड़े हुए गाने पूछे थे। एक श्रोता ने बहुत सारे शब्द लिखे हैं, जमाना, उदास, तन्हाई, और इन्होंने तन्हाई और अकेलापन, सुबह शाम ये भी लिखा है, तो सुबह शाम बहुत कम श्रोताओं ने लिखा है, तो चलिए भाई ये गाना सुनते हैं और देखिए कि क्या आपने याद किया। और हाँ, आपको बता दें, दो फूल फिल्म का गाना जो हमने सुनवाया था, कुछ हमारे सुधीर श्रोता हैं जिनकी जानकारी बड़ी समृद्ध है, उन्होंने लिख दिया था विविध भारती के फेसबुक पेज पर, हमें देर से दिखा, तो उनका भी हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जरा सुनिए ये गाना और बताइए गीतकार और संगीतकार का नाम।

जब भी कभी मुश्किल वक्त आता है तो हम ये गीत ज़रूर गुनगुनाते हैं, और जब आपके घर में आपके आसपास ख़ास तौर से टीन एज बच्चे जो पढ़ाई के प्रेशर से परेशान हो, तन्हा उन्हें अकेलापन लग रहा हो, तो उन्हें ये गाना ज़रूर गा के सुना दीजिए कि हाँ सुबह ज़रूर आएगी और तुम्हारे पेपर्स अच्छे होंगे, मार्क्स बढ़ेंगे। इस तरह के बहुत सारे गाने हैं समझाइश वाले गानों के।

माध्यम से हमारे बड़े बुजुर्ग समझाया करते थे, तो आप भी समझा सकते हैं। गीतकार संगीतकार का नाम पूछा था साहिर लुधियानवी और खयाम। एक श्रोता ने लिखा है कि बेबस बेकाबू बेचैन दिलों के हसरतों उमंगों तरंगों को चित्रित करती इबारत है। अनुभूति तन्हाई बेबसी मान मनवल हंसाती रुलाती बेबसी दिलों के तजुर्मा को तरन्नुम में ढाल आज सुरीला सफर। बाकी खासम खास रहेगा और खासम खास हो रहा है, एक श्रोता ने लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि इस दिल की दास्तान की क्या कहें, आशा निराशा के समुद्र में हिचकोले खाता है, आशाओं के किरण के साथ प्रफुल्लित होकर नई ऊर्जा से भर जाता है, नए सपनों और उन्हें पूरा करने की ओर अग्रसर हो जाता है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि दिल और दिमाग का द्वंद्व हमेशा से रहा है, रिश्ते बनाए तो दिल से जाते हैं लेकिन निभाए दिमाग से। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि अगर सामने वाले पर गुस्सा आ रहा हो तो उस समय चुप रहना ही उचित रहता है, क्योंकि गुस्सा तो थोड़ी देर बाद शांत हो जाता है पर उस समय गुस्से में कही गई बातें सामने वाले को दूर कर देती हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि कभी खुद से रूठ जाता है दिल, कभी जमाने से। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि ये दिल बड़ा अजीब है। और अब चलिए प्रोग्राम का आखिरी गाना सुनते हैं, फिल्म आह से। आपको पूछना है कौन है हीरो कौन है हीरोइन, और गीतकार संगीतकार का नाम भी जरा बताइएगा। फिल्म आह

फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज़ थी। हमने आपसे पूछा था गीतकार और संगीतकार का नाम। गीतकार थे शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन, और हीरो हीरोइन का नाम भी पूछा था। सभी श्रोताओं ने बहुत कम वक्त में बहुत जल्द त्वरित जवाब दिया, नरगिस और राज कपूर। एक श्रोता ने लिखा कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट गीत है, मैंने अपनी डायरी में लिखा था ये गीत। और एक श्रोता ने लिखा है कि सबसे ज़्यादा वक्त मेरी नवासी को मनाने में लगता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि जब किसी को गुस्सा आए तो चुप रहना ज़्यादा बेहतर होता है। बहुत सारे श्रोताओं ने आज अपनी बातें और अपनी यादें साझा की। किसी ने रूठने की बातें की, किसी ने तन्हाई की बातें की, किसी ने दिल की बातें की। दिल की बातें श्रोताओं ने ज़्यादा की। बहरहाल कुछ श्रोताओं ने यह भी लिखा है कि आज का सुरीला सफ़र सुनते हुए हमारी दोपहर सुरीली हो गई। भाई, हमारी दोपहर भी सुरीली हो जाती है आपके साथ, जब आपकी टिप्पणियों के साथ हम होते हैं। बहरहाल आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। सुरीला सफ़र कार्यक्रम का सफ़र आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

0: श्रोताओं नमस्कार। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो घर बनाकर रहता है। एक निश्चित उम्र में वो घर बसाता है और अपने परिवार को बढ़ाने की ओर अग्रसर होता है। कई तरह के पड़ाव किसी भी मनुष्य के जीवन में आते हैं, जिनमें किसी बच्चे के जन्म को सबसे खास माना जाता है।
1: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वैशाली जिला मुख्यालय हाजीपुर स्थित जिला निबंधन कार्यालय में आयोजित समारोह से इस सुविधा का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट की भी शुरुआत की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव भी मौजूद रहे। मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग के मंत्री मदन सहनी ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत बुजुर्गों को घर बैठे भूमि प्लॉट और फ्लैट के निबंधन की सुविधा उपलब्ध होगी। सेवा के अंतर्गत पेपरलेस निबंधन, सीओ द्वारा निबंधन संबंधी पूर्व जानकारी तथा जीआईएस तकनीक के माध्यम से स्थल निरीक्षण जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। यह व्यवस्था प्रदेश के सभी 145 निबंधन कार्यालयों में लागू होगी। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि प्रदेश में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता है। श्री सिन्हा ने पटना में विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को उर्वरकों की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था की नियमित निगरानी के निर्देश दिए। कृषि मंत्री ने किसानों से आग्रह किया कि वे उर्वरक खरीदते समय रसीद अवश्य लें। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से राजधानी पटना समेत कई जिलों में देर रात से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान पटना के विक्रम में लगभग 100 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। राजधानी पटना में भी लगभग 90 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग ने आज मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और सीवान जिले में अत्यधिक भारी बारिश, जबकि पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, शिवहर, सीतामढ़ी, कटिहार और पूर्णिया जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाने वाला यह दिन बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस पर प्रदेश भर में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बगहा की एक अदालत ने मानव तस्करी के एक मामले में पश्चिम बंगाल के दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर 13 जुलाई को सुनवाई होगी। यह मामला मात्र 24 दिन पुराना है। अररिया जिले के बतना थाना क्षेत्र से पुलिस और एसटीएफ की टीम ने एक चारपहिया वाहन से 18 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। किशनगंज में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की हीरक जयंती के अवसर पर आयोजित 10 दिवसीय स्पंदन स्पोर्ट्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट फुटबॉल प्रतियोगिता संपन्न हो गई। फाइनल मुकाबले में पूर्णिया आदिवासी यूनाइटेड फुटबॉल क्लब की टीम विजेता बनी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
4: سامعین آداب، یہ آکاشوانی پٹنہ ہے۔ اب آپ محمد تنویر علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ جمہوریت میں تضادات ایک فطری امر ہے، لیکن آئین کے تئیں عزائم اور عوامی فلاح

0: सबसे बालातर होना चाहिए। जनाब राधा कृष्णन गया जी के बीपाट अहाते में अरकान असेंबली के ट्रेनिंग कैंप और प्रबोधन प्रोग्राम के इफ्तिताही इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने अवामी नुमाइंदों से जमहूरी अकदार, शफाफियत और अवाम के तई जवाबदेही को तरजीह देने की अपील की। जनाब राधा कृष्णन ने कहा कि तरक्की याफ्ता बिहार के बगैर तरक्की याफ्ता भारत के निशाने को हासिल नहीं किया जा सकता। तकरीब में गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन, वजीर आला सम्राट चौधरी, असेंबली स्पीकर डॉक्टर प्रेम कुमार, कानून सास काउंसिल के चेयरमैन अवधेश नारायण सिंह, असेंबली के डिप्टी स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव समेत दीगर मुअज्जज अफराद मौजूद थे। दो रोज़ा प्रबोधन प्रोग्राम का मकसद नए और पुराने सभी अरकान को पार्लिमानी उमूर और असेंबली के शरायत व जवाबिस से वाकिफ कराना है। रियासत में आज से 80 बरस या उससे जायद मुअम्मर शहरियों के लिए घर बैठे ज़मीन, प्लाट और फ्लैट के रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो गया है। वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने वैशाली ज़िला हेडक्वार्टर हाजीपुर वाक़े ज़िला रजिस्ट्रेशन दफ्तर में मुनक़िद तकरीब में इस सहूलत का आगाज़ किया। इस दौरान उन्होंने मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट की भी शुरुआत की। इस मौके पर नायब वज़ीरे आला विजय कुमार चौधरी और बीरेंद्र प्रसाद यादव भी मौजूद थे। एक्साइज और रजिस्ट्रेशन महकमा के वजीर मदन सहनी ने बताया कि नए निज़ाम के तहत बुजुर्गों को घर बैठे ज़मीन, प्लाट और फ्लैट के रजिस्ट्रेशन की सहूलत दस्तियाब होगी। इस सर्विस के तहत पेपरलेस रजिस्ट्रेशन, CO के जरिए रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक कबल जानकारी और GIS तकनीक के तवसुस से काम के मकाम के जायजे जैसी सहूलतें भी फराहम की जाएंगी। ये बंदोबस्त रियासत के सभी 145 रजिस्ट्रेशन दफातर में नाफिज होगा। वजीर ज़राअत विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि रियासत में फर्टिलाइज़र की वाफिर दस्तियाबी है। जनाब सिन्हा ने पटना में महकमा जाती जायजा मीटिंग में अफसरान को फर्टिलाइज़र की दस्तियाबी और तकसीम के निज़ाम की मुसलसल निगरानी करने का हुक्म दिया। साथ ही उन्होंने फर्टिलाइज़र की कालाबाजारी, गैरकानूनी जमाखोरी और गैरकानूनी ट्रांसपोर्टिंग की रोकथाम के लिए जाँच मुहिम चलाने का हुक्म दिया। वजीर ज़राअत ने किसानों से दरख्वास्त की है कि वो फर्टिलाइज़र खरीदते वक्त रसीद ज़रूर हासिल करें। रियासत में मानसून की फ़ुआलियत से राजधानी पटना समेत कई अजला में देर रात से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पटना के विक्रम में तकरीबन 100 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। राजधानी पटना में भी तकरीबन 90 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात ने आज मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और सीवान जिले में इंतहाई ज़बरदस्त बारिश, जबकि मशरकी चंपारण, मगरबी चंपारण, सारण, शिवहर, सीतामढ़ी, कटिहार और पूर्णिया जिले में ज़बरदस्त बारिश का इंतबाह जारी किया है। महकमा ने कहा है कि आइंदा 7 दिनों तक रियासत में बारिश की सूरत हाल कायम रहेगी। आज आलमी यौम आबादी है। हर साल 11 जुलाई को मनाए जाने वाला यह दिन बढ़ती आबादी से जुड़े चैलेंजों और मौके के तई बेदारी बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसका मकसद आबादी से जुड़े मामलों पर तवज्जो मरकूज करना और मुसलसल तरक्की की सिमत में कोशिशों की हौसला अफजाई करना है। इस साल आलमी यौम आबादी का मौजू है नौजवानों की उम्मीदों और तवक्कात को शर्मिंदा ताबीर करना आज और मुस्तकबिल के लिए। आलमी यौम आबादी पर पूरी रियासत में कई बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। पटना हाईकोर्ट के सीनियर जज जस्टिस सुधीर सिंह पटना हाईकोर्ट के कारगुजार चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। कानून व इंसाफ की मरकजी वजारत ने इससे मुतल्लिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। गौरतलब है कि मौजूदा चीफ जस्टिस मीनाक्षी मदन राय आज सुबह दोष हो रही हैं। कल हाईकोर्ट के शताब्दी भवन में मुनक्किद तकरीब में उन्हें रस्मी तौर पर अलविदा दिया गया। बगहा की एक अदालत ने इंसानी स्मगलिंग के एक मामले में मगरबी बंगाल के दो मुलजमीन को मुरद इल्जाम ठहराया है। सजा के नुकात पर 13 जुलाई को समाप्त होगी। ये मामला महज 24 दिन पुराना है। अररिया जिले के बथनाहा थाना इलाके से पुलिस और STF की टीम ने एक चार पहिया गाड़ी से 18 किलो गांजा के साथ एक स्मगलर को गिरफ्तार किया है। किशनगंज में सरहदी हिफाजी दस्ता BSF की डायमंड जुबली के मौके पर मुनक्किद 10 रोजा स्पंदन स्पोर्ट्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट फुटबॉल मुकाबला इख्तिताम पजीर हो गया। फाइनल मुकाबले में पूर्णिया आदिवासी यूनाइटेड फुटबॉल क्लब की टीम फातह बनी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव के 483.1 मीटर अर्थात 630 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए रोजगार सूचना। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS प्रोबेशनरी ऑफिसर एवं मैनेजमेंट ट्रेनी के कुल 6,715 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है।

उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें।

उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 जुलाई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.ibps.in से प्राप्त किया जा सकता है।

रेलवे भर्ती बोर्ड टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के कुल 6,565 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार के पास बीटेक इंजीनियरिंग डिप्लोमा अथवा इंजीनियरिंग में बीएससी की डिग्री होनी चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए अधिकतम आयु 30 वर्ष और टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए अधिकतम आयु 33 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 जुलाई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.indianrailways.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग BPSSC पुलिस अवर निरीक्षक के कुल 150 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 अगस्त 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.bpssc.bihar.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। अभी आप सुन रहे थे रोजगार सूचना, आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार अंक।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। 2030 तक

0: मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्र गिरी का जलावतरण किया। कहा, भारत एक मजबूत आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। परिवहन क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार आधारित सहयोग मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 को अपनाया गया। बावी तूफान के कारण जापान और ताइवान में उड़ानें रद्द और स्कूल बंद। भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्पटन में खेला जाएगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य है। ऑकलैंड में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि आगामी 4 वर्षों में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है।
1: दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय ये दर्शाता है कि हम अपने रिश्तों के सभी क्षेत्रों में संबंध मजबूत कर रहे हैं, विशेष रूप से रक्षा तथा सुरक्षा के क्षेत्र में और राजनीतिक स्तर पर।
0: इससे पहले दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा।
2: आज हमने इंडो पैसिफिक में मैरिटाइम कोऑपरेशन के लिए एक फ्रेमवर्क पर सहमति बनाई है। बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज, लॉजिस्टिक सपोर्ट और हाइड्रोग्राफी में सहयोग से हमारा आपसी तालमेल बढ़ेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने के लिए भी सहमत हुए हैं।
2: वैश्विक मंच पर भी भारत और न्यूजीलैंड भरोसेमंद साझेदार और करीबी मित्र है। हमारा मानना है कि वर्तमान समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए यूएन सहित अन्य वैश्विक संस्थानों में रिफॉर्म आवश्यक है। आतंकवाद के विषय पर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ाने के लिए आज हमने ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का गठन किया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश खेल संबंधों की 100वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
2: 100 साल पहले मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में हॉकी टीम ने यहां आकर जो इतिहास रचा था वह हमारी खेल साझेदारी को आज भी प्रेरित कर रहा है। इस उपलक्ष्य पर हम दोनों देशों में कई स्पोर्ट्स इवेंट्स आयोजित कर रहे हैं। क्रिकेट के साथ साथ अन्य खेलों में भी सहयोग बढ़ाने के लिए हमने स्पोर्ट्स ज्वाइंट एक्शन प्लान बनाया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों का महत्वपूर्ण आधार है। ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के संबंध साझा विरासत, स्थायी मित्रता, समान लोकतांत्रिक मूल्यों और उज्ज्वल भविष्य के साझा संकल्प पर आधारित हैं।
2: हमने न्यूजीलैंड से भी बहुत कुछ सीखा है और अब भी सीख रहे हैं। न्यूजीलैंड दुनिया का वो देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग का राइट दिया था। भारत भी आज विमेन लेड डेवलपमेंट के मंत्र के साथ महिलाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि ऑकलैंड से वेलिंगटन और क्राइस्ट चर्च से क्वींसटाउन तक भारतीय समुदाय ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
2: न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के सीईओ बन सकते हैं, जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं, जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र।

0: कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, ऐसे कितने ही नाम है। यहां रहते रहते आप भी पूरे के पूरे कीवी हो गए हैं।
1: इस अवसर पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते से न्यूजीलैंड के निर्यातकों को भारत के विशाल बाजार तक पहुंच मिलेगी और न्यूजीलैंड में भारतीय कारोबार के लिए नए अवसर खुलेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट डब्ल्यू

0: हो रही है। उन्होंने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते से न्यूजीलैंड के निर्यातकों को भारत के विशाल बाजार तक पहुंच मिलेगी और न्यूजीलैंड में भारतीय कारोबार के लिए नए अवसर खुलेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्र गिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17 इकाई युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों को सुदृढ़ करके एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। श्री सिंह ने कहा कि आईएनएस महेंद्र गिरी में 75% से अधिक स्वदेशी घटकों का इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है। इससे हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत और बढ़ेगी।
1: आईएनएस महेंद्र गिरी में मल्टी फंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन है, जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकते हैं। और इसमें इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है, टॉरपीडो लॉन्चर्स है, एक इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है और क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। ये तमाम चीजें आईएनएस महेंद्र गिरी को महेंद्र गिरी पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती हैं।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 अपनाई गई है। बैठक में ब्राजील, चीन, मिश्र, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात के परिवहन मंत्रियों ने अपने विचार साझा किए। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत दो दिन की ये बैठक आज से नागपुर में शुरू हुई। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का शुभारंभ किया। श्री शाह ने युवाओं से पुस्तकालयों में जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पुस्तकें व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। श्री शाह ने कहा कि महान क्रांतिकारी और विचारक जयप्रकाश ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
2: किशोरों ने और युवाओं ने अपने रुचि के विषय छान लेने चाहिए और सुने सुनाए ज्ञान की बगैर हमारे रुचि के विषय में जिन्होंने पूरा जीवन खपा दिया है, जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया है, ऐसे लोगों ने जो अपने अनुभव, अपने विचार, अपना चिंतन और चिंतन की व्यवहारिता जो पुस्तकों में अंकित की है उसको पढ़ना चाहिए। ये बहुत बड़ा मौका है दिल्ली के युवाओं के लिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट 32,000 पुस्तक और 1 करोड़ ई बुक का एक्सेस है।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि हैदराबाद को प्रमुख हाई स्पीड रेल हब के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रस्तावित बुलेट ट्रेन कॉरिडोर हैदराबाद को पुणे, चेन्नई और बेंगलुरु से जोड़ेगा। हैदराबाद में श्री वैष्णव ने कहा कि हाई स्पीड रेल नेटवर्क से यात्रा में लगने वाले समय में कमी आएगी और दक्षिण भारत में रेल संपर्क मजबूत होगा। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। विश्व जनसंख्या दिवस पर उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय मां और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व है। उन्होंने कहा कि अभियान का नारा जब बच्चों में हो सही अंतराल, परिवार बने स्वस्थ और खुशहाल, गुणवत्तापूर्ण परिवार नियोजन सेवाओं तथा जागरूक प्रजनन संबंधी निर्णयों के महत्व को दर्शाता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जापान के दक्षिणी द्वीपों में आज तूफान बावी के टकराने की खबर है। इस दौरान द्वीपों में तेज हवाएं चली और मूसलाधार बारिश हुई। लगभग 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ तूफान बावी के

0: तड़के चीन के झेजियांग प्रांत में टकराने का अनुमान है। इस तूफान के कारण जापान के ओकिनावा प्रांत में 200 से अधिक उड़ानें रद्द की गईं। ताइवान में स्कूल और सरकारी कार्यालय भी बंद रहे। इस बीच चीन ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश ने बताया कि अल नीनो के कारण देश में मॉनसून की बारिश सामान्य से कम हुई है।
1: आज के लिए हमारा असम मेघालय के लिए रेड अलर्ट भी है, वहाँ हम 20 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल अनुमान लगा रहे हैं। ईस्ट उत्तर प्रदेश, बिहार, सब हिमालय वेस्ट बंगाल, सिक्किम, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो रेनफॉल एक्टिविटी है आने वाले 4 से 5 दिन कंटिन्यू रहेगी, और नॉर्थ पंजाब, नॉर्थ हरियाणा में आज हैवी रेनफॉल हो सकती है। अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात करें, बाई इवनिंग और लेट इवनिंग हल्का फुल्का रेनफॉल हो सकता है।
0: सिक्किम एक बार फिर देश का सबसे समृद्ध राज्य बनकर उभरा है। प्रति व्यक्ति आय के नवीनतम विश्लेषण के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 6,46,000 रुपए से अधिक रही। ये राष्ट्रीय औसत से लगभग 3 गुना है। देश की कुल आबादी में सिक्किम की हिस्सेदारी केवल 0.05% है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सिक्किम एक बार फिर भारत का सबसे समृद्ध राज्य प्रति व्यक्ति आय के आधार पर घोषित हुआ है। बिजनेस स्टैंडर्ड की कल प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार सिक्किम के एक औसत निवासी की आय बिहार के एक औसत निवासी की तुलना में लगभग 10 गुना ज्यादा है। पिछले 10 वर्षों से शीर्ष 4 स्थानों पर सिक्किम, गोवा, दिल्ली और चंडीगढ़, जबकि सबसे निचले स्थानों पर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर लगातार बने हुए है। मानुश्रोतिम शर्मा के साथ मोइनाक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज शाम 7 बजे साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में 1 विकेट पर 21 रन से आगे खेलेगा। माइया बाउचियर 17 और हीथर नाइट 1 रन बनाकर क्रीज पर हैं। इससे पहले कल भारतीय टीम ने पहली पारी में 285 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 83, कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 58 और दीप्ति शर्मा ने 57 रन बनाए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अंतिम क्वार्टर फाइनल में कल सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इससे पहले स्पेन और फ्रांस सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया। कहा, न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच साझा सफर का एक अहम हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी का जलावतरण किया। कहा, भारत एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। परिवहन क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार आधारित सहयोग मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र 2026 को अपनाया गया। और भारत तथा इंग्लैंड के बीच 5वां और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्पटन में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं, आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। चिराग फिल्म का गाना है लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें। शब्दकार मजरूर सुल्तानपुरी, संगीतकार मदन मोहन।

0: राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, चित्रगुप्त का संगीत था, लता मंगेशकर की आवाज थी और फिल्म थी भाभी।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला, सईद को पकड़ा लिया। और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
3: एक और आ गया।
4: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर सुनिए।

0: मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आप सुन रहे थे आरजू फिल्म का ये गाना। रचना थी हसरत जयपुरी की और संगीतकार थे शंकर जयकिशन।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: दिल ही तो है इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। रचना थी साहिल उद्यानवी की, संगीतकार थे रोशन। अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
3: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ, पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।

0: लता मंगेशकर की आवाज में ये था साहिर लुधियानवी का लिखा गाना, संगीतकार थे रवि, फिल्म थी आंखें। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां,
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत,
2: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अमर प्रेम फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। शब्दकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार राहुल देव बर्मन। अब आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। मन चाहे गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

रहेगी तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को एतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज, आपको याद आ गया होगा इसी शैली में मन चाहे गीत कार्यक्रम की शुरुआत किया करते थे और बहुत सारे श्रोता अपने रेडियो की आवाज सचमुच बढ़ाया करते थे क्योंकि श्रोताओं के पसंदीदा फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम है और बहुत बेसब्री से श्रोताओं ने इंतजार किया था और हाल ही में ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है। तो चलिए आज बढ़ाइए आवाज और देखिए कि आपका नाम इसमें शामिल है या नहीं, आपकी पसंद शामिल है या नहीं। प्यार का मौसम फिल्म का गाना।

प्यार का मौसम फिल्म का गाना था, किशोर कुमार की आवाज, और इस गाने की फरमाइश भेजी थी हमारे इन श्रोताओं ने। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से कुमारी वंदना मराठा, भाऊ मराठा, गणेश दादा और इनके परिवार के अन्य लोग, और स्वाति नारायण, ललिता नारायण खर्चे का भी नाम लिखा है इस पोस्ट कार्ड में। और श्रोताओं की फरमाइश आई है चांदूर बिस्वा तालुका नंदुरा जिला बुल्ढाणा महाराष्ट्र से, नारायण भाव खट से, रक्षा ताई खट से, ललिता संजना और इनके परिवार के अन्य लोग, जोधपुर राजस्थान से गिरधारी लाल विश्वकर्मा और इनका पूरा परिवार। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत, ये श्रोताओं की पसंद पर।

गाइड फिल्म का गाना था लता मंगेशकर की आवाज, शब्दकार शैलेंद्र, संगीतकार सचिन देव बर्मन। और श्रोताओं की फरमाइश पर यह गाना था गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से एम फारूक कादरी और फिरासत हुसैन, मुनव्वर लल्ला, पप्पू बिजली वाले, शेख शमा परवीन और अफसाना बेगम, महजवी शेख और इनका पूरा परिवार, दयाल बंदे बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, पद्माकर राउत, सविता राउत, अश्लीला राउत, आदित्य राउत और इनके अन्य साथी। और इसके अलावा फरमाइश आई अयोध्या स्टेट भोपाल मध्य प्रदेश मयूरी परिसर से श्रवण सिंह के नारे और इनका पूरा परिवार। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत, ये फिल्म जीने की राह।

जीने की राह फिल्म का गाना था, मोहम्मद रफी की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था और चिट्ठी मिली बरगी नगर जबलपुर से रविंद्र गद्रे, सुभाष गद्रे, दिगंबर, राजेश, शुभांगी, सृष्टि और इनके परिवार के अन्य लोगों की ओर से, दयालबंद बिलासपुर छत्तीसगढ़ से पद्माकर राउत, सविता राउत, अश्लेला और इनके अन्य साथी, और फरमाइश भेजी छत्तीसगढ़ सिमगा से रमेश कुमार यादव, माया यादव, सन्नी कोमल यादव और इनके परिवार के अन्य लोग, प्रयागराज से पिंकू और बबली की ओर से फरमाइश आएगी। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत, ये फिल्म अनामिका, किशोर कुमार की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

अनामिका फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज, शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार थे राहुल देव बर्मन और इस गाने को पसंद किया था आप सभी श्रोताओं ने। रंगारेड्डी एकलव्य नगर से वेंकटेश, श्यामला, सायोना, साई प्रकाश, सुषमा, बाबू अकेला और इनका पूरा परिवार, गांव चलाला काठियावाड से सुलेमान भाई दल, खलील दल और इनके अन्य साथी, और इसी गाने की फरमाइश आई थी कटारिया कच्छ से मानविक राघाणी, डॉक्टर निषाद, कबीर, रमजान और इनके अन्य साथी, मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा से देवी राम इनवाती, दामिनी इनवाती। चलिए सुनते हैं अगला गीत।

लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे राजा मेहदी अली खां का लिखा ये गाना। संगीत मदन मोहन का था, फिल्म थी मेरा साया और इसे पसंद किया था आप सभी श्रोताओं ने। उल्लासनगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति शामतकर और चेतन शामतकर ने इसी गीत की फरमाइश की थी। एनआर श्रीवात्री ने सागर मध्य प्रदेश से, शाहू नगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला विशाल, चेतन और इनके अन्य साथी, और नरोत्तम गौड़ और इनके साथियों ने फरमाइश भेजी थी लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से। चलिए अब सुने ये गाना।

मेरे हम सफर फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। रचना थी आनंद बख्शी की, संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी, और इस गाने को पसंद किया था आप सभी श्रोताओं ने। गणेश पेठ पाथरडी से अंबादास शिंदे, संगीता शिंदे, अमोल अमृत, सुवर्णा शिंदे और इनके परिजन, जगाधारी हरियाणा से विजय मोहन, मीनाक्षी और इनके परिवार के अन्य लोग, लुहेड़ी महोबा उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, अरविंद, राघवेंद्र, रिया, रेणु, दिव्यांशी, रोनिका और इनके परिवार के अन्य लोग। अब आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

नाट्य तरंग। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं हरिराम आचार्य का लिखा नाटक रहीम की ढाणी। इसका निर्देशन किया महेंद्र मोदी ने। तो आइए सुनते हैं नाटक रहीम की ढाणी।

0: वाव, जैसलमेर हमको हर एंगल से फैसिनेट करता है मिस्टर ओझा।
1: अच्छा,
0: और हम क्या, दुनिया का कोई भी टूरिस्ट इधर से मुग्ध हुए बिना नहीं जा सकता।
1: क्या क्या आपने क्या बोला मिस चारुमित्रा, मुग्ध?
0: यस मिस्टर ओझा, आई मीन इट।
1: रियली? मगर ऐसी क्या अनोखी बात है यहाँ जिसके कारण आप जैसे कला और इतिहास के प्रेमी हर वर्ष यहाँ खींचे चले आते हैं?
0: ओ मिस्टर ओझा, दिस डेजर्ट, जे मीलों तक फैला रेगिस्तान, जैसे सोने की बालुका का सागर लहराता हो, कड़ी धूप में तप करते शमी के पेड़, लुका छिपी खेलते घोड़ावर पक्षी, गोर बन से सजे ऊंट। मिस्टर ओझा, इट इज नॉट लेस देन ए वंडरलैंड फॉर मी।
1: आप हरे भरे बंगाल से आती हैं, इसलिए ये सूखा रंगहीन लैंडस्केप आपके लिए नई बात हो सकती है।
0: नो मिस्टर ओझा, ये तो एक ब्रॉड पैनोरामा है। इस बैकग्राउंड पर कलरफुल परिधान, आर्ट, कल्चर और इतिहास के जो रंग उभरते हैं, लोक संगीत के जो स्वर गूंजते हैं, वो सब कहने का नहीं, फील करने का चीज है।
1: एक बात कहूं मिस मित्रा?
0: ओह यस।
1: आप एकदम पागल हैं।
0: रियली? इज इट अ कॉम्प्लीमेंट?
1: एक खूबसूरत चीज को अप्रिशिएट करने के लिए एक खूबसूरत नजर भी होनी चाहिए, और वो नजर आपके पास है मिस मित्रा।
0: थैंक यू मिस्टर ओझा, यू आर सो नाइस टू मी।
1: आपने यहाँ का खूबसूरत सोनार किला देखा, मूमल महेंद्र की प्रेम गाथा सुनी, मांड धरती का मीठा संगीत भी सुना, अब नया तो कुछ बचा नहीं यहाँ, किधर ले चलूं?
0: हमको क्या मालूम, गाइड तुम है मिस्टर ओझा। नया कुछ नहीं बचा तो तुम हमको जंगल में किधर ले जा रहा है? क्या खाली पेट्रोल जलाने में तुमको मजा आता है?
1: नहीं मिस मित्रा, इस बार मैं आपको जैसलमेर के इतिहास का एक अछूता पृष्ठ दिखाना चाहता हूँ, देखना चाहेंगी?
0: ओह दैट्स लाइक ए गुड गाइड, लेकिन इतिहास का अछूता पृष्ठ और इस डेजर्ट में?
1: हाँ, यह पृष्ठ स्वाधीनता संग्राम के दिनों में सन 1940 के आसपास यहाँ एक ढाणी में लिखा गया, वो भी स्याही से नहीं, शरीर के रक्त से।
0: वहाँ जरूर ले चलो मिस्टर ओझा, वो जगह क्या बोला, ढाणी?
1: ढाणी यहाँ कुएं या ताल तलैया के आसपास छोटी सी बस्ती को कहते हैं।
0: आई सी।
1: लो आ गई हमारी मंजिल।

0: ये है रहीम की ठाणी। बहुत कम लोगों को जानकारी है इसकी। आइए।
1: रहीम की ढाणी, हम भी पहली बार नाम सुना। ये रहीम कौन है?
0: है नहीं, था। ये सामने है उसका स्मारक, रहीम का मजार, एक गुमनाम शहीद की समाधि, जिसने आजादी की लड़ाई में फिरंगी हुकूमत से टक्कर ली और अपने ही तरीके से देशभक्ति की एक अनूठी मिसाल कायम की। रहीम का सिर्फ एक मिशन था, अंग्रेज सरकार का खजाना या अंग्रेज परस्तों की दौलत लूटना और उसे गरीबों में बांट देना। ब्रिटिश हुकूमत के रिकॉर्ड में रहीम खां महज एक डकैत था, चलती ट्रेन में डाके डालने वाला डाकू, जेल तोड़कर भागने वाला एक खतरनाक मुजरिम।
2: उसके सर पर 1,00,000 का इनाम, ब्रिटिश हुकूमत का ऐलान। पढ़िए पढ़िए पढ़िए।

0: कदमों में रहीम खां का सलाम।
1: खुदा खुश रखे। आ रहीमा, तुझे तो फिरंगियों ने कैद खाने में डाल रखा था ना।
0: हाँ पीर बाबा।
1: तो क्या तू जेल तोड़कर निकल आया?
0: बड़े कमजोर सींखचे लगा रखे हैं फिरंगी ने, हाथ लगाते ही टूट गए और मैं बाहर निकल आया।
1: पगले, तू जानता भी है कुछ? जवानी के जोश में तू किसे ललकार रहा है? उस फिरंगी सरकार को जिसका सूरज कहते हैं कभी डूबता नहीं।
0: झूठ है, अफवाह है पीर बाबा। ये सूरज मगरिब से उगा है, इसलिए इसका मशरिक में डूबना तय है।
1: कैसे?
0: क्योंकि ये उजाला देने वाला नहीं, अंधेरा फैलाने वाला सूरज है। जुल्म का अंधेरा, गुलामी का अंधेरा, नाइंसाफी का अंधेरा।
1: कुछ अपने गरेबान में भी झांक रही माँ, डकैती का धंधा करता है और इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलता है।
0: ऐसा मत कहिए पीर बाबा, मैं डकैत नहीं हूँ, अदना सा खादिम हूँ आपका। अच्छे बुरे की पहचान आपसे सीखी है। इन काले दिल वाले गोरों ने जोर जुल्म से हमारे मुल्क की जो दौलत अपनी अय्याशी के लिए बटोरी है, उसे छीन कर अपने भाइयों में वापस तकसीम करने का फर्ज जान पर खेल कर भी अदा करता हूँ।
1: बेटे रही माँ, इस काम में खून खराबा भी तो होता है, नेक काम के लिए भला बंदूक क्यों?
0: मैं तो एक हक परस्त सिपाही का मेहनत कश बेटा था पीर बाबा। बंदूक उठाने पर मुझे गोरे अफसर ने मजबूर कर दिया।
1: क्यों भला?
0: बाबा, आपने ये सवाल करके मेरा जख्म कुरेद दिया। मेरे वालिद ने एक सिपाही की हैसियत से सारी उम्र इस नामुराद सरकार की खिदमत की, मगर जब वो बूढ़ा और बीमार होकर खटिया पर दम तोड़ रहा था, तब उसी के बड़े फिरंगी साहब ने दवा के लिए चंद पैसों की मदद मांगने पर उसे गोली से उड़ा दिया।
1: अल्लाह, ऐसी दलील हरकत, तूने जान नहीं लेनी उसकी?
0: होता तो उसे जिंदा नहीं छोड़ता पीर बाबा।
1: तो तू कहां था?
0: मैं वालिद की दवा के लिए एक साहूकार के पास बीवी के कड़े बेचने गया था। लौटा तब तक सब कुछ खत्म हो गया था, वालिद का कत्ल हो गया था और मेरी बीवी ने खुदकशी कर ली थी।
1: या मेरे खुदा, ये मैं क्या सुन रहा हूं?
0: उसी दिन मैंने वालिद की बंदूक उठाकर कसम खाई कि इन फिरंगी लुटेरों को अपने जीते जी चैन से नहीं बैठने दूंगा। बंदूक का पहला घोड़ा मैंने जलील अफसर के सीने पर दबाया और ये रास्ता पकड़ लिया।
1: मगर इस रास्ते में चैन कहां है बेटे? ये रास्ता तो जेल और फांसी के अलावा और कहीं नहीं ले जाता।
0: जेल से तो निकल ही आया हूं और अब तय कर लिया है कि जीते जी दुश्मन के हाथ नहीं आना है, चाहे वो मेरे सर पर कितने ही इनामों का ऐलान कर दे।
1: तो फिर अब करेगा क्या? हुकूमत के हाथ बड़े लंबे होते हैं बेटे, तू छुपेगा कहां?
0: अभी तो आपके पनाह में हूं, जहां का हुक्म आप देंगे वहीं चला जाऊंगा।
1: और तेरे साथी?
0: वो भी मेरे साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे।
1: देख रही मां, यहाँ इस ठिकाने पर तो हर किस्म का आदमी आता है।
0: हाँ बाबा।
1: तेरा यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। तुम लोग मांगणियारों का भेष बनाओ और मेरा पैगाम लेकर जैसलमेर महारावल के पास चले जाओ। उनकी पनाह पुख्ता होगी और तुम वहां एकदम महफूज रहोगे।
0: जो हुकुम पीर बाबा।
1: अल्लाह।
0: बाबा
1: बोल बेटे।
0: इतना कर्म किया है तो चलते चलते एक और कर्म का वादा दे दो।
1: हाँ हाँ बोल।
0: इस हकीर बंदे का जब भी दम टूटे, आपके कदमों में टूटे, बस यही मेरा अरमान है।
1: जिंदगी और मौत तो परवरदिगार के हाथ है रहीमा, जो उसे मंजूर होगा वही होगा। जा अब आराम कर, कल सुबह कूच कर ले।

0: घने खम्बान दाता,
1: रियासत के क्या समाचार है दीवान जी?
0: सब अमन चैन है हुजूर, बस एक मामला आपकी सेवा में दरपेश करने की इजाजत चाहता हूँ।
1: पेश करो।
0: कल रात अमर सागर के रस्ते में 5 अनजान लोग बांगड़ियारों के भेष में पड़ाव डालकर गा बजा रहे थे।
1: कोई चोर डाकू तो नहीं है? कौन है उनका मुखिया?
0: वो अपना नाम रहीमा बताता है अंदाता, पीर पगारों की चिट्ठी लेकर आया है और हुजूर के चरणों में हाजिर होकर कोई पैगाम देना चाहता है।
1: कहाँ है वो लोग?
0: पुलिस की हिरासत में अंदाता।
1: और वो चिट्ठी?
0: ये है वो चिट्ठी अंदाता।
2: महारावल जैसलमेर, आप पर अल्लाह ताला की नजर करम हो, पीर पगारों की दुआ कबूल फरमाएं। बाज़ाब्ता अर्ज की जाती है कि चिट्ठी लाने वाला शख्स हमारा वफादार खादिम है, इस नेक बंदे को अपनी पनाह में लेने का करम फरमाएं। ये आपकी जी जान से खिदमत करेगा, बाकी पैगाम इसके मुंह से रूबरू सुनकर खातिरी कर लें। बकलम पीर पगारो।
1: रहीमा को बाइज्जत बादल विलास में हमारे रूबरू पेश किया जाए।
0: जो हुक्म अंदाता।
3: महारावल का इकबाल बुलंद हो, नाचीज की जोहार कबूल फरमाए अंदाता।
1: आओ रहीमा, पीर पगारों की चिट्ठी हमें मिल गई है।
3: हुजूर की मेहरबानी है।
1: दीवान जी कुछ सवाल पूछेंगे तुमसे, ठीक से जवाब देना।
3: जो हुक्म अंदाता।
4: हमारे पास जो खबरें हैं उनके मुताबिक अमरकोट का बाशिंदा रहीम खां एक खतरनाक डकैत है जो ब्रिटिश हुकूमत के खजाने लूटता फिरता है।
3: खबर सही है।
4: वो रहीम खां कंपनी राज का एक सजा याफ्ता मुजरिम और फरार कैदी है।
3: एकदम सच है।
4: अंग्रेज सरकार ने उसके सिर के लिए 1,00,000 रुपए के इनाम की डोंडी पिटवा रखी है।
3: आप बजा फरमाते।
4: क्या तुम वही रहीम खां हो?
3: खुदा झूठ न बुलवाए, ये खादिम वही रहीमा है।
1: इतने गुनाहों का बोझ लेकर हमारी रियासत में किस लिए आए हो?
3: महारावल की छत्र छाया में पनाह लेने अंदाता।
1: हमारा काम क्या अब डकैत और मुजरिमों को शरण देने का रह गया है?
3: गुस्ताखी माफ हो अंदाता, रहीमा इंसानियत की वतन परस्ती की राह पर चलने वाला एक नाचीज बंदा है। डकैत और मुजरिम का नाम तो उसे फिरंगियों ने दिया है, जो 7 समंदर पार से यहाँ आकर हमारे मुल्क की दौलत और इज्जत पर खुलेआम डाका डाल रहे हैं। रहीमा तो सिर्फ उनसे अपने मुल्क की दौलत वापस चीन लाने का काम अंजाम देता है।
1: तुम्हारी जबान से बगावत की बू आती है।
3: वतन परस्ती अगर बगावत है अंदाता, तो मैं फख्र के साथ अपना बागी होना कबूल करता हूँ।
4: किसी रजवाड़े में एक बागी को शरण देने का मतलब है ब्रिटिश राज से सीधी टक्कर लेना।
3: दीवान जी, मैं अनपढ़ आदमी हूं, सियासत नहीं समझता, मुल्क की खिदमत करना चाहता हूं और इन गोरों को यहां से बाहर खदेड़ने वाली हर जंग में हिस्सा लेना चाहता हूं। इसलिए अपने पीर बाबा के हुक्म से और महारावल की अजमत के एतबार से यहां आया हूं।
5: पूरी रियासत इस वक्त जबरदस्त अकाल की चपेट में है, खजाना तंग है, इसलिए फिलहाल हम तुम्हें महावार।
3: हमें कुछ नहीं चाहिए अंदाता, आपने जो भरोसा रखकर हमें पनाह दी है उसके बदले में मेरी खाल की जूती भी बनाकर आपको पहना सकूं तो कम है। और दीवान जी, रहीमा के जिंदा रहते अगर रियासत का खजाना तंग रह गया तो फिर रहीमा के वजूद का कोई मतलब नहीं।
1: क्या फिर कोई टाका डालोगे?
3: आप फिक्र न करें अंदाता, रियासत के खजाने को मालामाल कर देना मेरा पहला फर्ज होगा। डाका सिर्फ फिरंगी तिजोरियों पर पड़ेगा, वो भी सरहद के पार, ये मेरा अहद है।
1: तो फिर ठीक है दीवान जी।
0: हुकुम।
1: रहीम खां को अपनी टोली के साथ खुफिया महकमे में खास औहदों पर लगा दो।
0: जो हुकुम अंदाता।
1: बस इसका खुफिया नाम होगा राम सिंह।
3: घनी घनी खम्मान दाता, इस मेहरबानी के बदले ये रहीमा आखिरी सांस तक आपकी खिदमत करेगा और वतन की मिट्टी पर अपने खून की आखिरी बूंद तक कुर्बान कर देगा।

0: बैंक डकैती, ब्रिटिश बैंक की तिजोरी लूटी, रैन का 50 लाख की रकम लूट कर फरार, हर जगह कड़ी नाकाबंदी। पढ़िए आज की ताजा खबर, कराची एक्सप्रेस में भारी डकैती।
1: साथियों, खुदा के फजल और आप लोगों की बहादुरी से हमें फिर एक बड़ी कामयाबी मिली। आज बड़े दिनों बाद अमल में स्वाद आएगा, क्यों करीमा?
2: रहीमा, ये वक्त राग रंग का नहीं है। छापा मार को वारदात के बाद वापस अपने गुप्त ठिकाने और गुप्त बहस में लौट जाना चाहिए।
1: तो फिर बोलो, ब्रिटिश राज
3: मुर्दाबाद,
1: वतन के दुश्मन
3: मुर्दाबाद,
1: इनकलाब
3: जिंदाबाद,
1: हिंदुस्तान
3: जिंदाबाद।
1: अब चलो, ऊंटों के प्लांट कस लो और कारतूस पेटी कमर में बांध कर बंदूकें संभाल लो, हम जैसलमेर चलेंगे।

0: ऑल इंडिया रेडियो है। सिंध प्रांत से समाचार मिला है कि अमरकोट का खतरनाक डकैत और फरार कैदी रहीम खां चलती ट्रेन में 50 लाख रुपयों की डकैती के बाद रात के अंधेरे में अपने साथियों के साथ फरार होने में कामयाब हो गया। सरकार को संदेह है कि वो सिंध की सरहद को पार करके जैसलमेर के रेगिस्तान की तरफ भागा है। उसकी तलाश और गिरफ्तारी के लिए सरकार ने सिंध प्रांत के आईजी पुलिस मिस्टर हटसन की अगुवाई में ऑपरेशन सर्च का ऐलान किया है।
1: Good afternoon, Your Majesty, His Highness of Jaisalmer.
2: आइए आइए, Welcome, Mr. Harrison. फरमाइए क्या खिदमत की जाए?
1: As you know, Your Highness, हम इधर on duty आया। हमारा मिशन है Operation Search. इस ऑपरेशन में हम आपका मदद मांगता।
2: बड़े शौक से Mr. Harrison, आपकी मदद करके हमको खुशी होगी। आप इस ऑपरेशन की डिटेल्स बताएं तो बेहतर हो।
1: Oh yes, Your Highness. सिंध सूबे का रहीम खान एक ट्रेन रॉबरी के बाद फरार हो गया है। गवर्नमेंट को डाउट ही नहीं, पूरा यकीन है कि द ब्लडी एब्सकाउंडर वो भगोरा आपकी रियासत में कहीं छुपा है। इसलिए ये ऑपरेशन सर्च हम इधर से स्टार्ट करना मानता।
2: जरूर मिस्टर हरसन, इस ऑपरेशन में हम आपकी पूरी मदद करेंगे।
1: राम सिंह
3: हुकुम अंदाता।
2: हरसन साहब, ये राम सिंह हमारे खुफिया महकमे का बहुत काबिल अफसर है। रियासत की चप्पे चप्पे की बहुत अच्छी जानकारी है इसे। इसे अपने स्टाफ के साथ हम आपकी मदद के लिए बाकायदा तैनात करते हैं।
1: That's very good. Thank you, Your Highness.
4: रहीम खां का सलाम दीवान जी।
5: आओ रहीमा, कैसा रहा ऑपरेशन?
4: ऑपरेशन तो गोरी सरकार का था दीवान जी, पूरा करवा दिया। सच कहता हूं दीवान जी, अंधाता का भी जवाब नहीं है। क्या मीठी और पुख्ता चाल खेली है, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। बस अब एक वारदात सक्कर सिंध में और करना चाहता हूं दीवान जी।
5: कैसी वारदात?
4: वहां अंग्रेजों का एक पिट्ठू है, सोने चांदी में हीरे जवाहरात में लूटता है। गरीबों से लूट लूट कर अरबों की पूंजी कमाई है उसने। बस एक झपट्टा उस पर जरूर मारना है।
5: अब थोड़े दिन आराम ही कर ले रहीमा।
4: जब तक ये गोरे लुटेरे यहाँ हुकूमत कर रहे हैं तब तक हमारे लिए आराम हराम है।
5: सिंध में चौकसी बहुत कड़ी हो गई होगी, तू क्यों अपनी जान जोखिम में डालता है?
4: यहां मौत का डर किसको है? जोखिम से खेलना ही तो अपना शौक रहा है दीवान जी। आज रात हमारी टोली निकल जाएगी, आप तो परसों तक लूट का माल जाब्ते में दाखिल खजाना करने की तैयारी रखवाना।
5: जैसी तेरी मर्जी रहीमा।
4: अच्छा,

0: अलविदा।
1: अलविदा। ईश्वर तुझे सफलता दे।
2: ये ऑल इंडिया रेडियो है। सिंध सूबे से एक भारी डकैती के समाचार मिले हैं। रहीम खान ने कल रात सखर के एक नामी सेठ की कोठी पर संगीन डाका डाला। वारदात की खबर मिलते ही पुलिस ने कोठी को घेर लिया और गोलीबारी की, जिसमें कई सिपाही मारे गए। रहीम खान को भी गोलियां लगी, लेकिन वो घायल हालत में भी अपने साथियों की मदद से पुलिस को चकमा दे गया। लूट का ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है और पूरे सिंध में रेड अलर्ट कर दिया गया है।

0: चाहिए पानी। कैसी है तबीयत?
1: मैं ठीक हूं करीमा। माल कहाँ?
0: वो ठीक ठिकाने पहुंच चुका होगा। अब्दुल जुम्मन और पंडित अलग अलग रास्तों से माल लेकर जैसलमेर गए हैं।
1: अब कोई फिक्र नहीं। जरा ये पट्टा खोल दे।
0: तुम्हारी हालत ठीक नहीं है रही भाई, सारे कपड़े खून में तर है।
1: जिस मिट्टी से ये जिस्म बना है, ये खून उसी की अमानत है। बहने दे इसे।
0: जिद मत करो रही भाई, तुम्हें अभी बहुत जीना है। वतन की खातिर, हमारी खातिर तुम्हें फौरन अस्पताल पहुंचाना बहुत जरूरी है।
1: कौन सा अस्पताल?
0: जैसलमेर लिए चलता हूं।
1: अरे पगले, जिसने मुझे जीते जी पनाह दी, उदा दिया, उस अंधाता को मरने के बाद मुसीबत में डाल दूं? नहीं, जो अब तक राज रहा है उसे राज ही रहने दे करीमा।
0: मेरी बात मानो रही भाई। चलो मेरे साथ।
1: नहीं, अब ये ढाणी छोड़कर कहीं नहीं जाना। मेरा जिस्म रेगिस्तान की इस मिट्टी में मिल जाने दे करीमा।
0: ऐसा मत बोलो रही भाई, ऐसा मत बोलो।
1: रो मत करीमा। इधर देख पगले, मैं कितना खुश हूं। जैसी बन सकी वतन की खिदमत की, ना कि ऐश के लिए नहीं, फर्ज के लिए डाले। जिसने पनाह दी उसका कुछ कर्ज उतारा। आगे ये काम तुम लोग करना, फिरंगी रात से टक्कर लेते रहना। पानी

0: कौन सी तमन्ना रही भाई, बोलो बोलो तो।
1: पीर बाबा का दीदार, उनकी कदम बोसी।
0: चलो रही भाई, मैं ले चलता हूँ वहाँ।
2: अल्लाह अल्लाह
0: या खुदा, तेरी खुदाई

0: पीर बाबा आप यहां?
1: पीर बाबा आपने जहमत उठाई या मेरे मौला, इस गुनहगार पर इतना करम।
2: गुनहगार नहीं है रहीमान, तूने वतन परस्ती के हक में एक वफादार सिपाही की तरह अपना खून बहाया है। अब वो दिन दूर नहीं जब इस मुल्क से ये फिरंगी राज खत्म होगा, आजादी का नया सूरज उगेगा।
1: आमीन। अलविदा बाबा।
2: अल्लाह रो नहीं करीमा, रहीम मरा नहीं, ये उसकी कुर्बानी है, शहादत है उसकी। शहीद को आंसुओं से विदा नहीं करते बेटे, जिस सरजमीन पर उसका खून गिरा है उसे वहीं बाइज्जत दफन करो। उसका मजार उसकी वतन परस्ती की याद दिलाएगा। आज से ये ढाणी रहीम की ढाणी कहलाएगी। ये रेत के टीले उसकी कुर्बानी के सबूत बनेंगे और ये हवाएं उसकी शोहरत के नगमे दोहराएगी।
3: ये है जैसलमेर के इतिहास का वो गुमनाम पन्ना मिस मित्रा, रहीम की ढाणी, रहीम खां का ये मजार।
4: बड़ा पवित्र है ये स्मारक मिस्टर ओझा, श्रद्धा के भाव से हम इसको नमन करता है। इसका दर्शन कराने के लिए आपको धन्यवाद कैसे दिया जाए समझ में नहीं आता। आई रियली थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।
3: बस बस मिस मित्रा, एक गाइड के नाते ये मेरा फर्ज था। आइए चलें।

अभी आप सुन रहे थे हरिराम आचार्य का लिखा ये नाटक रहीम की ढानी। इसका निर्देशन किया महेंद्र मोदी ने और आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: नमस्कार दोस्तों, बॉम्बे टॉकीज में आज आप सुनने वाले हैं जानी मानी राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर सीमा कपूर से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। आज प्रस्तुत है इस बातचीत का पहला भाग।
2: बॉम्बे टॉकीज में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है जानी मानी लेखिका, निर्माता और फिल्म निर्देशक सीमा कपूर को। सीमा जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: शुक्रिया, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि विविध भारती पे एक बार फिर से मैं आई हूँ और आप लोगों से रूबरू हूँ।
2: जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आपका जन्म रंगमंच और कला से जुड़े परिवार में हुआ है। आपके पिता रंगमंच से जुड़े हुए थे और माँ उर्दू कवित्री, शायरा और शास्त्रीय संगीत की गायिका हैं। तो आपका बचपन कहाँ और कैसे बीता?
3: देखिए, हमारा बचपन जो है बहुत ही रंग बिरंगा रहा है।
2: अच्छा।
3: हम सब बहन भाइयों का। दरअसल

0: मेरे जो दादाजी थे वो आर्मी में कर्नल थे, उस समय तो पार्टीशन भी नहीं हुआ था, अंग्रेजों के जमाना था उस समय। और जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं ददिहाल की साइड के, सब बड़े बड़े ओहदों पे हैं आर्मी में, या बड़े बड़े वकील।
1: जी
0: मेरे पिताजी लाहौर में पढ़े, श्री मदन लाल कपूर, और मेयो कॉलेज जो बहुत ही उस समय और आज भी बहुत रेप्यूटेड कॉलेज है, वहां पढ़े वो। उन्हें पता नहीं क्या सूझा कि वो दिल्ली आ गए, और उन्होंने 1930 के करीब एक नाटक कंपनी, उस समय हिंदुस्तान में दो चार नाटक कंपनियां चला करती थी, पारसी थिएटर उन्हें बोला जाता था, वो उस समय सोहराब मोदी साहब का था, पृथ्वीराज जी का था, और बाबूजी का, मेरे पिताजी का। तो उन्होंने वो रंगमंच ज्वाइन किया और उन्होंने एक नाटक कंपनी बनाई जिसमें 300 के करीब लोग थे, और प्रोपराइटर मालिक बाबूजी थे मेरे पिताजी। वो कंपनी चलाना अपने आप में एक रंगमंच की सेवा जो है, लेकिन उस समय क्या था कि समाज में, खासतौर से नॉर्थ इंडिया में, नाटक को अच्छा नहीं समझा जाता था, नाचना गाना।
1: जी
0: तो मेरा जो ननिहाल था वो, चूंकि बंगाली परिवार था, मेरे नाना नानी बंगाली थे, संगीत उन लोगों का तो रचा बसा है और उनका तो गाना सीखना बहुत जरूरी है। तो माँ मेरी क्लासिकल किराना घराने से उन्होंने गाना सीखा था, और किसी तरह संयोग से बाबूजी और माता जी की शादी हो गई। माँ मेरी बहुत छोटी थी जब शादी, उस जमाने में
1: जी
0: 13-14 साल की उम्र में हो जाया करती थी। तो इस तरह से बाबूजी को उनके परिवार ने डिसोन कर दिया, निकाल दिया एक तरह से, क्योंकि उन्होंने ऐसा प्रोफेशन चुना था, और माँ ने लेकिन मेरे बाबूजी का साथ दिया। तो इस तरह से नाटक कंपनी में हमारी आंख खुली, और आप ये सोच लीजिए कि फिर वो हमारे रंगमंच जो है, नाटक कला हर विधा की, क्योंकि माताजी और पिताजी दोनों ही लिटरेचर पोएट्री इसमें दखल रखते थे। बाद में हमें मालूम पड़ा कि हमने बचपन में इंटरनेशनल साहित्य पढ़ा है, इंडियन साहित्य तो पढ़ा ही, भारतीय साहित्य तो सारा पढ़ा, चाहे वो शरद चंद हो, बंकिम चंद हो, रविन्द्रनाथ टैगोर हो,
1: जी
0: प्रेमचंद हो, जितने भी हैं, रेणु हो, और हमने बाहर का भी जो साहित्य है, टॉलस्टॉय, दोस्तोवस्की, और ये सारी चीजें, बाबूजी अंग्रेजी वाले थे, मम्मी उर्दू और हिंदी वाली थी, तो हमें विरासत में ये कला और संगीत, रंगमंच, वो हमारे खून में है। और सच पूछे तो अगर हमें कहा जाए कि आप कुछ ये नहीं करना है, जो कला क्षेत्र से आप हट जाए, तो शायद हम लोग भूखे मर जाए, हमें कुछ नहीं आता और।
1: जी, उसी में रचे बसे हैं और उसी में पूरा
0: जी
1: जीवन हमने लगाया है।
0: जी
1: तो सीमा जी, हम आपसे और भी बात करेंगे आपकी जिंदगी के पहलुओं पर। कोई गीत आपकी पसंद का पहले सुन लें।
0: जी बिल्कुल। संगीत तो आप जानती हैं हमारे रक्त में मिला हुआ है।
1: बिल्कुल
0: फिल्म है आरती,
1: जी
0: रोशन साहब का म्यूजिक है, और उसमें गाना था आपने याद दिलाया तो
1: तो
0: मुझे
1: मुझे
0: याद
1: याद
0: आया।
1: आया। क्या बात है, क्या बात है। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये
0: जी।

0: सीमा जी, निर्देशक और नाटककार रंजीत कपूर की बात अगर हम करें, अनु कपूर साहब की बात करें और निखिल कपूर की आप बहन हैं और जाने माने अभिनेता ओमपुरी साहब से आपने विवाह किया, इन सब चीजों को, इन सब बातों को आप कैसे देखती हैं?
1: छोटा सा प्रश्न आपने पूछा है लेकिन वो पूरा जीवन उसमें समेटा हुआ है मेरा। मेरे भाई जो है तीनों अपनी अपनी विधा में लेकिन कला क्षेत्र में ही है। सबसे छोटा जो ब्रदर है वो बहुत अच्छा शायर है, उसने कई फिल्मों में गाने लिखे हैं। मेरी हर सीरियल का टाइटल सॉन्ग वो ही लिखता है और हर सीरियल और फिल्म का टाइटल वो ही रखता है। और अनु भाई एक्टर हैं, आप ही जानते ही हैं। रंजीत भाई जो हैं वो निर्देशक हैं, राइटर हैं। तो सब अपनी अपनी जगह बादशाह हैं अपने अपने फील्ड में
0: जी।
1: और जब आप ऐसे लोगों से घिरे होते हैं तो आप एनरिच होते चले जाते हैं। अच्छा, हम बहन भाइयों का करियर तकरीबन एक साथ ही शुरू हुआ, ऐसा नहीं था कि कोई आगे है कोई पीछे है, ऐसे सब साथ ही चल रहे थे, साथ ही संघर्ष कर रहे थे और अपने अपने क्षेत्र में, क्योंकि कोई भी क्षेत्र किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन उसके बावजूद कला से जुड़ा हुआ है।
0: जी जी।
1: तो इसलिए हम लोग अपने अपने रास्तों पे, जो कंटकीर्ण रास्ते थे उन पे चलते हुए हम लोग यहाँ तक पहुँचे।
0: तो कभी भाई बहनों में कोई कंपटीशन रहता होगा?
1: कंपटीशन शब्द मैं नहीं इस्तेमाल करूंगी, एक अंग्रेजी में शब्द है जिसे हिंदी में प्रतिस्पर्धा बोलते हैं। ईर्ष्या के बिना आप एनवी करते हैं, आप किसी से ये कहते हैं कि आपको इतना ज्यादा क्यों आता है, है ना, मन में ये सवाल होता है। और मुझे हमेशा मेरे जो जितने भी मैं अपने दुश्मन मानती हूँ ना वो बहुत ऊंचे, क्योंकि कहते हैं ना जिंदगी में दुश्मन भी बनाओ तो बहुत बड़ा बनाओ वरना आपको उसके बराबर होना पड़ता है। तो मेरा कंपटीशन हमेशा दुनिया के महान डायरेक्टर से है, दुनिया के महान राइटर से। कंपटीशन से मतलब प्रेरणा।
0: जी जी।
1: आपको वहां जाना है, इतनी ऊंचाई पे जाना है। तो भाइयों से भी वही रहा है कि इनको इतना ज्यादा आ रहा है मुझे क्यों नहीं। तो उसके बाद ना आपको एक फोर्स मिलती है कि आप और ज्यादा पढ़ें।
0: बिल्कुल, एक हेल्दी कंपटीशन रहा हमेशा।
1: जी
0: जी। तो ओमपुरी साहब भी आपकी जिंदगी में आए, आपने उनसे विवाह किया, किन शब्दों में आप अपनी बात रखना चाहेंगी?
1: देखिए, 11 साल हमारा अफेयर चला और तब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ रही थी और तब पुरी साहब स्ट्रगल कर रहे थे। और उसके बाद जब 11 साल के बाद हमने डिसाइड किया शादी करना, तब उनको थोड़ा थोड़ा काम मिलना शुरू हुआ था। तो शादी हुई। पुरी साहब एक ऐसे कलाकार हैं जो, अगर मैं अपने लोगों की तारीफ अपने मुंह से करना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है,

0: दुनिया के इन्हें गिने जो कलाकार होते हैं, मैं पुरी साहब को उनमें रखती हूँ। इसलिए नहीं कि मेरा उनसे प्रेम है, मेरी शादी हुई थी या जो भी, लेकिन ना बिल्कुल निष्पक्ष रूप से मैं देखती हूँ। क्योंकि देखिए, जिस कलाकार की नकल की जा सके वो स्टार हो सकता है, वो कलाकार नहीं हो सकता।
1: जी,
0: पुरी साहब की आप डायलॉग डिलीवरी की, उनके आप किसी भी चीज की नकल नहीं कर सकते, है ना। तो वो हर कैरेक्टर में ढल जाते थे। और मैंने उनका एक जो बहुत ही सशक्त पक्ष देखा है, वो ये देखा है कि एक छोटा सा, मैं एक सीरियल बना रही थी तो उन्होंने कहा, अरे ये रोल मैं करता हूँ, खुद कह के। मैंने कहा, पुरी साहब आप इतनी बड़ी बड़ी फिल्में करते हैं, इतने महान मतलब नाम है आपका इंटरनेशनल लेवल पे, ये आप क्यों? नहीं नहीं सीमा, छुट्टी है, मैं करूंगा। मैं, वो बैठ नहीं सकते थे।
1: हाँ।
0: उनकी प्रॉब्लम थी कि उनको काम
1: फ्री नहीं बैठ।
0: हाँ, फ्री नहीं बैठ। तो मैं ऐसे काम करती गई तो वो बैठे हुए नोट्स बना रहे थे। मैंने कहा, क्या कौन सी स्क्रिप्ट है, कौन से? बोले, नहीं तुम्हारा वो करना। मैंने कहा, इतनी छोटी सी सीरियल का एक छोटे से उसमें भी आप नोट्स बना रहे हैं, तो आप देखिए डेडिकेशन काम के प्रति, कि इतना आपने जिंदगी हो गई है, आपके 40 साल हो गए हैं काम को करते हुए, जिसमें आपने इंटरनेशनल अवार्ड ले लिए हैं, नेशनल अवार्ड ले लिए हैं, इसके बावजूद छोटा सा काम है लेकिन उसके नोट्स बना रहे हैं, उसको अंडरलाइन कर रहे हैं और उस पर आप डिस्कस कर रहे हैं कि सीमा मैं ऐसे करूं, मैं ये पहन लूं या वो कर लूं, इसको, इस कैरेक्टर को ऐसे बना लूं। तो आपको ये सीखने को मिलता है, जैसे लता जी वगैरह को भी मैंने देखा है कि कोई भी काम जब वो करते हैं तो वो अपने आप को तिफले मकतब समझते हैं कि मैं अभी पहली क्लास में हूं, और यही उनके जो विनम्रता है उनको महान बनाती है।
1: जी,
0: और वही पूरी साहब ने था
1: जी।

0: ओमपुरी साहब के अभिनय के बारे में तो हम आपसे क्या कहें, मतलब उनकी आवाज, उनकी अभिनय प्रतिभा, उनका चेहरा हर बात पर मतलब संवाद बोलता था, उनका चेहरा, उनकी आंखें, जो उनके जज्बात, फीलिंग्स, वो पर्दे पर साकार हो जाती थी। आपको उनकी कौन सी फिल्में पसंद थी?
1: मुझे परफॉर्मेंस वाइज तो देखिए वो सब में बहुत न्याय करते थे अपने किरदार के साथ, लेकिन एक सौभाग्य मैं कहूंगी कि हरियाणा फिल्म फेस्टिवल था, यमुनानगर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मेरी फिल्म हार्ट द वीकली बाजार थी, रंजीत भाई की फिल्म चिंटू जी थी और पुरी साहब की फिल्मों का सिंहावलोकन था, रिट्रोस्पेक्टिव था, तो उसमें हम तीनों ही वहां थे। तो मैं पुरी साहब की एक फिल्म मैंने नहीं देखी थी, तो मैंने कहा कि चलिए मैं देखूंगी आज आपकी ये फिल्म। बाकी फिल्में देखी थी, वो थी माय सन द फैनेटिक, अंग्रेजी फिल्म थी। तो मैं जब वो फिल्म देखी, यकीन मानिए मैं एक तो जारो कतार रो रही थी, और मैंने ना जैसे ही फिल्म खत्म हुई है ना, मैंने उनके पैर छू लिए। मैंने कहा क्या ऐसा लग नहीं रहा था कि ये पुरी साहब हैं। मैं वो किरदार को देख रही थी, मतलब मैं आपको शायद शब्दों में ना समझा पाऊं कि वो परफॉर्मेंस जो थी ना उनकी, वो दुनिया से बाहर की परफॉर्मेंस थी।
0: जी, जी जी।
1: तो वो फिल्म मेरे लिए सबसे उनकी महत्वपूर्ण है।
0: इसके अलावा उनकी बहुत सारी फिल्में आपने देखी भी होंगी।
1: सारी फिल्में तकरीबन देखी हैं।
0: हाँ।
1: तो अब देखिए ना उनके फ्लेवर देखिए आप, एक तरफ अर्धसत्य करते हैं, आक्रोश करते हैं, गूंगे का रोल है, आंखों से बोलते हैं, है ना, और एक तरफ चाची 420 करते हैं, है ना, माला माल वीकली करते हैं, और सीरियसली आपको सीरियस रह के आपको हंसाते हैं। उसमें कहीं बफूनरी की जरूरत ही नहीं है कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बिल्कुल सीरियसली। तो उनका रेंज आप, क्योंकि देखिए रुलाना बहुत आसान है, हंसाना बहुत मुश्किल है, तो वो कलाकार थे, मतलब अल्टीमेट कहूंगी इनको मैं,
0: और इंटरनेशनल
1: जी
0: लावल के कलाकार। उनकी मतलब कोई फिल्म ऐसी नहीं है जिस पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ हम उनके अभिनय से प्रभावित नहीं हुए।
1: फिल्म कमजोर हो सकती है, फिल्म की स्क्रिप्ट कमजोर हो सकती है, फिल्म का डायरेक्शन कमजोर हो सकता है, लेकिन वो उनको जितना किरदार दिया गया वो कमजोर नहीं है।
0: बिल्कुल। आपको संगीत में भी बहुत रुचि रही है ना, और आपकी चूंकि माताजी स्वयं क्लासिकल सिंगर रही हैं, तो आपके खून में भी सिंगिंग रही होगी
1: जी।
0: तो किस रूप में आप देखती हैं संगीत को?
1: अगर आप इंडियन संगीत की बात करते हैं, भारतीय क्लासिकल संगीत की बात करते हैं और वेस्टर्न क्लासिकल की बात करते हैं, तो मुझे दो चीजें हैं। वेस्टर्न क्लासिकल जब मैं सुनती हूँ तो मुझे ह्यूमन इमोशंस दिखाई देते हैं, इंसान के जो जितने भाव हैं उसके जितने भी भावनाएं वो दिखाई देती हैं, और जब आप इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सुनते हैं तो आपको कुछ नहीं दिखाई देता है, आपको दिव्य रोशनी दिखाई देती है। तो दो चीजों का ये मेरे लिए दिव्यता जो है वो म्यूजिक है।
0: जी,
1: मैंने भी सीखा है नसीर अहमद खान साहब से दिल्ली में, तो मैं सीखती थी, लेकिन जैसे बोल रही हूँ ना कि म्यूजिक मेरे लिए डिवाइन है, दिव्य है, उसको मैं प्रोफेशन नहीं बना सकती, उससे कमाई नहीं कर सकती, इसलिए मैंने अभिनय और म्यूजिक को कभी प्रोफेशन नहीं बनाया, वो मेरे लिए आत्मा की चीज है, उसको सुनती हूँ।
0: तो अगर हम आपसे कुछ गुनगुनाने को कहें तो आप कुछ पसंद करेंगी गुनगुनाना?
1: गुनगुनो ये तो आपने
0: क्योंकि यहाँ वो प्रोफेशन से नहीं जुड़ा है
1: एक लाइन गुनगुनाती हूँ
0: जी।
1: मेरी माताजी गाया करती थी ये गाना, बचपन में सुना था, लता जी का है,

0: जीवन में लेखन और थिएटर की शुरुआत कब से हुई, कैसे हुई और आपने लिखना कब शुरू किया?
1: मैं जब 15-16 साल की थी तो मैं छुप के कविताएं लिखती थी।
0: अच्छा, छुपकर क्यों?
1: छुपकर ये कि मुझे, देखिए ना, माँ इतनी बड़ी शायरा थी और वो मुशायरों में जाती थी, उन मुशायरों में साहिर लुधियानवी, कैफी आजमी, मजरू सुल्तानपुरी, फिराक गोरखपुरी जैसे बड़े बड़े शायरों के बीच और माँ जिस तरह की शायरी करती थी उनके आगे हम कुछ नहीं। और मैंने तो फ्री वर्स में अतुकांत लिखना शुरू किया था, तो इसलिए मुझे लगता था कि तो बड़ी बेकार सी चीजें हैं, लेकिन मन में उद्गार आते थे तो उसको कागज पे उतार लेती थी। तब से शुरू किया मैंने।
0: जी जी, तो सबसे पहले क्या लिखा आपको याद है कि जब लेखन की शुरुआत हुई होगी तो सबसे पहला क्या लिखा गया होगा?
1: ऐसे एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकती हूँ कि पहला कौन सी रचना थी, लेकिन वही 15-16 साल की उम्र में मैंने अपने माता पिता पे

0: लेती थी, तब से शुरू किया मैंने।
1: जी, तो सबसे पहले क्या लिखा आपको याद है कि जब लेखन की शुरुआत हुई होगी तो सबसे पहला क्या लिखा गया होगा?
0: ऐसे एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकती हूँ कि पहला कौन सी रचना थी, लेकिन वही 15-16 साल की उम्र में मैंने अपने माता पिता पे एक 4 लाइनें लिखी थी। तुम अपने आंचल पर एक घनेरी छांव काट दो, ताकि मई जून की तपती गर्मी में भूख और प्यास से बेहाल जब मैं उस छांव का आश्रय पा सकूं, तो मुझे लगे भूले भटके प्यासे राही का पड़ाव यहीं तक, बस यहीं तक।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सीमा जी, बातचीत का ये सिलसिला तो चलता रहेगा, आपकी पसंद का ये गीत सुन लिया जाए।
0: जी बिल्कुल।

0: एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं कि 1988 से आपके टीवी धारावाहिक शुरू हुए और साथ ही आपने सरकारी मंत्रालयों के लिए भी डॉक्यूमेंट्रीज लिखी काफी, इन सभी पर थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं।
1: जी, कॉलेज से मैं निकलने के बाद पढ़ी रही थी उन दिनों, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ती थी, और कहते हैं ना, जहां जहां पढ़े पग संतन के वहीं वहीं भंडा ढार। तो जैसे ही मैंने अलीगढ़ में एडमिशन लिया, उन दिनों राइट्स बहुत होने लगे, फसाद, तो हमें भागना पड़ता था वापस। तो वो 3 साल का 4 साल में हो गया बीए, तो उस बीच मुझे दिल्ली आना पड़ता था क्योंकि अलीगढ़ से दिल्ली पास था, तो मैं दिल्ली आ जाती थी। इसलिए मैंने 83 में सबसे पहले पपेट थिएटर ज्वाइन किया
0: जी
1: दिल्ली
0: हाँ
1: में।
0: जी
1: तो वो इंटरनेशनल लेवल का था, जो हमारे ट्रेडिशनल पपेट्स होते हैं वैसा नहीं था, मॉडर्न पपेट्री हम करते थे, और इंडिया को हमने कई कंट्रीज में रिप्रेजेंट किया है। जो इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल्स होते थे उसमें मैं जाती थी, हमारे डायरेक्टर थे तब दादी पदम जी, तो उनके संरक्षण में, उनकी देखरेख में मैंने मॉडर्न और ट्रेडिशनल पपेट थिएटर किया। उसके बाद, चूंकि पपेट थिएटर में आप फाइनेंशियली सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि जिंदा रहने के लिए आपको कमाना भी बहुत जरूरी है, तो फिर मैंने एक सीरियल डाली दूरदर्शन में, और उस समय एक ही चैनल हुआ करता था, दूरदर्शन, और दूरदर्शन में वो सीरियल हो गई किले का रहस्य।
0: जी
1: और चूंकि नौसिखिया थे, इस फील्ड में आता नहीं था ज्यादा, तो काफी पैसे का भी लॉस हुआ, सब हुआ, लेकिन ठोकर खा खा के सीख लिया,
0: सीखते
1: तब
0: हैं।
1: से ये यात्रा है शुरू। जब दूसरे प्राइवेट चैनल्स आ गए तो उन पे भी लिखना और डायरेक्शन कर ही रहे थे, प्रोडक्शन भी कर रहे थे, तो वो सिलसिला चलता रहा।
0: और सरकारी मंत्रालयों से जुड़ने के लिए फिर
1: जी, कई मैंने बनाई हैं डॉक्यूमेंट्रीज, जैसे अभी आपसे जिक्र कर रही थी, महानदी के किनारे, तो छत्तीसगढ़ की लाइफ लाइन है महानदी, नदी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो महानदी जब मैं बना रही थी, तो अच्छा बजट था उसका, तब तक लता जी ने संन्यास ले लिया था
0: जी
1: गाने से,
0: जी
1: तो तब मुझे अवसर मिला कि मैं उन तक जा पाऊं। उससे पहले फिल्म नहीं बनाई थी मैंने कोई, तो मैं नहीं जा पाई थी। तो मैंने हृदयनाथ मंगेशकर जी, जो उनके छोटे भाई हैं, बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं,
0: जी
1: उनसे मैंने संपर्क किया, और नीरज जी, गोपाल दास नीरज,
0: नीरज
1: उनसे गीत लिखवाया महानदी पे, और हृदयनाथ जी से मैंने कहा कि मुझे लता जी से गवाना है गाना, और मैं सौभाग्यशाली हूं कि उन्होंने हाँ भी किया और मेरी डॉक्यूमेंट्री के लिए उन्होंने गाए। तो डॉक्यूमेंट्रीज तो मैंने बहुत बनाई हैं, और एड,
0: इन सब के लिए आपने बहुत ज्यादा काम किया है मुझे लगता है, जिस पर अगर हम चर्चा करने चले तो शायद हमें कई अंकों में ही कार्यक्रम समेटना पड़ेगा।
1: जी
0: लेकिन आपको क्या लगता है सबसे अच्छी डॉक्यूमेंट्री आपकी नजर में कौन सी ऐसी बन पाई जिसे आप याद करती हैं?
1: महानदी,
0: महानदी।
1: क्योंकि आप एक नदी की कहानी कह रहे हैं, उसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए, और महानदी के किनारे जितनी सिविलाइजेशन हुई, बुद्ध आए उस दौरान वहां पर, और भगवान श्री राम, श्रृंगी ऋषि, और ये सब चीजों पे करते हुए आप एक्चुअली उस दौर में पहुंच जाते हैं। शूट जब कर रहे होते कि आप जिस धरती पे खड़े हैं, वहां पे ये महान आत्माएं आके और चली गई हैं, तो आप अपने आप को ना कण समझते हैं, कि मिट्टी का कण भी ज्यादा बड़ा है आपसे, और आप भाग्यशाली समझते हैं।
0: बहुत सुंदर। तो चलिए अब एक सुंदर सा गीत सुन लेते हैं।
1: जी।

0: सीमा जी, जब आप ये लिखती हैं, जब कोई किरदार गढ़ती हैं, किसी विषय को उठाती हैं, लेखन करती हैं, तो आपकी कहानियों में, आपकी किरदारों को लिखते समय पटकथा में किन बातों का आप ख्याल रखती हैं? जैसे अभी आपने महानदी का जिक्र किया, तो उस समय की पूरे इतिहास को समेटना कोई आसान काम नहीं होता है। किस तरह से पूरी चीजों को समेट कर इतने खूबसूरत तरीके से आप पेश करती हैं?
1: जी देखिए, क्या है, हर विषय का कालखंड और वो अलग होता है। तो ऐतिहासिक जो विषय होते, जैसे अभी अवंतिका बनाई, तो वो पूरा इतिहास को लेके बनाया। लेकिन वही जब आप फिल्म बना रहे होते, मिस्टर कबाड़ी, तो वो आज की है। इसमें किरदारों को जो उठाने का आपने प्रश्न किया है, ये बहुत अच्छा और सार्थक प्रश्न है। हम लोग बहुत भाग्यशाली रहे हैं कि हम थिएटर कंपनियों में, छोटे छोटे गांवों में, हमारी थिएटर कंपनी दो दो मूविंग थिएटर कंपनी थी, दो दो महीने एक एक गांव में रहते थे। तो हम एक एक गांव में और शहरों में, कस्बों में हम लोग बहुत रहे हैं। अगर मैं आपको गिनाना चाहूं तो जितने साल मेरी उम्र है उसके कम से कम 5 गुना ज्यादा कस्बे हम लोगों ने बदले हैं।
0: क्या बात है।
1: तो जब हम अलग अलग जगह रहते हैं, अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, हम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोगों से लेके अपर क्लास के लोगों तक, कलाकार से लेके बिल्कुल मजदूर वर्ग के लोगों तक, जब आप उनसे बातचीत करते हैं, और अगर आप ऑब्जर्वेंट हैं, अगर आप थोड़े से प्रज्ञावान हैं और आप चाहते हैं कि कुछ बनना है आपको, तो आप उन किरदारों को जिंदगी में आप आत्मसात करते हैं। फिर जब आप लिखने बैठते हैं तो पता नहीं कहां से कोई एक ठेले वाला है ना, कोई एक अचार बेचने वाला, कोई एक है ना, वो किरदार आते चले जाते हैं, वो जीवंत हो जाते हैं लेखनी के जरिए और आपके सेलुलॉइड के जरिए।
0: तो आप

0: रचनाओं में जो आपके किरदार हैं वो बहुत जीवंत हैं। आप किसी भी सीरियल को उठाकर देख लीजिए, डॉक्यूमेंट्रीज फिल्म को देख लीजिए, तो ये सब क्या आपके स्वयं के जीवन से जुड़े हुए कोई पहलू हैं, या जैसा कि अभी आपने कहा कि इतनी सारी जगह में रही हूँ, आसपास की घटनाओं से, लोगों से प्रेरित ज्यादा रहे?
1: बहुत ज्यादा। आपके कलाकार जो भी पात्र हैं वो आपके आसपास ही होते हैं, उनको फिर आप एक कैरेक्टर दे देते हैं, उस कहानी में ढाल लेते हैं। जैसे उदाहरण दूं मैं आपको, शोले फिल्म सबको समझ में आएगी कि शोले में आप जगदीप जी को देखते हैं कि वो टाल पे बैठे हैं। अब जब आप टाल पे बैठने वाले इंसान का कैरेक्टर आप गढ़ रहे हैं तो आपको भाषा भी उसकी वैसी ही लेनी पड़ेगी, ना कि वो जमींदार साहब की भाषा अलग होगी, उसकी भाषा अलग हुई, उसका नाम अलग होगा, है ना। गायत्री देवी आप नाम अगर है तो वो थोड़ी सी रॉयल फैमिली से ही होंगी
0: जी,
1: लाजवंती होंगी तो वो कुछ और होंगी, लीलाबाई होंगी तो वो, है ना। हाँ
0: बिल्कुल सही कहा। तो यानी कि हर किरदार को जब हम जीते हैं तो उसी के अनुरूप उसके बैकग्राउंड को भी महसूस करते हैं कि वो किस बैकग्राउंड से है
1: जी।
0: आपके जीवन में कौन सा ऐसा किरदार है जिसने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया अब तक?
1: मेरी फिल्म हार्ट द वीकली बाजार एक प्रथा पे है, मध्य प्रदेश मालवा और राजस्थान में एक प्रथा है, अभी भी थोड़ा बहुत चलन है तो काफी कम हो गई है, कि पति अपनी पत्नी को बेच सकता है, नाता बैठना बोलते हैं। तो वो किरदार कैसे गढ़ा, जब मैं पुरी साहब से बिछड़ गई थी बीच में, तो मैं झालावाड़ गई, झालावाड़ राजस्थान में, जहाँ माता जी पढ़ाती थी, उर्दू टीचर थी, वहाँ पर कहीं और जब ठिकाना नहीं होता है ना भावनाओं का, तो माँ ही याद आती है। माँ की गोद ही ऐसी जगह है जहाँ आप भूल जाते हैं, क्योंकि आप 9 महीने उसके पेट में रहे हैं, उसी से सांस ली है, उसी से खाया है, उसी से पिया है, तो आप निश्चिंत थे वो 9 महीने, आप तो निश्चिंत थे,
0: बिल्कुल
1: ना चिंता थी आपको सांस कैसे लूं और खाना कैसे खाऊं। तो उस समय जब मैं जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी, भावनात्मक रूप से, सोशली, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, तो मैं माँ के पास चली गई। जब मैं वहाँ गई तो हमारे यहाँ एक बाई काम करती थी, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, शारदा नाम मैंने रखा है उसका। तो शारदा एक दिन मुझसे बोली, वो 300 रुपया महीना उसकी उस समय तनख्वाह थी झाड़ू पोछे की, तो मुझसे बोली कि भाई साहब मुझे 5,000 रुपये उधार दे सकती हैं क्या? तो मैंने कहा तुम्हारी 300 रुपये तनख्वाह में तुम घर चलाती हो, दो और घर होंगे ज़्यादा, 600-700 रुपये में घर चलाती थी वो, 5,000 रुपये, पहली बात तो ऐसा क्या संकट आ गया, दूसरा कैसे चुकाओगी 5,000? उस समय ऐसे है कि कोई भाई मुझसे 5 लाख रुपए आज मांगे, तो कह लेंगे नहीं मुझे ना नाते की झगड़े की रकम भरनी है वरना मुझे बेच दिया जाएगा। तो मैं तो इस मामले में बिल्कुल ही वो थी, मैंने कहा बेच दिया जाएगा मतलब, मैं समझी नहीं। तो उसने मुझे बताया कि पंचायत से मेरे आदमी ने खा, पंचायत टाइप होती, मैं अब उसके साथ नहीं रहना चाहती, वो बेच रहा है मुझे, दूसरे के नाते बिठा रहा है, तो मैं नहीं जाना चाहती हूँ, तो मुझे 5,000 रुपये देने। मैंने वो तो 5,000 दे दिए, उसको तो भगवान ने बचाया, मैं तो एक बहाना थी,
0: माध्यम बनी।
1: लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज आई कि हम इतने सक्षम नहीं है कि हजारों लाखों शारदाओं को बचा सके, तो फिर वो कैरेक्टर मेरी स्क्रिप्ट बन गया
0: जी,
1: और इसलिए मैंने हार्ट फिल्म लिखी
0: जी। जी एक ज्वलंत विषय है ये जिस पर आपने अपनी फिल्म में विषय उठाया, उस पर भी हम बात करेंगे। पहले गीत सुन लेते हैं आपकी पसंद का।
1: शंकर जयकिशन की फिल्म है प्रोफेसर, आवाज देकर
0: हमें तुम बुलाओ। क्या बात है, बहुत सुंदर गाना है ये, आइए सुनते हैं इसकी
1: जी।

0: सीमा जी, बात चल रही है आपकी जिंदगी पर, आपके लेखन पर, आपके निर्देशन पर। हम आते हैं लेखन के साथ साथ आपके निर्देशन पर भी। लेखक जब लिखता है तो बहुत सारे किरदार उसके आसपास होते हैं। जब एक लेखक से आप निर्देशक की दुनिया में कदम रखते हैं तो फिर वो किरदार आपके सामने होते हैं जिन्हें आपको जीवंत करना होता है। तो निर्देशक बनने की जो यात्रा थी वो कैसे शुरू हुई और ये यात्रा कैसी रही?
1: देखिए, जब राइटर लिखता है तो उसकी लेखनी ना बहुत, जिससे बोलना चाहिए, हंसी में बता रही है, छलांगे मारती है, ये भी लिख दो, वो भी लिख दो, ये लिख दे। लेकिन जैसे ही आप निर्देशन में लाते हैं उस स्क्रिप्ट को, तो आपकी लिमिटेशन हो जाती है। आपको किरदार सामने खड़े होते हैं, उनको कितनी दूरी पे जाना है, कैमरा कैसे करना है, वो सिमट जाता है, है ना? आपका जो कैनवास है वो सिमट के फिल्म का पर्दे जितना हो जाता है। राइटर का तो कैनवास आकाश है
0: जी।
1: लेकिन निर्देशन में एक चीज है कि सृजन का जो राइटर और निर्देशक का जो एक मजा है लिखने का और उसको बनाने का, क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अभी तो शब्द है कागज पे, अब इसको कलाकारों के साथ, पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं, निर्देशन में जाना चाहते हैं, और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह। तो ये यात्रा दुरू होती है, मुश्किल होती है, क्योंकि डायरेक्टर को बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। उसको म्यूजिक का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको कैमरे एंगल का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको लेंसेज का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको एक्टिंग का भी ज्ञान होना चाहिए कि वो परफॉर्मेंस कैसे ले।
0: बिल्कुल,
1: तो मुश्किल काम होता है लेकिन मजा आता है।
0: जैसे आपने कहा कि उसे हर एंगल का ज्ञान होना चाहिए, इसके पीछे क्या पहले आपने कुछ कोर्स किए या आप किसी के अंडर में रही? इतना एक वाइड जैसे एंगल देखने के लिए क्या एक निर्देशक की तैयारी होती है?
1: देखिए, क्या हुआ कि पपेट थिएटर से निकलने के बाद सबसे बड़ा मसला था सर्वाइवल का, कि आप रोजी रोटी, दिल्ली में रहना है और

0: और मकान का किराया भी देना है, खाना भी खाना है, रहना भी है, और इतने सक्षम नहीं थे कि माता पिता भेज सकें, और आप 3 साल का 4 साल का FTII में जाके कोर्स कर सकें। तो जो भी सीखा जिंदगी से सीखा, ना तो किसी के अंडर में मैं असिस्टेंट रही, ठोकरे खा खा के सीखा, लेकिन सीखा खुद से ही सीखा, और अभी भी सीख ही रहे हैं।
1: हर पल हम सीखते ही हैं।
0: जी
1: तो
0: जी
1: जीवन के संघर्ष को कैसे देखती हैं आप?
0: बहुत संघर्ष रहा है जीना, जो है ना वो अपने आप में ही एक संघर्ष है। तब से शुरू हो जाता है जब हम कंसीव होते हैं, जब हमारा है ना, तब से ही संघर्ष शुरू हो जाता है। और उसके बाद जैसे ही दुनिया में आते हैं तो आपका संघर्ष है, रोटी कमाने का संघर्ष है, अपने आप को स्थापित करने का, और अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे बिना समझौता किए, आपने एक प्रिंसिपल बना रखे हैं, उनसे समझौता किए बिना आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो थोड़ा सा मुश्किल रास्ते हो जाते हैं। लेकिन खुशी इस बात की है कि उन रास्तों से होके हम गुजर गए।
1: आपने सही
0: समय
1: कहा।
0: लगता है, थोड़ा लंबा होता है।
1: तो आप जिस दुनिया में हैं, चाहे थिएटर की दुनिया से वो शुरुआत हुई और ग्लैमर वर्ल्ड तक आप पहुंची, आज भी आप वहां स्टैब्लिश हैं, आप बराबर काम कर रही हैं, तो थिएटर की दुनिया से लेकर ग्लैमर की दुनिया में जितनी भी महिलाएं हैं, या आप खुद एक महिला के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम कर रही हैं, क्या संघर्ष होते हैं वहां महिला को अपने आप को स्थापित करने के और बने रहने के?
0: महिला होना ही अपने आप में एक संघर्ष है। हम बहुत सारी गुलामियों को तोड़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारी गुलामियों को। एक जमाने में, प्राचीन काल में, तो स्त्री बहुत स्वतंत्र थी।
1: जी
0: फिर धीरे धीरे धीरे धीरे जैसे ही आते गए आताताई आते गए तो स्त्रियों को सुरक्षा के लिए उसको पीछे कर दिया गया, और वो फिर हमारी मानसिकता बन गई। आज भी मैं देखती हूँ मेरा जो संघर्ष रहा है वो, शायद मैं बहुत फॉर्चुनेट, सौभाग्यशाली रही हूँ कि मुझे किसी ने उस तरह से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश नहीं की, या फिर मेरा प्रोफेशन ऐसा था जिसमें कोई चांस नहीं था कि एक्सप्लॉइट, या मेरा अपना व्यक्तित्व ऐसा रहा होगा कि थोड़ा डरते भी थे लोग, क्योंकि मैं मुंह फट थी, थोड़ा सा इस मामले में बोल देती थी कि
1: आउटस्पोकन
0: आउटस्पोकन
1: जी
0: थी कि भाई ऐसा है कि अगर ऐसी बात है तो आप रखिए अपने पास, मुझे नहीं चाहिए काम। लेकिन और लोग इतनी सौभाग्यशाली नहीं होते हैं, मजबूर कर दिया जाता है उनको, या तो वो उस फील्ड को छोड़ देती हैं या फिर कहीं सरेंडर कर देती हैं। तो ये तो स्त्री के साथ चलता ही रहा है। और दूसरा, एक और मानसिकता है समाज में कि अगर कोई स्त्री सक्सेसफुल हो गई है तो जरूर किसी ना किसी तरह के समझौते करके ही ऊपर आई है।
1: जी
0: ये एक अजीब सी मानसिकता है। उसमें मुझे एक सवाल हमेशा लोगों से ये खड़ा होता है कि भाई तुम सिर्फ समझौते देखते हो, चाहे लता जी हो, आशा जी हो, हेमा मालिनी हो, मतलब किसी मधुबाला हो, मीना कुमारी हो, या आप लेखिकाएं हो,
1: जी
0: उन सबके ऊपर ये लांछन लगते आए हैं, आप उनका टैलेंट नहीं देख रहे,
1: उनकी मेहनत।
0: उनकी मेहनत और उनकी प्रतिभा। आप कोई दूसरी लता मंगेशकर बता दीजिए ना, तो क्या वो कॉम्प्रोमाइज से हो सकता है क्या? नहीं। जब तक आपके अंदर प्रतिभा नहीं होगी, जब तक आपके अंदर एक डेडिकेशन नहीं होगा अपने प्रोफेशन को लेके, तब तक आप सक्सेसफुल हो नहीं सकते। वरना तो ऐरा गैरा नत्थू खैरा कोई भी बन जाएगा,
1: जी
0: स्टार
1: जी
0: नहीं बनते हैं ना।
1: तो
0: जी
1: कितनी महिलाएं हैं जो आज लेखिकाएं हैं, या निर्देशिकाएं हैं, या किसी भी प्रोफेशन में है, किसी भी कंपनी में है, किसी भी महकमे में वो काम कर रही हैं, वो अपनी मेहनत और मशक्कत के बाद जब किसी पद या प्रतिष्ठा पर पहुंचती हैं और उनको ये इल्जाम लगा दिए जाते हैं कि भाई होगा कहीं कुछ ना कुछ, वरना इतनी
0: तब
1: ऊंचाई पर पहुंचना एक महिला के लिए इतना आसान तो नहीं है, तो बड़ा दुख होता है आज भी जब ये बातें कही जाती हैं तो।
0: बहुत दुख होता है, और दुख नहीं, शर्म आती है उन लोगों की मानसिकता पे। और मुझे एक बात की और शर्मिंदगी है कि इसमें पुरुष तो हैं ही शामिल, स्त्रियां भी शामिल हैं ये लांछन लगाने में। तो वो बहुत गलत है। हमको हमारी मानसिकता, समाज की मानसिकता को बदलने की बहुत जरूरत है।
1: जी चलिए अब एक सुंदर सा गीत सुन लेते हैं।
0: जी

को भी।

ये था सुप्रसिद्ध राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर सीमा कपूर से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। तकनीकी सहायक किरण बंग, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। इस बातचीत का दूसरा भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन। ओम।

0: सुपर है डुपर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
3: और आ गया।
2: एक और आ गया।
4: जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की अपनी दो दिन की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। चार दशकों से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की ये पहली यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत की। दोनों नेताओं ने रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और दुग्ध तथा पशुपालन सहित विभिन्न क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ऑकलैंड में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि आगामी 4 वर्षों में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है।
1: दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय ये दर्शाता है कि हम अपने रिश्तों के सभी क्षेत्रों में संबंध मजबूत कर रहे हैं, विशेष रूप से रक्षा तथा सुरक्षा के क्षेत्र में और राजनीतिक स्तर पर।
0: प्रधानमंत्री ने ऑकलैंड के स्पार्क एरिना में प्रवासी भारतीय समुदाय के 10,000 से अधिक सदस्यों के कार्यक्रम में भाग लिया। प्रधानमंत्री लक्सन ने सभा को संबोधित करते हुए भारत को एक विश्वसनीय मित्र बताया। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन को उनके गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि इस यात्रा ने भारत न्यूजीलैंड संबंधों में एक नया अध्याय खोल दिया है।
2: न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के सीईओ बन सकते हैं, जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं, जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, ऐसे कितने ही नाम हैं। यहां रहते रहते आप भी

0: के पूरे कीवी हो गए हैं।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्रगिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17A का ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि पुस्तकें व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने कहा कि महान क्रांतिकारी और विचारक जयप्रकाश नारायण ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्षता करेंगी। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि लोकतंत्र में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन संविधान और जन कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता सर्वोपरि रहनी चाहिए। उन्होंने बिहार में गया जी में राज्य के लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में 18वीं विधानसभा के सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट आज वियतनाम के फूकोक द्वीप के पास पलट गई। स्थानीय खबरों के अनुसार 15 लोगों के मारे जाने की आशंका है, जबकि 21 लोगों को बचा लिया गया है। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 चालक दल के सदस्यों को ले जा रही ये नाव होन में रुतनगोई द्वीप से लगभग 400 मीटर दूर पलट गई, जिसके बाद बचाव अभियान शुरू किया गया। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज शाम 7 बजे से साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। इंग्लैंड ने श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। एक दिवसीय श्रृंखला से पहले भारत की नजर ये मैच जीतने पर रहेगी। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

रोज की तरह आज भी भक्ति संगीत आप सुनेंगे वंदन कार्यक्रम में 5:10 पर। और 5:30 पर हमारे युवा साथी अपना प्रसारण सुनेंगे युवा वाणी। संध्या 6:00 हम आपको सुनाएंगे लोकगीत और 6:05 पर सुनिएगा आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रसारित भोजपुरी समाचार बुलेटिन।

संध्या 6:10 पर प्रसारित किसान वाणी में आज जीरो टीलेज से धान की खेती की जानकारी देंगे विशेषज्ञ अमित कुमार सिंह। और अलावा इसके अरहर की खेती तथा बरसात में पशुओं की देखभाल की भी चर्चा की जाएगी। हमारे केंद्र से भोजपुरी फिल्म संगीत आप सुनते हैं सांझ गीत कार्यक्रम में, और यह कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं

7:40 पर, 7:15 पर सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास सुनना नहीं भूलिएगा। आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल आप सुनेंगे क्रमशः 7:30 पर और 7:45 पर, और संध्या 7:50 पर हम आपके लिए प्रस्तुत करेंगे फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम हेलो मनपसंद सुनना नहीं भूलिएगा।

उड़ान। जी हाँ, यह प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे हमारे केंद्र से रात्रि 8 बजे और 8:15 से आप आनंद लेंगे हेलो मनपसंद कार्यक्रम के शेष भाग का। दिल्ली से प्रसारित समाचार संध्या आप सुनते हैं 8:45 पर और रात्रि 9 बजे हम आपके लिए पेश करेंगे भोजपुरी लोकगीत लोकधारा के अंतर्गत। गजलों की महफिल सजेगी 9:15 पर। विविध भारती मुंबई की प्रस्तुति आज के फनकार आप सुनते हैं 9:30 पर और रात्रि 10 बजे हिंदी एल्बम सॉन्ग सुनिएगा रस रंग कार्यक्रम के अंतर्गत। सदाबहार फिल्मी नगमों का कार्यक्रम चित्रपट तराने हम आपके लिए पेश करेंगे रात्रि 10:30 पर और सभा का समापन होगा दिल्ली से प्रसारित समाचारों के बाद रात्रि 11:10 पर। तो श्रोताओं, यह थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा आपके लिए। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड के 103.4 MHz पर। 5:10 हुए हैं, आइए सुनते हैं भक्ति संगीत कार्यक्रम वंदन।

अलग अलग अवस्था में विभिन्न झंझटों में फंस जाता है। हर काम करता है लेकिन एक काम करना ये मन भूल जाता है, वो है ईश्वर का नाम लेना। तो अलग अलग अवस्थाओं में ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं, कौन से झंझट होते हैं जिनमें मनुष्य उलझ के रह जाता है, उसका वर्णन है।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

अभी आपने सुशीला गौहर से यह भक्ति रचना सुनी, इसके पहले आपने अनूप जलोटा को सुना। कार्यक्रम का समापन कर रहे हैं हंसराज रघुवंशी।

तो श्रोताओं, अभी आप हंसराज रघुवंशी की रचना सुन रहे थे और इसी भजन के साथ ही भक्ति संगीत कार्यक्रम वंदन अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 5:30 हुए हैं, लीजिए सुनिए युवा साथियों को संबोधित हमारा प्रसारण युवावाणी।

युवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता दोस्तों को संजय चतुर्वेदी का सप्रेम नमस्कार और कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत भी। जी हाँ, बढ़ती जनसंख्या, आपने तो अनेक बार इस पर लेख लिखा होगा, अनेक बार गोष्ठियाँ भी आयोजित हुई होंगी, उसमें आप शामिल हुए होंगे। जनसंख्या के पक्ष में, जनसंख्या के विपक्ष में भी आपने अपने विचार व्यक्त किए होंगे और आपने इसको बहुत बड़ी समस्या भी बताया होगा, साथ साथ समस्या के साथ साथ काफ़ी सकारात्मक पक्ष भी आपने रखे होंगे। श्रोताओं, आज विश्व जनसंख्या दिवस है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, और इसीलिए हमने ये बात छेड़ी कि जब विश्व जनसंख्या दिवस है तो इस बिंदु पर चर्चा अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि ये जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या दुनिया के लिए, हमारे देश के लिए भी कुछ बहुत कुछ कह जाती है, संदेश दे जाती है। हमें बहुत जगह संभालना भी होगा, बहुत सारा लाभ भी मिलता है जनसंख्या बढ़ने से, लेकिन हाँ, किसी भी चीज़ की, कहा गया है ना कि अति सर्वत्र वर्जयेत, कहीं भी जो है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, हर चीज़ का अति होना बड़ी हानिकारक है, नुकसानदेह हो जाता है। तो जनसंख्या की दर जो है वो नियंत्रित होनी चाहिए। हमारे विद्वान और दार्शनिक और जो भी ये वेता हैं, जनसंख्या पर जिनकी बातें सुनी जाती हैं पूरी दुनिया में, उन्होंने कई तर्क दिए हैं कि जब जनसंख्या को कैसे कंट्रोल करना है, जनसंख्या

की रफ्तार को स्लो करना है कैसे, तो बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं। लेकिन यदि हम ठोस बिंदुओं पर ध्यान दे लें तो जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या हमारे संसाधनों पर बोझ अवश्य दिखती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जैसे बढ़ती जनसंख्या के कारण पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों, खास करके जिसे हमारी हमारे भगवान ने कही है या प्रकृति कुदरत ने कही है, जो हमें मुफ्त में दे रखा है, उस पर तो भाई बोझ आता ही है। पीने का पानी, उपजाऊ जमीन, ऊर्जा स्रोत, इन सब पर काफ़ी दबाव पड़ता है। इसी से मैंने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों पर जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या का बोझ आता है, पड़ता है, दबाव पड़ता है। असीमित उपभोग और तेजी से घटते नवीकरणीय संसाधनों के कारण वनों की कटाई होती है, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण की गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। अब आप देखिए ना, इससे कौन इनकार कर सकता है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण मकान बनाने पड़े हैं, तो जो उपजाऊ ज़मीन थे उनकी कमी आई है। इससे कौन इनकार करेगा कि पेड़ों की कटाई हुई है, बहुत सारे लोग उद्योग में आ गए, पेड़ों को काटा, लगाया भले ही नहीं, काटा ज़रूर। इसी से ये भी समझाया जाता है कि भाई आप पौध रोपण करिए, काटिए कम, पौध रोपण ज़्यादा करिए, एक कटा तो 10 लगाइए कम से कम, तब जा करके, नहीं तो कोरोना काल में आपको तो याद ही होगा, अभी चंद वर्षों की बात है, ऑक्सीजन के लिए परेशानी थी। और ये ऑक्सीजन कहीं घर में नहीं बनता है, ये पौधों के द्वारा ही हमें मिलता है। तो पौधे रहेंगे तभी तो ऑक्सीजन मिलेगा हमें, तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करेंगे पौधे। तो ये चीज़ें हैं कि बढ़ती जनसंख्या जो है इसका असर ऐसा है कि जल संकट भी पैदा होता है। जनसंख्या बढ़ने से घरेलू, कृषि और औद्योगिक उपयोग के लिए मीठे पानी की मांग तेज़ी से बढ़ रही है। अत्यधिक दोहन के कारण भू जल स्तर नीचे जा रहा है और उपलब्ध जल प्रदूषित हो रहा है। अब आप देखिए ना, हैरानी होती है कि जिस प्रकार से हम लोग कभी बाहर जाते हैं तो खाने की चीज़ें खरीदते हैं, वैसे ही पानी भी खरीदते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा नहीं था कि वाटर जो है ये कोई कमोडिटी की तरह नहीं थी कि भाई 20 रुपये का बोतल पानी भी दे दो, लेकिन अब तो ये बन आई है परिस्थिति। पेयजल की कमी हो रही है, अभी देखिए बरसात का मौसम है और ये मौसम अभी चलेगा महीने दो महीने, यही ये ऐसा अवसर है कि हम बारिश के पानी को चाहें तो रोक करके इकट्ठा कर सकते हैं, ज़मीन में सिप कर जाए तो जल स्तर को बढ़ाने में मदद मिलती है, लेकिन तब रह गया कि सिप कर जाए तब तो, जब हमने सारा मेटल्ड कर दिया। आप देखेंगे गांव की गलियां पक्की हो गई, नालियां पक्की हो गई, सड़कें बन गई, सब कुछ पक्का ही पक्का हो गया, तो पानी जो है वो दूर निकल जाता है, जहाँ हमारा घर है वहाँ सिप नहीं करके कहीं और बह जाता है। तो ये भाई देखिए, ये तो बात पानी की है, लेकिन अब ये जनसंख्या से सीधे जुड़ा है चीज़ कि जनसंख्या बढ़ने से घरेलू, कृषि और औद्योगिक उपयोग के लिए मीठे पानी की मांग बढ़ रही है। अत्यधिक दोहन के कारण भू जल स्तर नीचे जा रहा है और उपलब्ध जल प्रदूषित हो रहा है। जल जो है वो प्रदूषण बढ़ रहा है, उसके कारण वो पीने लायक नहीं रह जा रहा है, जलीय जीव भी मर जा रहे हैं। तो ये परिस्थिति पैदा हुई है। भूमि और वनों की कटाई, बढ़ती आबादी के लिए आवासीय कॉलोनियों, सड़कों और कारखानों की आवश्यकता होती है, जिसके कारण वनों को अंधाधुंध काटा जा रहा है। आवास और खेती की ज़मीन कम होने से मिट्टी की उर्वरता पर भी बुरा असर पड़ता है। काफ़ी वर्षों पहले जंगल जैसा था वातावरण, पेड़ घने थे, आम के पेड़ बहुतायत मात्रा में थे, आज देखिए ना वहाँ क्या है, आम के पेड़ कट गए, अब पेड़ का वो नामो निशान नहीं रहा, खेती होती है या फिर आवास बन गए, घर बन गए, तो हमने पेड़ों को काटा, आज देखिए दुर्दशा क्या है कि जाड़े के मौसम में भी गर्मी महसूस होती है, बरसात में भी, आज भी दिन में भी आज गर्मी महसूस हुई है, ये आलम है। खाद्य सुरक्षा की परेशानी है, कृषि योग्य भूमि सीमित है, लेकिन भोजन की मांग लगातार बढ़ रही है, भाई मुँह है तो भोजन तो चाहिए ही। अधिक उत्पादन के लिए रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की गुणवत्ता खराब हो रही है और कुपोषण की समस्या बढ़ रही है। ऊर्जा की मांग और जलवायु परिवर्तन भी जुड़े हैं।

जनसंख्या वृद्धि से। जनसंख्या वृद्धि के साथ ऊर्जा जैसे कोयला, पेट्रोलियम गैस इत्यादि की मांग बढ़ रही है। जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की समस्या विकराल रूप ले रही है। तो ये तो भाई चिंता की बात है ही है। पर्यावरण और जैव विविधता का नुकसान, वनों की कटाई और प्राकृतिक आवासों के नष्ट होने से वन्य जीवों की प्रजातियाँ लुप्त हो रही हैं, कचरे के अनुचित प्रबंधन से वायु और जल प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है, कचरे का बुद्धिमत्तापूर्वक प्रबंधन होना चाहिए। आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है भाई, फेंक देते हैं लोग सड़कों पर ख़राब चीज़ें, जले हुए कपड़े, जले हुए तेल, भोजन बच गया वो भी भोजन अवशेष, यहाँ तक कि मृत जानवरों के अवशेष। अब बताइए, इससे परेशानियाँ पैदा होती हैं हर किसी को, तो ये प्रदूषण बढ़ाता है। तो इसी से हो रहा है कि बुद्धिमत्तापूर्वक उचित प्रबंधन होना चाहिए कचरे का, तब जाकर के वायु प्रदूषण या जल प्रदूषण को हम लोग रोक पाएंगे। सामाजिक और आर्थिक चुनौतियाँ भी हैं, विशेष रूप से विकासशील देशों में संसाधनों का असमान वितरण होता है। अत्यधिक जनसंख्या के कारण गरीबी, बेरोजगारी और बुनियादी सुविधाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य की कमी जैसी सामाजिक आर्थिक चुनौतियाँ पैदा होती हैं। तो खैर, बातें बहुत सी हैं, लेकिन संक्षेप में यही समझना है कि बढ़ती हुई जनसंख्या संसाधनों पर बोझ है। तो विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आज ये छोटी सी चर्चा है, लेकिन चलिए हम एक गीत सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।

0: चाहिए, वो भी ऐप से।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: आरबीआई कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: जी हाँ, जानकार बनिए और सतर्क रहिए, ये आरबीआई कहता है। और हम भी अपने व्यवहारिक जीवन में से रोज महसूस करते हैं, अपना ओटीपी वन टाइम पासवर्ड किसी को नहीं बताइए, अपना एटीएम कार्ड किसी के साथ शेयर मत कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ही रिस्क है, जोखिम है। तो जानकार बनिए, सावधान रहिए और ज़िंदगी को सरल बनाइए। चलिए, आज 11 जुलाई है दोस्तों, आज भीष्म साहनी जी की याद आती है, क्योंकि 8 अगस्त 1915 को जन्मे भीष्म साहनी ने आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा था वर्ष 2003 में। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख स्तंभ और उपन्यासकार का नाम होता है भीष्म साहनी। मुंशी प्रेमचंद की परंपरा के अग्रणी लेखक माने जाने वाले भीष्म साहनी को भारत पाकिस्तान विभाजन की त्रासदी पर आधारित उनके उपन्यास तमस और लोकप्रिय नाटक हानुष के लिए विशेष रूप से याद किया जाता है। संभव है तमस आपने पढ़ी भी हो, क्योंकि काफ़ी लोकप्रिय उपन्यास ये रहा है। भीष्म साहनी का जन्म अविभाजित भारत के रावलपिंडी, अब पाकिस्तान में पड़ता है वो, में हुआ था। उनके पिता हरवंश लाल साहनी एक समाज सेवी थे और माता का नाम लक्ष्मी देवी था। मशहूर फिल्म अभिनेता बलराज साहनी उनके बड़े भाई थे। जी हाँ, मतलब कि सांस्कृतिक और कलात्मक माहौल परिवार से ही मिला। और मशहूर फिल्म अभिनेता बलराज साहनी बड़े भाई थे। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी साहित्य में एमए और पंजाब विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। जी हाँ, उस ज़माने में साहित्यिक सफ़र और कार्य की बात कर लें तो साहनी जी वामपंथी और जनवादी विचारधारा से गहराई से जुड़े थे, जिसका प्रभाव उनकी रचनाओं में स्पष्ट दिख झलकता है। कुछ समय तक उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर के रूप में पढ़ाया और मॉस्को में अनुवादक के रूप में भी काम किया। उपन्यास कई लिखे इन्होंने, जैसे तमस, झरोखे, बसंती, मैयादास की माड़ी, कुंतो, नीलू नीलिमा, नीलोफर इत्यादि। नाटक भी लिखे, हानुष, माधवी, कबीरा खड़ा बाजार में, मुआवजे, तो ये प्रमुख नाटक रहे। कहानी संग्रह, कहानियाँ भी उनकी प्रकाशित हुई, जैसे भाग्य रेखा, भटकती राख, पटरियाँ, शोभा यात्रा इत्यादि। आत्मकथा भी लिखा, बलराज माई ब्रदर, अपने बड़े भाई पर केंद्रित आत्मकथा उन्होंने लिखी। और उनकी प्रसिद्ध कृति तमस पर दूरदर्शन के लिए एक चर्चित टेलीफिल्म भी बनी, जिसका निर्देशन गोविंद निहलानी ने किया था। अनेक

पुरस्कार और सम्मान से सम्मानित किए गए भीष्म साहनी जी। 1975 में तमस के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1998 में पद्म भूषण से सम्मानित किए गए। 2002 में साहित्य अकादमी फेलोशिप प्रदान किया गया। 1980 में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और 1983 में एफ्रो एशियन राइटर्स एसोसिएशन का लोट्स अवार्ड। और उनका निधन आज ही के दिन यानी 11 जुलाई 2003 को नई दिल्ली में हुआ। तो हमें उम्मीद है कि आप अवश्य इनकी जीवनी से प्रेरणा लेंगे और आप भी अपनी लेखनी को दीजिएगा रफ्तार। चलिए एक और गीत सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।

तो श्रोताओं, अभी आपने यह गीत सुना और उम्मीद है कि आपको गीत अवश्य पसंद आया होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं स्टार्टअप इंडिया की। स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसे 16 जनवरी 2016 को लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य देश में नवाचार, जिसे इंग्लिश में आप इनोवेशन कहते हैं, जी हाँ, और उद्यमिता यानी इंटरप्रेनरशिप को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य है। नए व्यवसायों के लिए अनुकूल माहौल बनाना भी इसका उद्देश्य है और साथ ही साथ रोजगार के अवसर पैदा करना भी।

स्टार्टअप इंडिया का मुख्य उद्देश्य है, यानी स्टार्टअप इंडिया नवाचार, उद्यमिता, व्यवसायों को बढ़ाना और अनुकूल माहौल पैदा करना तथा रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए चलाया गया एक अभियान या प्रमुख पहल है भारत सरकार की, जिससे युवा वर्ग खास करके बहुत ही लाभान्वित हो रहा है। जी हाँ, स्टार्टअप इंडिया के तहत मिलने वाले अगर लाभों की बात की जाए तो DPIIT यानी योग्य कंपनियां स्वयं को स्टार्टअप के रूप में पंजीकृत कर सकती हैं, टैक्स में इसे छूट भी मिलता है और सेल्फ सर्टिफिकेशन भी है, यानी नए स्टार्टअप्स को 5 वर्षों तक लेबर और एनवायरनमेंट कानूनों का स्वयं प्रमाणन करने की सुविधा मिलती है, पेटेंट और ट्रेडमार्क शुल्क में कमी की गई है इसको बढ़ावा देने के लिए, यानी बौद्धिक संपदा जैसे पेटेंट रजिस्ट्रेशन में 80% तक की फी में छूट मिलती है, वित्तीय सहायता भी है। जी हाँ, सिडबी के माध्यम से फंड ऑफ फंड या स्टार्टअप इंडिया सीड फंड जैसी योजनाओं से प्रारंभिक चरण में फीडिंग और कोलेटरल मुक्त यानी बिना गारंटी ऋण की सुविधा मिलती है। इसके लिए कुछ पात्रता भी है, आपकी कंपनी को निम्न ये शर्तें पूरी करनी होंगी, जैसे कंपनी का प्रकार क्या है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म होनी चाहिए, कंपनी की उम्र, कंपनी के रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेशन की तारीख से 10 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, किसी भी वित्तीय वर्ष में वार्षिक टर्नओवर 100 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। पंजीकरण के लिए विशेष आप अपने उद्योग विभाग से संपर्क करें और जानकारी लें। फिलहाल आइए सुन लेते हैं एक और नगमा।

तो सुनिधि चौहान और साथियों के गाए इसी गीत के साथ ही आज की इस युवाणी कार्यक्रम के अंक से संजय चतुर्वेदी को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

अभी आपने युवा साथियों को संबोधित हमारा प्रसारण युवाणी सुना। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। आइए सुनते हैं सुधा सिन्हा का गाया यह बरसाती लोकगीत।

सुधा सिन्हा के गए इसी लोकगीत के साथ ही लोकगीत कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार बुलेटिन। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

प्रणाम। ई आकाशवाणी पटना। अब रहुआ सूर्य प्रकाश उपाध्याय भोजपुरी में समाचार सुनी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कहले बाड़न कि लोकतंत्र में मतभेद होखल स्वाभाविक बात बा, लेकिन संविधान के प्रति लगाव आ जन कल्याण सबसे ऊपर होखे के चाहें। श्री राधाकृष्णन गया जी के विपाट परिसर में विधानसभा सदस्य लोगन के प्रशिक्षण शिविर से प्रबोधन कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र के संबोधित करत रहलन। वो जनप्रतिनिधि लोगन से लोकतांत्रिक मूल्य, पारदर्शिता आ जनता के प्रति जवाबदेही के सर्वोच्च प्राथमिकता देवे के अपील भी कैलन। प्रबोधन कार्यक्रम के संबोधित करत राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन कहले बाड़े कि जनसेवा के प्रभावी बनावे खातिर जनप्रतिनिधि लोगन के संसदीय आ विधायी काम के हर पहलुन के ट्रेनिंग देवे के फैसला स्वागत योग्य कदम बा। कार्यक्रम के संबोधित करत मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सब विधायकन से अपन अपन विधायक क्षेत्र के समग्र विकास खातिर विस्तृत कार्य योजना तैयार करे के गुहार कैलन। कार्यक्रम के विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी आ विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह भी संबोधित कैलन। दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम के उद्देश्य नया आ पुरान सब सदस्य लोगन के संसदीय कार्य प्रणाली आ विधानसभा के नियमावली से परिचित करावल बा। प्रदेश में आजू से 80 बरस आ ओकरा से ऊपर उम्र के बुजुर्ग नागरिक लोगन खातिर घर बैठल जमीन, प्लॉट आ फ्लैट के रजिस्ट्री के प्रक्रिया शुरू हो गेल बा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी वैशाली जिला मुख्यालय हाजीपुर स्थित जिला निबंधन कार्यालय में आयोजित समारोह में ई सुविधा के शुरुआत कैलन। ए दौरान उ मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट के हरी झंडी भी दिखैलन। इस मौका पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी आ विजेंद्र प्रसाद यादव भी मौजूद रहलन। मद्य निषेध उत्पादक आ निबंधन विभाग के मंत्री मदन सहनी बतेलन कि यह सेवा के तहत पेपरलेस रजिस्ट्री सीओ द्वारा रजिस्ट्री से जुड़ल पहले जानकारी या जीआईएस तकनीक के माध्यम से जमीन के जांच नियन सुविधा दिहल जाए। ये व्यवस्था प्रदेश के सब 145 को रजिस्ट्री ऑफिस में भी लागू होगी। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा कहले वालन कि प्रदेश में खाद की कोनो कमी नहीं खे आ खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध बा। श्री सिन्हा किसानन से निहोरा कैले कि उ लोग खाद खरीदत घड़ी रसीद जरूर लेस। भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामला के न्यायिक जांच चल रहा बा। आरा में बनल न्यायिक जांच आयोग के सामने आज भरत तिवारी के

0: बाबू अपन बयान दर्ज कैलन। ओहिजा उनकर भाई चंदन तिवारी आ भवा सुमन देवी आयोग के सामने हाजिर ना भैलन आ निजी कारण से बाद में बयान दर्ज करावे खातिर समय मंगलन। आयोग उनकर गुहार के स्वीकार कर ले बा। कला संस्कृति विभाग बिहार सरकार के ओर से रोहतास के आम्रपाली शिक्षण केंद्र में स्थानीय लोक कला रंगमंच और पारंपरिक कला विधान सब के संरक्षण और बढ़ावा देवे खातिर विशेष सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रम सत्र के आयोजन कैल जा रहा बा। आजो विश्व संख्या दिवस है। हर साल 11 जुलाई के मनाए जाला। ई बढ़त जनसंख्या से जुड़ल चुनौती आ अवसरन के प्रति जागरूकता बढ़ावे खातिर मनावल जाला। यह साल विश्व जनसंख्या दिवस के थीम बा युवाओं की आशाओं तथा आकांक्षाओं को साकार करना। विश्व जनसंख्या दिवस पर पूरा प्रदेश में कई अनगो जागरूकता कार्यक्रम आयोजित भी कल गई। प्रदेश में मानसून के सक्रियता से राजधानी पटना समेत कई जिलों में देर रात तक रुक रुक के पानी बरसत रहल। मौसम विभाग के मुताबिक पिछला 24 घंटा के दौरान पटना के विक्रम में लगभग 100 मिलीमीटर बारिश दर्ज कल गई। राजधानी पटना में भी लगभग 90 मिलीमीटर पानी रिकॉर्ड कल गई बा। मौसम विभाग आज मुजफ्फरपुर गोपालगंज और सिवान जिला में बहुत भारी बारिश जबकि पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण सारण शिवहर सीतामढ़ी कटिहार आ पूर्णिया जिला में भी भारी बारिश के चेतावनी जारी कैले बा। विभाग कहले बा कि अगला 7 दिन तक राज्य में बारिश के ऐसने माहौल बनल रही। अरवल जिला के सदर थाना इलाका के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 139 पर एगो हाईवा ऑटो रिक्शा के आमने सामने के टक्कर में 4 लोगन के मौत हो गई जबकि 2 लोगन घायल हो गईलन। सब मरे वाला लोग अरवल जिला के ही रहे वाला रहन। बगहा की एगो अदालत मानव तस्करी के एक मामला में पश्चिम बंगाल के 2 गो आरोपियों के दोषी करार दे लेबा। सजा के बिंदु पर 13 जुलाई के सुनवाई होगी। अदालत महज 24 दिन में यह मामला के सुनवाई पूरा कर लेबा। स्वास्थ्य सेवा की आम जनता तक सजल और प्रभावी बनावे के दिशा में राज्य स्तर पर जारी टेली कंसल्टेशन जिला रैंकिंग में औरंगाबाद जिला के पहला स्थान मिलल बा। एक साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक यही जे समाप्त भेल।
1: हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड के 103.4 MHz पर। शाम के 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

0: किसान वाणी कार्यक्रम के सब श्रोता भाई बहन के दीनू भाई के तरफ से राम राम और झुनी बहन नमस्कार।
1: नमस्कार दीनू भाई और सब श्रोता भाई बहन लोगों के झुनी बहन के तरफ से प्रणाम।
0: देखी यह समय अगर सिवान में आदमी निकलता है तो सगरो कोई ना कोई कुछ ना कुछ करत लग जाता।
1: हाँ कहीं हर कुदार चलाता कहीं रोकनी हाँ, लागल बा
0: ए घरी गांव ले ज्यादा मनसायन सिवाने में लगेला। कहीं खेत की तैयारी होता तो कहीं बिया कबरता तो कहीं रोपनी होता
1: कहीं रोपनी के गीत सुनाता।
0: वही में रोपनी जब गीत गावे ली धान रोपेला तब कहीं मत कितना निमन लागेला। देखी हमनी के खेती गृहस्थी में लागल बनी जा
1: जी जी।
0: लेकिन संगे संगे हमनी के खेती के जौन आधार बड़ा सन मवेशी ओहनी पर भी विशेष ध्यान देवे के चाही।
1: काहे तो वही आधार बड़ा सन होकर
0: काहे कि आज

0: अगर आज भले हमनी के यांत्रिक युग में पहुंच गई बनी जा, यंत्र से ही हर तरह के खेती हो रहा बा आज के समय में, लेकिन शुरुआत जानवरे से रहे। आज भी वो जानवर उतने महत्वपूर्ण बा, कहे कि दूध उत्पादन जितने बढ़िया लोग करता उतने बढ़िया सुखी रहता। आज के गांव गांव से दूध उत्पादन प्रति वर्ष बढ़ रहा बा, ये बात पर सबका ध्यान देवे के चाहिए कि खेती के संगे संगे और जौन भी ओकर काम बा करे के चाहिए।
1: दिनू भाई देखी, माल मवेशी के जितने बढ़िया से रख सुरक्षा से उतने बढ़िया रख के फायदा दिहन
0: जी,
1: जैसे खेती जितने बढ़िया रख करब उतने उत्पादन मिली
0: जी,
1: वही तरह से माल मवेशी भी बाड़न। लेकिन दिनू भाई जितना चाहिए उतना देखी बारिश अभी ना भइल, ऐसे थोड़ा मतलब रोपनी में टाइम लगता,
0: धीरे धीरे बढ़ रहा बा,
1: बढ़ता लेकिन
0: शुरुआत हो गई बा तो बहुत जल्दी
1: हो
0: जाई। ऐसे कि नहर के भी पानी हमनी के मिल रहा बा,
1: नहर के तो पानी भरपूर मिल रहा बा,
0: तो रोपनी में कोनो दिक्कत ना हुई, रोपनी हो जाई। लेकिन उचास जौन जगह बा ओजा खातिर थोड़ा सा इंतजार करे,
1: थोड़ा सा इंतजार बा।
0: तो देखिए आज के कार्यक्रम में क्या क्या बात नहीं बताई।
1: तो देखिए दिनू भाई, सबसे पहले कार्यक्रम शुरू कर जाई कृषि से संबंधित खबर खबरात से। एकरा बाद आज की बातें में एगो वार्ता के माध्यम से जानल जाई जीरो टीलेज खेती से धान के खेती।
0: अच्छा,
1: एकरा बारे में यह विषय पर जानकारी देव कृषि विशेषज्ञ अमित कुमार सिंह। आ देखी एकरा बाद नई उम्र की नई फसल में आज बतकही के विषय रही अरहर की खेती।
0: अच्छा,
1: आ देखी आज के नसीहत बा कि बरसात में पशुअन के देखभाल करे के चाहिए अच्छा से
0: जी।
1: आ चलत चलत देखी हमनी के मौसम के पूर्वानुमान पर एक नज़र डालल जाए, आ मौसम के देखते हुए हमनी के किसान भाई लोग के भी कुछ कृषि सलाह दिहल जाए। तो देखी इत रहल आज के कार्यक्रम के एगो छोटा झलक, बाकी दिनू भाई अब किसान भाई लोग खातिर का खबर लेके आयल बानी तनी ओकर बता दी।
0: देखिए आज के खबर जानल जाओ हमनी के
1: जी,
0: नारियल के खेती से सुधरी किसान के सेहत। श्रोता भाई बहन, जिला में डाब के मांग के देखते हुए नारियल की खेती करे खातिर किसान लोग के प्रोत्साहित करे के योजना सरकार चलौले बा। सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 में 1600 नारियल के पौधा लगावे के लक्ष्य निर्धारित कैले बा। जिला उद्यान विभाग के अनुसार किसान लोग के अनुदानित दर पर पौधा उपलब्ध करावल जाई। नारियल के बढ़त मांग के साथे साथे स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आ बेहतर बाजार के संभावना के देखते हुए सरकार के ई पहल किसान खातिर फायदेमंद साबित हुई। योजना के लाभ लेवे खातिर हर किसान के कम से कम 5 पौधा लगावे के पड़ी। एक पौधा के कीमत 85 रुपया निर्धारित कैल गई बा, लेकिन सरकार एक पौधा के खरीद पर 63.75 रुपया अनुदान दी, जौना के चलते बहुत कम कीमत पर किसान के पौधा उपलब्ध हो जाई। अगर जिला में नारियल के खेती होई तो उपभोक्ता के कम कीमत पर नारियल उपलब्ध होई आ दूसरा राज्य पर निर्भरता भी कम होई।
1: कम हो जाए,
0: एगो पौधा कई साल तक उत्पादन देला, साले साल अलग अलग पौधा माने एगो पौधा के काट के दूसरा पौधा लगावे के ना पड़े कि रवा दिक्कत हुई। श्रोता भाई बहन, अगर फायदा नज़र आई तो किसान नारियल के खेती बड़ा पैमाना पर भी कर सकेलन। रोहतास जिला के कई गो ऐसन क्षेत्र बा जहाँ के माटी आ जलवायु नारियल उत्पादन के अनुकूल मानल गई बा।
1: देखी दिनू भाई, तो बड़ा बढ़िया खबर बा। डाभ के जन कहतन इतना मांग भइल बा कि आज से 7-8 साल पहले तक आदमी का नाम ना जानत
0: रहन, लेकिन आज कोई के भी जे बाजार में गई बा आवता तो देखा था नहीं कि हाथ में कोई के एगो हाथ में एगो डाब, कोई के हाथ में 2 डाब। आ स्वास्थ्य खातिर एकर बड़ा महत्व बा,
1: बहुत महत्व बाटे, बहुत सारा पोषक तत्व ओकरा में मिलेला
0: जी।
1: एक के चलते माने जे मरीज बा ओकरो के दिहल जाता, जे स्वस्थ बा ओहो मतलब पियता।
0: गर्मी के दिन में तो एकर मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाता, तो एकरा तरफ अगर किसान आकर्षित होकस तो बढ़िया लाभ उठा सकेलन।
1: एगो और खबर बा दिनू भाई,
0: बता दी कि
1: भभुआ जिला के किसान भाई परंपरागत खेती के साथ अब बीज मसाला के खेती करिहन।
0: अच्छा,
1: जिला के राज्य बीज मसाला योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में 50 हेक्टेयर में धनिया
0: अच्छा।
1: और मेथी के बीज के खेती करे के लक्ष्य मिलल बा।
0: अच्छा,
1: योजना के मुख्य उद्देश्य बाटे किसान लोग के बीज मसाला के उत्पाद उत्पादकता के बढ़ा के किसान लोग के आय में वृद्धि कैल।

0: योजना के लाभ जौन बाटे रैयत किसान के अलावा और रैयतन के भी मिल रहा बाटे।
1: देखिए कितना बढ़िया बात बा, मसाला उद्योग के भी खातिर।
0: हाँ माने सरकार चाहत कि देखिए किसान भाई लोग के बढ़ावे खातिर मतलब कई गो तरह के खेती कर सकरा पर लाभ मिलता।
1: महंगी के देखते हुए हाँ, जितने किसान के खेती करियन उतना हमनी के कम कीमत पर उपलब्ध होई।
0: हाँ हाँ
1: तो अब हमनी के वार्ता के समय बा, वार्ता सुन
0: लेल जाओ। हाँ हाँ सुनल जाओ, हमनी के अमित कुमार सिंह से सुनल जाई कि धान के जीरो टीलेज से धान के खेती कैसे करे के चाहिए।
1: हाँ सुनल जाओ।
2: बिहार राज्य में धान की खेती मुख्यतः खरीफ मौसम में करीब 34 लाख हेक्टेयर में की जाती है। इसका 25% ऊपरी भाग में, 25% मध्यम जमीन में, 40% निचली जमीन में और 10% गहरे पानी वाले क्षेत्र में की जाती है। विगत के वर्षों में वर्षा कम होने से या आवश्यकता अनुसार समय पर वर्षा नहीं होने पर धान की रोपाई समय से नहीं हो पाती है। साथ ही कृषि मजदूरों के पलायन होने से भी किसानों को धान की रोपाई में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। वस्तुतः किसान धान की खेती करना धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। ऐसे स्थिति में वैज्ञानिकों के द्वारा किसानों को जीरो टीलेज द्वारा धान की बुआई करने की सलाह दी जाती है। जीरो टीलेज द्वारा धान की बुआई संसाधन संरक्षित खेती की एक तकनीक है जिसमें 20% जल तथा श्रम की बचत होती है। जीरो टीलेज द्वारा धान की बुआई की सफलता के लिए सही विधि एवं सही समय से बुआई करनी चाहिए। इस तकनीक से मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार के साथ साथ उत्पादन लागत घटाते हुए किसान अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जीरो टीलेज की जरूरत क्यों पड़ी? पारंपरिक तौर पर धान की बुआई हेतु खेत की तैयारी के लिए 5-6 बार जुताई की जरूरत होती है, परंतु इसका कोई विशेष लाभ नहीं है, बल्कि इसकी वजह से बुआई में देरी हो जाती है। इससे पौधे की संख्या में कमी, कम उपज, उत्पादन लागत में वृद्धि तथा कभी कभी बहुत कम लाभ प्राप्त होता है। बिहार में यह समस्या ज़्यादा गंभीर है। विलंब से बुआई 10 अगस्त के बाद के कारण अच्छी खासी लागत के बावजूद उपज 40-50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रतिदिन की कमी दर्ज की गई है। खेत की तैयारी और बुआई की परंपरागत पद्धति के विपरीत जीरो टीलेज तकनीक अपनाने से न केवल बुआई के समय में 15-20 दिन की बचत संभव है, बल्कि उत्पादकता का उच्च स्तर बरकरार रखते हुए खेती की तैयारी पर आने वाले लागत पूर्णतः बचाई जा सकती है। अतः किसानों को चाहिए कि वे जीरो टीलेज मशीन से धान की बुआई समय पर करें। अनुभवों से ज्ञात हुआ है कि लगभग सभी प्रकार की मिट्टियों में जीरो टीलेज से धान की बुआई लाभदायक है। जीरो टीलेज मशीन आमतौर पर प्रयोग में लाई जाने वाली सीड ड्रिल जैसी है। अंतर सिर्फ इतना है कि सामान्य सीड ड्रिल में लगने वाले चौड़े फालों की जगह इसमें पतले फाल लगे होते हैं जो कि बिना जूते हुए खेत में कूड बनाते हैं जिसमें धान के बीज एवं उर्वरक साथ साथ गिरते रहते हैं। जीरो टील ड्रिल को 35 से 45 हॉर्स पावर वाले ट्रैक्टर से आसानी से चलाया जा सकता है। 9 कतार वाली जीरो टील ड्रिल मशीन से 1 घंटे में 1 एकड़ खेत की बुआई की जा सकती है। इसके लिए जो भूमि की जरूरत है, धान की जीरो टीलेज से बुआई करने हेतु केवल मध्यम एवं निचली जमीन जहां पर सिंचाई का सुविधा उपलब्ध हो चुनाव करना चाहिए। खेत की तैयारी के लिए खेत में नमी की कमी रहने पर एक हल्की सिंचाई दे देना चाहिए। यदि वर्षा हो जाती है तो इसकी जरूरत नहीं है। जीरो टीलेज द्वारा धान की बुआई हेतु लेजर लेबलर द्वारा भूमि का समतलीकरण करना आवश्यक है। यह बीज की समान गहराई, फसल के अच्छे जमाव, विकास, खरपतवार नियंत्रण एवं जल के एक समान वितरण में सहायक होता है। इसमें किस्मों का जो चुनाव है वो अल्प अवधि एवं मध्यम अवधि वाले धान की किस्में जैसे सहभागी, अभिषेक, साबौर अर्धजल, MTU 1010, राजेंद्र श्वेता, राजेंद्र भगवती, पूसा बासमती, पंत शंकर धान 1, PHB 71, एराइज 64-44, 61-11 जो 115-30 दिन से लेकर 125-30 दिनों में तैयार हो जाती है। इन सभी किस्मों का चुनाव करना चाहिए। बुआई का जो समय है 15 जून से 10 जुलाई तक बुआई कर देने से पैदावार अच्छी होती है। इसके लिए जो बीज दर की आवश्यकता है वो सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने पर मध्यम प्रकार के दानों के लिए बीज दर 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा बड़े दानों के लिए 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। बुआई का जो तरीका है, खेत की तैयारी और बुआई की परंपरागत पद्धति के विपरीत जीरो टीलेज तकनीक अपनाने से

न केवल बुआई के समय में 15-20 दिन की बचत संभव है, बल्कि उत्पादकता का उच्च स्तर बरकरार रखते हुए खेती की तैयारी पर आने वाली लागत पूर्णतः बचाई जा सकती है। अतः किसानों को चाहिए कि वे जीरो टिलेज मशीन से धान की बुआई समय पर करें। अनुभवों से ज्ञात होता है कि लगभग सभी प्रकार की मिट्टियों में जीरो टिलेज से धान की बुआई लाभदायक है। इसके लिए खाद की मात्रा 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस एवं 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर दिया जाता है। नत्रजन की आधी मात्रा एवं स्फुर तथा पोटास की पूरी मात्रा बुआई के समय एवं नत्रजन की चौथाई मात्रा 2 बार बुआई के 20 दिनों एवं 40 दिनों के सिंचाई देकर उपरिवेशन करना चाहिए। यदि वर्षा हो जाए तो सिंचाई की जरूरत नहीं है। खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई के पहले हल्की सिंचाई कर खेत की जुताई करने से खरपतवार के नियंत्रण बहुत ही हद तक हो जाती है। जीरो टिलेज से बुआई करने के 2 दिनों के अंदर 400 ml पेंडा मेथिलीन को 200 लीटर पानी में घोलकर 1 एकड़ खेत में छिड़काव करने से 20 दिनों तक कोई

0: नहीं है। खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई के पहले हल्की सिंचाई कर खेत की जुताई करने से खरपतवार के नियंत्रण बहुत ही हद तक हो जाती है। जीरो टीलेज से बुआई करने के 2 दिनों के अंदर 400 ml पेंडा मेथिलिन को 200 लीटर पानी में घोलकर 1 एकड़ खेत में छिड़काव करने से 20 दिनों तक कोई खरपतवार नहीं जमता है। यह एक प्री इमर्जेंस वीडिसाइड के रूप में छिड़का जाता है जो खरपतवार को जमने के पहले मार देता है। 20 दिनों तक इसका असर रहता है। धान में उगे हुए खरपतवारों के समुचित नियंत्रण हेतु नोमिनी गोल्ड बिस्पायरी बैक सोडियम 10 SC का होता है 100 ml दवा तथा 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। नोमिनी गोल्ड का स्प्रे करते समय खरपतवारों की अवस्था 2 से 5 पत्ती के बीच होनी चाहिए तथा खेत में नमी रहनी चाहिए। यदि खेत में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार अथवा मोथा प्रजाति की अधिकता हो तो 100 ml नोमिनी गोल्ड के साथ 250 ग्राम 2,4-D दवा अथवा 8 ग्राम पाईमिक्स मेट सल्फ्यूरान मिथाइल प्लस क्लोरोम्यूरान दवा मिलाकर स्प्रे करने से खरपतवारों का पुनः नियंत्रण हो जाता है। खरपतवारों के पुनः अंकुरण से बचने के लिए नोमिनी गोल्ड के स्प्रे के 24 से 48 घंटे पश्चात धान के खेत में पानी भर देना चाहिए। इन खरपतवार नाशकों का असर प्रयोग के 20-25 दिन तक दिखाई देता है। इस तरह बुआई के 40 से 45 दिन में धान की फसल में अच्छी बढ़ोतरी हो जाती है। फेरस सल्फेट का भी छिड़काव करते हैं हम लोग। जीरो टीले से बुआई वाली खेत में बीज जमने के 10 दिन के बाद कभी कभी पत्ते पीले पड़ने लगते हैं एवं आगे चल के उजला हो जाता है। पौधे सूख जाते हैं। यह लोहा जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी से होता है। इसे आयरन क्लोरोसिस कहते हैं। खेत में नमी की कमी से लोहा तत्व की उपलब्धता कम हो जाता है, अतः खेत में सिंचाई जल्द कर दें एवं फेरस सल्फेट का 1% घोल नींबू के रस के साथ मिलाकर छिड़काव करने से यह ठीक हो जाता है। जल के जो प्रबंधन करते हैं हम लोग, जीरो टीलेज से धान की बुआई करने के पहले यदि वर्षा नहीं हुई हो तो खेत में 1 सिंचाई दे देना जरूरी होता है, क्योंकि यह खरपतवार को रोकने में मदद करता है, साथ ही बीज को समरूप जमने में भी मदद करता है। ध्यान देना है कि खेत में नमी की कमी न हो एवं दरार न पड़ने पाए। खरपतवार नाशक दवा देने के समय खेत में नमी होनी चाहिए। फसल की जो कटाई एवं भंडारण करने की बात है, धान की बाली जब सुनहला रंग का हो जाए एवं बाली झुक जाए तो समझा जाता है कि धान के पौधे परिपक्वता अवस्था में आ गया है। उसकी कटनी के बाद दाना झाड़कर अच्छी तरह से सुखाकर भंडारण करना चाहिए। सामान्यतः खरीफ में रोपाई की गई धान जितना समय लेता है उसे 8 से 10 दिन पहले सीधी धान की बुआई वाला पौधा पककर तैयार हो जाता है। जीरो टीलेज द्वारा धान की बुआई से जो लाभ होगा, जीरो टीलेज से धान की बुआई करने पर खेत की जुताई पर होने वाला खर्च कम हो जाता है। बुआई का कार्य समय से हो जाता है तथा मृदा का क्षरण भी रुक जाता है, जिसके फलस्वरूप खेत की उपजाऊ मिट्टी की ऊपरी परत खेत में ही रह जाता है जो पौधे के विकास में सहायक सिद्ध होता है।
1: तो देखिए कितना बढ़िया जानकारी मिलल हमनी के कि जीरो टीलेज से धान की खेती कैसे
2: करे के चाहिए।
1: तो इतना बढ़िया जानकारी मिलल, एकरा खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। आ ऑप्शन दे सुन लेवे
2: के तब खेत बाजार में जाइल जी अपना
1: जी।

ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं, जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व

0: होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतरवर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
1: सरकार द्वारा ऑयल पाम के पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है।
0: कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक है। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं।
2: ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है।
3: मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा जमीन में नमी लेते हैं और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है।
4: ऑयल पाम का खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं, वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना कर देते हैं, उन्हीं रेट पर कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के खट्टा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं।
5: ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है, साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है।
0: सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं।

0: देखी अभी हमनी का संदेश सुनी जा आ झुनी बहन अब पुनः चलल जाओ हमनी के अपना खेत में।
1: जी जी
0: आ देखी अभी समय बा बरसाती अरहर के।
1: हाँ खेती करे के।
0: जी एकरा अलावा दलहन में कि और भी जोन बा वो खेती कल जला इस समय दलहन में कुल्थी बा उरद बा मूंग बा ओकरो खेती कल जला लेकिन यह समय अरहर के खेती बहुत जरूरी बा। आज बात कल जाओ अरहर के। अरहर के तुअर दाल भी कहल जला।
1: हाँ
0: एकरा में खनिज कार्बोहाइड्रेट आयरन कैल्शियम
1: बहुत सारा
0: आदि तत्व पर्याप्त मात्रा में पावल जला। ई दाल सुगम पचे में भी होला आ भारत में लगभग हर घर में एकर उपयोग होला।
1: आ देखी एकरा खातिर जौन जमीन बाटे
0: जी जी
1: दोमट चाहे हल्का काली मिट्टी जौन बाटे तो एकरा खातिर सबसे बढ़िया होला। जैसे कि कहे कि खेत में ज्यादा टाइम तक पानी ना लागेला
0: जी।
1: आ एकर बुवाई करे के सबसे बढ़िया समय त जैसन बतौने है कि जौन चल रहल बा जून से जुलाई तक
0: जी।
1: आ देखी एक बीघा खेत खातिर दिनू भाई 2 से 3 किलो बीज जौन बाटे काफी होखेला।
0: अच्छा अच्छा
1: आ एकर बोवाई जौन बा कतार से कतार के दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर आ पौधा से पौधा के दूरी जौन बा 20 से 25 सेंटीमीटर रखे के चाही
0: जी।
1: वही सही रहे
0: पौधा के बढ़े में आसानी
1: होके फैले हुए। हाँ आ देखी गोबर के सड़ल खाद डाले के चाहिए एकरा में आ जरूरत के हिसाब से कृषि विशेषज्ञ से सलाह लेके DAP चाहे पोटास

0: इसके इस्तेमाल करे के चाहिए, लेकिन सलाह लेके कि कितना डाली
1: जी
0: प्रति हेक्टेयर पर
1: जी।
0: आ देखी एकरा अलावे अगर खर पतवार खेत में उग जाए तो समय समय पर निकाई गुड़ाई करत रही, भरसक प्रयास करें कि कुदारी फरसा से कल ही आ न होके तब रासायनिक दवा के प्रयोग करें। आ देखी जब दाना पक जाए तब फसल के काट के सुखा के आ तब ओकरा के मतलब दवाई करके हाँ तब
1: देखी ये 180 से 210 दिन में लगभग तैयार
0: हो जाला। हाँ
1: आ प्रति क्विंटल लगभग अगर देखल जाओ तो 7 से 10 क्विंटल तक उपज प्राप्त
0: होला। हाँ
1: जल्दी पाके वाला किस्म पूसा 16 बा जवन की 120 दिन में ही तैयार हो जाला। पौधा जब 25-30 दिन के हो जाओ तो ओकरा में जब शाखा फूटे लगे पौधा में वो समय आवश्यकता अनुसार 20 से 25 किलो यूरिया प्रति एकड़ के दर से इस्तेमाल जरूर करे के चाहिए।
0: हाँ।
1: नीमन उपज खातिर प्रति हेक्टेयर 10 से 15 किलो यूरिया 40 से 50 किलो फास्फोरस आ 20 किलो सल्फर के आवश्यकता जरूर होला। श्रोता भाई बहन
0: देखिए इस तरीका से अगर किसान भाई लोग खेती करस तो उनका अच्छा मुनाफा हो सके,
1: एकदम बढ़िया हो सकेला। अब तनी कुछ सलाह।
0: हाँ हाँ दिनू भाई अब तनी बरसात के मौसम में बाटे पशुअन के देखभाल कर बहुत जरूरी हो जाला।
1: जरूरी बा
0: देखिए यह समय गीलापन और गंदगी से कई तरह के बीमारी फैल सकेला। आ पशु के हमेशा साफ सुथरा सूखा जगह पर बांधे, गौशाला के रोज साफ करी आ पानी ना जमा होके दही
1: कहीं मत।
0: हाँ
1: आवत नहीं तो एगो भैंस के देखनी है
0: कि
1: भैंस के मालिक वो भैंस के बहरी बांध दिले बणन आ ओकर पैर जौन बा वो आधा पैर ओकर हाँच में लेसराइल बा। अब सोची कि उहो तो जीव है, वो दिन भर भी खड़ा रह जाए तो ओकरा बैठे के ना मिली तो ओकरा शरीर में आराम कैसे हुई।
0: अरे ओकरा कई गो बीमारी ना
1: कई गो बीमारी भी हो जाए तो जे भी होके ऐसन करत होके ओकरा दिमाग में रखे के चाहिए कि ना उहो जीव है, ओकरा के भी समय से बाहर निकाली या समय से अंदर कर दही, सूखा साफ सुथरा जगह पर बांधी,
0: समय पर टीकाकरण भी करवावत।
1: हाँ हाँ जरूरी बा, छोट बच्चा अगर होके पशु के तो ओकरा के टीका दिवा दही ताकि आगे वाला आवे वाला परेशानी से बचल जा सके।
0: देखिए अब तनी लगे हाँ चल जाओ अपना किसी कृषि सलाह है किसान भाई लोग के सलाह पर
1: तो का सलाह बा तनी बताई गाय खातिर का सलाह बा।
0: तो देखिए गाय खातिर बाटे कि महीना के अंत में भैंस के जौन ब्यांत शुरू हो जाला जैसे लास्ट चल रहा कर
1: जी
0: तो बियाए वाला पशु के विशेष ध्यान रखी।
1: अच्छा
0: गला घोंटू और लंगड़ी रोग से बचाव खातिर जून माह में टीका ना लगा होके तो मतलब जुलाई में अवश्य लगवा दी। देखी आंधी तेज हवा वर्षा फसल के नुकसान जन बाटे फल फूल झड़े के
1: अच्छा
0: कीट रोग प्रकोप के सब्जी या बागवानी के फसल के क्षति पहुंचा सकेला, ऐसे पशुअन पर भी तनाव बढ़ेला जौनी मौसम चल रहा है।
1: ए घड़ी मकई के समय चल रहा बा।
0: हाँ,
1: मकई खेत में बा, मकई जे लगौले बा ओकरा का करे के चाही।
0: हाँ, तो देखी दिनू भाई मकई जे लगौले बा खरीफ मक्का के बुआई आसमान साफ रहला पर ही शीघ्र संपन्न कर दही।
1: अच्छा
0: खेत के जोताई में 10 से 15 टन गोबर के सड़ल खाद प्रति हेक्टेयर के दर से व्यवहार करी और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलो नेत्रजन 60 किलो स्फूर और 50 किलो पोटास के व्यवहार करी।
1: अच्छा
0: एकर अनुशंसित जन बाटे मक्का के किस्म जैसे सुआन देवकी शक्तिमान 1 शक्तिमान 2 राजेंद्र शंकर मक्का 3 और गंगा 11।
1: देखी कितना बढ़िया बात बतौनी।
0: हाँ,
1: वही तरह
0: हाँ,
1: बहुत
0: अरहर के बा जैसे अरहर के हो गई
1: जी
0: चना के तो 49 जमीन में अरहर के बुआई आसमान साफ रहला पर ही करी।
1: अच्छा
0: बिहार अखर जन मुख्य बाटे किस्म ओकर
1: जी जी
0: बहार पूसा 9 राजेंद्र अरहर 1 आ राजेंद्र अरहर 2 यह किस्म के बुआई 60 से 20 सेंटीमीटर के दूरी पर करी आ अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन 45 किलोग्राम स्फूर 20 किलोग्राम पोटास आ 20 किलोग्राम गंधक के प्रयोग करी। आ अरहर खातिर अनुशंसित बीज जन बाटे 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रहे के चाहिए।
1: आ जे धान के रोपनी करता ओकरा का विशेष ध्यान रखे।
0: हाँ तो देखी पिछला कुछ दिन में भइल वर्षा आ जल के लाभ उठाते हुए धान के सबौर दीप जन बाटे किस्म जैसे प्रभात शुष्क सम्राट सहभागी के बुआई 10 जुलाई तक कर दही।
1: अच्छा।
0: बुआई से पहले बीजन के कार्बेंडाजिम 2.0 ग्राम के प्रति किलोग्राम के बीज से उपचारित करी आ 10 से 15 दिन के नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई करत रही आ मध्यम अवधि वाला किस्म जैसे राजेंद्र नीलम राजेंद्र कस्तूरी आ राजेंद्र श्वेता के रोपाई जनबा कर सकिला आ धान के किस्म जनबाटे सबौर मोती।

0: धान सबर सोना आदि के सीधा बुआई भी कर सकीला।
1: तो देखिए अब चलत चलत तनी मौसम के भी हालचाल बता दही।
0: हाँ तो देखिए मौसम के बाटे कि अब काल के जन पूर्वानुमान बाटे जैसे हमने के जन पाँच दिन के मौसम के बताई ला जाए कि भारत मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 8 से 12 जुलाई के दौरान जिला में 1-2 स्थान पर चमक दमक गरज के साथ आंधी चली आ हल्का से मध्यम वर्षा के अनुमान बा। अधिकतम तापमान 32 से 34 सेंटीग्रेड आ न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहे के डिग्री संभावना बा। सापेक्षित आर्द्रता सुबह में 80 से 85% और दोपहर में 50 से 55% रहे के संभावना बाटे। आ पूर्वानुमान के अवधि में 15 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से दक्षिणी पूर्वीय हवा चले के संभावना
1: बा। तो देखी एक कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रही संतोष कुमार। अब घड़ी कह रहा बा कि कार्यक्रम के समय उरा चलल तो अब दिनु भाई के आज्ञा दही चले चले के बेरी सब श्रोता भाई बहन के राम राम आ झुनी बहन नमस्कार।
0: झुनी बहन के तरफ से भी सब श्रोता भाई बहन लोगन के प्रणाम आ दिनु भाई लोगों के नमस्कार।

अभी हमारे किसान भाई अपना प्रसारण सुन रहे थे, किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103.4 MHz पर। लीजिए सुनिए सांझ गीत कार्यक्रम में कुछ भोजपुरी फिल्म संगीत।

अभी आप हेमलता और साथियों को सुन रहे थे। गीतकार संगीतकार थे रविंद्र जैन। फिल्म थी नदिया के पार। बलमा बड़ा नादान, आइए सुनते हैं इस फिल्म में कल्पना पटवारी के साथ महेंद्र कपूर को।

0: सुन, सोचतानी की काहे ना आपन बिजनेस बढ़ाई।
1: तो रोकले के बा?
0: रोकले तो कोई नहीं खे, बाकी समझ में नहीं खे आवत की कैसे मदद मांगी।
1: हमरा से?
0: तोहरा से? तो बतावो।
1: आकाशवाणी बाना, हम सुनले बानी की आकाशवाणी के नेटवर्क देश भर में फैलल बा।
0: तो ओकरा से हमरा की का फायदा बा?
1: फायदा बा, जौना शहर में चाही विज्ञापन के माध्यम से ओही जगह पहुँच जाई।
0: तो इहो बता दा कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे होई?
1: बहुत आसान बा, हम बतावत बानी। नंबर लिखी 8700014242।
0: ओ 8700014242।
1: हाँ।
0: तो बहिने फोन लगावत बानी 8700014242 पर।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: और यह है कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति, फिल्म है ससुरा बड़ा पैसा वाला। गायक कलाकार हैं मनोज तिवारी और प्रिया भट्टाचार्या।

ससुरा बड़ा पैसा वाला फिल्म के इसी गीत के साथ ही सांझ गीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। 7:15 हुए हैं। प्रस्तुत है संध्याकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास।

गुड इवनिंग रोहतास, लेकर हाजिर है आपका रेडियो दोस्त संजय चतुर्वेदी। समाहरणालय कैमूर से प्राप्त सूचना के अनुसार जिला प्रशासन द्वारा जनता की समस्याओं के त्वरित निष्पादन और सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कैमूर जिले के सभी कार्यालयों में जन संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों में जिला मुख्यालय से लेकर सुदूर पंचायतों तक के अधिकारियों ने हिस्सा लिया और आम नागरिकों से सीधा संवाद किया गया। जिला पदाधिकारी महोदय के जनता दरबार में विभिन्न विभाग से संबंधित 36 आवेदन प्राप्त हुए, जिसका नियमानुसार त्वरित निष्पादन हेतु संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया। ऑनलाइन पोर्टल पर किए गए प्रविष्टि के अनुसार अब तक जिला मुख्यालय स्तर पर कुल 20 अधिकारियों ने 87 नागरिकों के साथ संवाद स्थापित किया है। जिले के कुल 11 प्रखंडों में 26 अधिकारियों की उपस्थिति रही, जहां 43 नागरिकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। थानों में आयोजित संवाद कार्यक्रमों में 10 अधिकारियों ने 53 नागरिकों के साथ संवाद किया। वहीं रोहतास जिला समाहरणालय से सूचना के अनुसार आज दिनांक 11/7/2026 को जिला पदाधिकारी रोहतास के द्वारा कार्यालय प्रकोष्ठ में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान कुल 15 आवेदन प्राप्त हुए, जिन पर संबंधित विभागों के अधिकारियों को जांच कर शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। वहीं विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आज दिनांक 11/7/2026 को रोहतास जिले में मिशन परिवार विकास अभियान एवं परिवार नियोजन सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ किया गया। समाहरणालय परिसर में जिलाधिकारी रोहतास द्वारा GNM स्कूल की छात्राओं एवं आशा कार्यकर्ताओं की जागरूकता प्रभात फेरी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उन्होंने कहा कि परिवार नियोजन का उद्देश्य केवल महिला बंध्याकरण या पुरुष नसबंदी नहीं, बल्कि अस्थायी गर्भ निरोधक साधनों के माध्यम से भी परिवार को योजनाबद्ध और स्वस्थ बनाना है। जिलाधिकारी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि समाज का हर बच्चा चाहे हुआ हो, एक भी बच्चा अनचाहा न हो। जिलाधिकारी ने बताया कि 11 से 31 जुलाई तक चलने वाले विशेष अभियान के दौरान जिले के सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों पर परिवार नियोजन की निःशुल्क सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस अवसर पर ADM, DPRO सहित अन्य प्रशासनिक पदाधिकारी उपस्थित थे। वहीं सदर अस्पताल सासाराम में सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव ने दीप प्रज्वलित कर परिवार नियोजन मेले का उद्घाटन किया तथा जिला स्तरीय जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली के माध्यम से छोटे परिवार, सुरक्षित मातृत्व, स्वस्थ अंतराल और समृद्ध परिवार का संदेश दिया गया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्रोताओं, आइए सुन लेते हैं एक नगमा।

मोहम्मद रफ़ी के साथ अभी आपने सुमन कल्याणपुर को सुना, और इसी के साथ ही संध्याकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास से संजय चतुर्वेदी को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: श्रोता, भी आप ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल और खेती गृहस्थी सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर। एक अंतराल के बाद प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: पशुपालक भाई बहन, अत्यधिक गर्मी में पशुओं के रखरखाव का कृपया ध्यान रखें।
5: पशुओं को लू से बचाने के लिए छायादार जगह पर रखें। पशु घर को ठंडा रखने के लिए जूट की टाट लटकाकर उसे गीला रखें। उन्हें दिन में 2 से 3 बार नहलाएं, 3 से 4 बार ठंडा और साफ पानी पीने को दें। खाने में अजोला घास, चोकर और जौ की मात्रा बढ़ा दें। चराने के लिए सुबह जल्दी और शाम को देर से भेजें। लू लगने पर नजदीकी पशु चिकित्सालय में संपर्क करें।
4: डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रबोधन कार्यक्रम का किया उद्घाटन, कहा लोकतंत्र में संविधान सर्वोपरि। प्रदेश में आज से वरिष्ठ नागरिकों के लिए घर बैठे भूमि प्लॉट और फ्लैट की निबंधन की प्रक्रिया शुरू। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए अब तक निर्दलीय समेत 4 प्रत्याशियों ने दाखिल किए पर्चे, भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा और जन सुराज के प्रशांत किशोर 13 जुलाई को करेंगे नामांकन। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान गोपालगंज, सिवान, सारण, सीतामढ़ी और पूर्णिया समेत 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि लोकतंत्र में मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन संविधान के प्रति प्रतिबद्धता और जन कल्याण सर्वोपरि होना चाहिए। श्री राधाकृष्णन गया जी के पिपाट परिसर में विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण शिविर सह प्रबोधन कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे।
1: इन अ डेमोक्रेसी वी मे अग्री।
2: लोकतंत्र में हमारे बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम सबको एक चीज पर हमेशा सहमत रहना चाहिए और वह है जनता तथा संविधान के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता। सदन में विचार भिन्न हो सकते हैं, लेकिन संविधान सदैव हमारा साझा मार्गदर्शक होना चाहिए। मैं राज्यसभा में प्रायः कहा करता हूं कि बहस, चर्चा और कभी कभी व्यवधान भी अंततः किसी निर्णय तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि निर्णय के बिना कोई भी राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता।
0: उपराष्ट्रपति ने कहा कि विकसित बिहार के बिना विकसित भारत का लक्ष्य साकार नहीं हो सकता है।
2: हमको चुनाव राजनीतिक दलों के आधार पर लड़ना होता है, यही लोकतंत्र है। यह दलों के आधार पर लड़ा जाता है, यह बात ठीक है, लेकिन जब चुनाव समाप्त हो जाते हैं तो हम सभी दलों के नेताओं का यह दायित्व बनता है कि हम मिल करके बिहार के विकास के लिए, बिहार की उन्नति के लिए कार्य करें। यही लोकतंत्र की मूल भावना है। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक बिहार विकसित प्रदेश बने।
0: प्रबोधन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने कहा कि जन सेवा को प्रभावी बनाने के लिए जन प्रतिनिधियों को संसदीय और विधायी कार्यों के हरेक पहलू का प्रशिक्षण देने का फैसला स्वागत योग्य है।
3: बिहार विधानसभा के माननीय सदस्यों के लिए आयोजित इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम के उद्घाटन सत्र में भाग लेकर बेहद खुश। संयुक्त रूप से किया गया ये कार्यक्रम सदस्यों के संसदीय ज्ञान, न्यायिक कौशल, लोकतांत्रिक जवाबदारी और अधिक मजबूत बनाने की ओर एक जरूरी पहल है।
0: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सभी विधायकों से अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार करने की अपील की।
4: बिहार में जो विधायी कार्य हो उसमें माननीय विधायकों की सहभागी कैसे हो, इसकी चिंता के लिए 2 दिवसीय बैठक बुलाएंगे और 2 दिन लोगों को सीखने का ही कार्यक्रम करना है। अभी तक माननीय मंत्री, माननीय विधायक, हम लोग दूसरे को प्रशिक्षण देने का काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर कैसे विधायी कार्य में आप जुड़ सकते हैं। और महामहिम उपराष्ट्रपति ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया और इससे ज्यादा गंभीर बात नहीं हो सकती है।

0: बिहार के विकास में आपका एक एक योगदान मिले, ये पूरा विधानसभा चाहता है।
1: विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि यह प्रबोधन कार्यक्रम देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को और मजबूती प्रदान करेगा।
2: इसलिए जनप्रतिनिधियों का निरंतर प्रशिक्षण लोकतंत्र की आवश्यकता है, औपचारिकता नहीं। यह प्रबोधन कार्यक्रम संसदीय नियमों, प्रश्नकाल, शून्यकाल, विधेयकों, समितियों, वित्तीय नियंत्रण, संसदीय शिष्टाचार और जनहित के मुद्दों पर सार्थक विमर्श का अवसर प्रदान करेगा।
1: समारोह को उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने भी संबोधित किया। दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम का उद्देश्य विधायकों को संसदीय कार्यप्रणाली और विधानसभा की नियमावलियों से परिचित कराना है। प्रदेश में आज से 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों के लिए घर बैठे भूमि, प्लॉट और फ्लैट के निबंधन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वैशाली जिला मुख्यालय हाजीपुर स्थित जिला निबंधन कार्यालय में आयोजित समारोह से इस सुविधा का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव के आग्रह पर यह सेवा 75 वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों को भी मिलेगी।
0: सारी सुविधा आपको घर पे मिले, पूरी सरकार की ये सोच है कि निबंधन का काम जो भी 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोग हैं उनके घरों पर पहुंचकर मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट हमारा पहुंचे और आपको लाभ वहां मिले। मुख्यमंत्री विजेंद्र बाबू ने आग्रह किया है कि इसको 80 से 75 कर दीजिए, तो मैं जरूर ये विश्वास दिलाता हूं बिहार के लोगों को कि जो 75 वर्ष से अधिक उम्र के लोग हैं सबका रजिस्ट्रेशन उनके घर पर हमारा मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट पहुंचेगा और आपके घर पे ही रजिस्ट्रेशन करेगा।
1: इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव तथा मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग के मंत्री मदन सहनी भी मौजूद थे। हमारे संवाददाता ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत पेपरलेस निबंधन, सीओ द्वारा निबंधन संबंधी पूर्व जानकारी और जीआईएस तकनीक के माध्यम से स्थल निरीक्षण जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। यह व्यवस्था राज्य के सभी 145 निबंधन कार्यालयों में लागू होगी। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए अब तक 4 प्रत्याशियों ने अपने पर्चे दाखिल किए हैं। जिन उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है उनमें प्रोटेस्ट ब्लॉक इंडिया के प्रेम शंकर प्रसाद, प्रगतिशील जनता पार्टी के मनोरंजन कुमार श्रीवास्तव और निर्दलीय सिकंदर कुमार तथा मिथिलेश कुमार शामिल हैं। इस बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बताया कि पार्टी प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा 13 जुलाई को नामांकन दाखिल करेंगे।
3: जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के प्रत्याशी हैं नीरज कुमार सिन्हा जी, तो बांकीपुर के एक सामान्य कार्यकर्ता के नाते वो काम कर रहे हैं। 13 तारीख को अपना नामांकन करेंगे। पूर्व में जो प्रत्याशी थे उन्होंने पारिवारिक कारणों से असमर्थता व्यक्त किए चुनाव लड़ने से। उन्होंने कहा मैं पार्टी का कार्यकर्ता रहूंगा, चुनाव में भी पूरी पूरी मेरी सहभागिता रहेगी। तो केंद्रीय नेतृत्व में चुनाव समिति ने नीरज कुमार सिन्हा जी जो उसी विधानसभा के कार्यकर्ता।
1: जनसुराज उम्मीदवार प्रशांत किशोर 13 जुलाई को ही अपना नामांकन पर्चा भरेंगे। उपचुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 13 जुलाई निर्धारित है। 16 जुलाई तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। इस बीच एनडीए के उम्मीदवार बदले जाने पर कांग्रेस ने कहा है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की रिक्त हुई सीट पर पार्टी को सक्षम उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। राजद ने कहा है कि हार के डर से भाजपा ने प्रत्याशी बदला है। राजद ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्णय लेने की क्षमता पर भी सवाल उठाए हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: समाचारों में आपका फिर स्वागत है।

0: आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारतीय समुदाय से पटना साहिब स्थित तख्त श्री हरिमंदिर साहिब के दर्शन करने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने कहा कि हरिमंदिर साहिब में दशमेश गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और माता साहिब कौर जी के पवित्र श्री चोड़े साहिब मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि जब भी भारतीय मूल के लोग भारत आएं तो पटना साहिब जाकर इनका श्रद्धापूर्वक दर्शन अवश्य करें।
1: साथियों, मैं आपसे पवित्र जोड़े साहब की भी बात आज करना चाहता हूं। मेरे एक साथी हैं श्रीमान हरदीप पुरी जी। पुरी परिवार के पूर्वज श्री गुरु गोविंद सिंह जी के सेवादार थे। हरदीप पुरी जी ने मुझे यह बताया था, उनका परिवार सिख संगत को सौंपना चाहता था। फिर हमने एक समिति बनाई और हमने निर्णय लिया कि इन पवित्र जोड़े साहब को वहां ले जाया जाए जहां श्री गुरु गोविंद सिंह जी के चरण पहली बार पावन भूमि पर आए, यानी हमारे श्री पटना साहिब। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि जब भी भारत जाएं पटना साहिब में उनके दर्शन जरूर करें।
0: प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से राजधानी पटना समेत कई जिलों में देर रात से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान पटना के विक्रम में लगभग 100 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और सीवान जिले में अत्यधिक भारी बारिश, जबकि पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, शिवहर, सीतामढ़ी, कटिहार और पूर्णिया जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
2: 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम एवं उत्तर मध्य भाग के अधिकांश स्थानों में, उत्तर पूर्व भाग के अनेक स्थानों में, जबकि शेष भाग के कुछ स्थानों में वर्षा होने की संभावना है, तथा 24 घंटों के दौरान राज्य के गोपालगंज, मुजफ्फरपुर एवं सिवान जिलों में एक दो स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के अधिकांश जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात होने की संभावना है। राज्य के पूर्वी चंपारण, कटिहार, पूर्णिया, सारण, शिवहर, सीतामढ़ी एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: आज विश्व जनसंख्या दिवस है। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाने वाला यह दिन बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रदेश भर में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। बिहार ने लगातार दूसरे साल राष्ट्रीय जूनियर बालक रग्बी प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। हैदराबाद में आयोजित प्रतियोगिता के फाइनल में बिहार ने महाराष्ट्र को एकतरफा मुकाबले में 31-5 से पराजित किया। इससे पहले बिहार की बालिका टीम तीसरे स्थान पर रही थी। भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले की न्यायिक जांच जारी है। आरा में गठित न्यायिक जांच आयोग के समक्ष आज भरत तिवारी के माता पिता ने अपना बयान दर्ज कराया। वहीं उनके भाई चंदन तिवारी और भाभी सुमन देवी आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके तथा व्यक्तिगत कारणों से बाद में बयान दर्ज कराने के लिए समय मांगा। आयोग ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। बांका के अमरपुर दोहरे हत्याकांड का मुख्य शूटर सचिन सिंह पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया है। उसे इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल मायागंज में भर्ती कराया गया है। अरवल जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 139 पर एक हाईवा ट्रक और ऑटो रिक्शा की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। बगहा की एक अदालत ने मानव तस्करी के एक मामले में पश्चिम बंगाल के 2 आरोपियों को दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर 13 जुलाई को सुनवाई होगी। कटिहार नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत गाछी टोला डहरिया चौक के पास से पुलिस ने 385 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। अररिया जिले के बथनाहा थाना क्षेत्र से पुलिस और एसटीएफ की टीम ने एक चारपहिया वाहन से 18 किलो गांजा के साथ एक तस्कर की गिरफ्तारी की है। बक्सर जिले के स्टेशन रोड स्थित एक होटल में पुलिस ने छापेमारी कर अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। स्वास्थ्य सेवाओं को आमजन तक सुलभ और प्रभावी बनाने की दिशा में राज्य स्तर पर जारी टेली कंसल्टेशन जिला रैंकिंग में औरंगाबाद जिले ने पहला स्थान प्राप्त किया है। लखीसराय में पर्यावरण संरक्षण

0: के उद्देश्य से शिवनगर वनरोपण अभियान का आज शुभारंभ किया गया। किशनगंज में बीएसएफ की हीरक जयंती के अवसर पर आयोजित 10 दिवसीय स्पंदन स्पोर्ट्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट फुटबॉल प्रतियोगिता संपन्न हो गई। फाइनल मुकाबले में पूर्णिया आदिवासी यूनाइटेड फुटबॉल क्लब की टीम विजेता बनी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रबोधन कार्यक्रम का किया उद्घाटन। कहा, लोकतंत्र में संविधान सर्वोपरि। प्रदेश में आज से वरिष्ठ नागरिकों के लिए घर बैठे भूमि प्लॉट और फ्लैट के निबंधन की प्रक्रिया शुरू। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए अब तक निर्दलीय समेत 4 प्रत्याशियों ने दाखिल किए पर्चे। भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा और जन सुराज के प्रशांत किशोर 13 जुलाई को करेंगे नामांकन। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान गोपालगंज सिवान सारण सीतामढ़ी और पूर्णिया समेत 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है सुपौल जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता रविशंकर चौधरी।
4: सुपौल जिले में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। जिले के अधिकांश हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। लगातार हो रही वर्षा से मौसम सुहावना बना हुआ है। बारिश के कारण खेतों में पर्याप्त नमी आ गई है। इधर पड़ोसी देश नेपाल में हो रही बारिश के कारण कोसी नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव जारी है। पिछले दिनों कोसी का जलस्तर 1,85,000 क्यूसेक तक पहुंच गया था, जो इस वर्ष अब तक का सर्वाधिक डिस्चार्ज है। ताजा अपडेट के अनुसार कोसी बराज से आज सुबह 10 बजे तक 1,07,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया। वहीं नेपाल के जल अधिग्रहण क्षेत्र बराह से 86,250 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। फिलहाल स्थिति सामान्य है। जल संसाधन विभाग की टीम लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के 91 में सुपौल जिले ने जून माह में राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने बताया कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के 91 में उपलब्धियों के आधार पर जिलों की रैंकिंग निर्धारित मापदंडों और कार्य निष्पादन के आंकड़ों के आधार पर की गई। इसमें सुपौल जिले ने 89.61 अंक प्राप्त कर राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जिला मुख्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता की अध्यक्षता राज्य के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल को बेमिसाल बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता से जो भी वादे किए थे, उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा किया है। समाहरणालय स्थित लहटन चौधरी सभागार में सुपौल सांसद दिलेश्वर कामैत की अध्यक्षता में जिला स्तरीय विद्युत समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सांसद ने विभिन्न विद्युत योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही जिले में विद्युत संरचना से जुड़े निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी और बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। सांसद ने सभी संबंधित अधिकारियों को विद्युत योजनाओं का गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन निर्धारित समय सीमा के भीतर करने का निर्देश दिया। जिले में निर्माणाधीन अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

0: के सचिव मोहम्मद सोहेल ने बीते दिन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। इस अवसर पर उन्होंने पौधारोपण भी किया, साथ ही संबंधित पदाधिकारियों को आवासीय विद्यालय परिसर में पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण कर हरित क्षेत्र विकसित करने का निर्देश दिया। आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए बीते दिनों जिले के विभिन्न पंचायतों में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित आवेदनों का निष्पादन किया गया तथा आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया गया। इधर जिलाधिकारी सावन कुमार और अपर समाहर्ता सचिदानंद सुमन ने जिले के 29 नव नियुक्त जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को अनुज्ञप्ति प्रदान की। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने सभी नव नियुक्त विक्रेताओं को सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और मानकों के अनुरूप पूर्ण पारदर्शिता, ईमानदारी तथा समयबद्ध तरीके से खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जन वितरण प्रणाली गरीब और जरूरतमंद परिवारों तक खाद्यान्न पहुंचाने की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है।
1: अभी आप सुन रहे थे सुपौल जिले की हलचल।
2: आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम सामयिक चर्चा। इसके तहत आप सुनेंगे अलनीनो के प्रभाव से निपटने के लिए कृषि और जलवायु को लेकर सुरक्षात्मक उपाय पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्व अपर महानिदेशक आनंद शर्मा और कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह। कार्यक्रम का
3: हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम हेलो मनपसंद। सूत्रधार ओम प्रकाश, प्रस्तुतकर्ता संतोष कुमार।

0: दोस्तों नमस्कार और स्नेह भरा अभिवादन। स्वागत है आप सबका आकाशवाणी सासाराम में। आप सुन रहे हैं अपना प्रिय रेडियो प्रोग्राम हेलो मन पसंद। और दोस्तों आज आपकी महफिल में बैठा है आपका अपना ओम प्रकाश। तो दोस्तों आइए एक बार फिर से एक और यादगार सफर। अगले कुछ पलों तक हम सुनेंगे सदाबहार हिंदी फिल्मों के वे मधुर नगमे जो दिल को सुकून देते हैं, यादों को ताज़ा करते हैं और ज़िंदगी के हर रंग को सुरों में पिरो देते हैं। तो आइए अपनी सारी व्यस्तताओं को कुछ देर के लिए विराम दीजिए, दिल की धड़कनों को संगीत की लय से जोड़िए और तैयार हो जाइए अपनी पसंद के शानदार गीतों का आनंद लेने के लिए। सुरों की महफिल सजी है दिलों का पैगाम लिए, हर गीत में छिपे हैं अनगिनत एहसास लिए। मुस्कुराइए, गुनगुनाइए और साथ निभाइए हमारा, क्योंकि संगीत ही है जो हर दिल को जोड़ता है प्यार से। तो आइए खूबसूरत धड़कन के साथ प्यार से जोड़ते हैं इस पहले कॉल को। हेलो मनपसंद।
1: मनपसंद सर नमस्ते।
0: जी नमस्ते।
1: गंगाधर सावनकर कुंडलवाड़ी नांदेड़ महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ सर।
0: गंगाधर जी महाराष्ट्र से बातचीत कर रहे हैं, हमें महाराष्ट्र खींच कर लाए आप, है ना?
1: जी जी सर।
0: और आपको बिहार। कैसे हैं गंगाधर जी?
1: बहुत बढ़िया हूँ सर।
0: चलिए घर परिवार सब ठीक ठाक है।
1: बारिश चल रहा है सर सासाराम में।
0: जी सासाराम में तो बारिश हो रही है और सबसे अच्छी बात है कि खेती जो रुकी हुई थी वो अब हल्की फुल्की तो जरूर चल पड़ी है और गर्मी से निजात भी यहाँ हम लोग पा लिए हैं। वहाँ की क्या स्थिति है ये बताइए।
1: अभी तो दो दिन से बारिश नहीं है, पहले चार दिन गिरा बारिश सर, बारिश नहीं है।
0: अच्छा अभी बारिश नहीं है, लेकिन कुछ मौसम में बदलाव है गर्मी के बाद? कुछ
1: आशंका है।
0: अच्छा अच्छा नहीं पानी आने की उम्मीद तो होनी चाहिए क्योंकि मौसम भी आजकल बारिश का ही है ना?
1: जी जी सर।
0: किस गाने को आप सुनवाना चाहते हैं अपने तमाम श्रोताओं को?
1: सर मेरा गांव मेरा देश का कुछ कहता है ये सावन, ये गाना सुना है सर?
0: बिल्कुल गंगाधर जी आपके साथ बैठकर हम भी सुनते हैं।
1: तो सर आलो आकाशवाणी ग्रुप के गौतम जी रावले, तुकाराम जाधव, भगवान सिंह जी, सुनील झा, दिलीप पावजा, राजेंद्र गंगवार जी और संजय कुमार घेराम जी और तनुश्री जो मुसरम को दिखाई रेडियो के बहुत शौकीन है, तनुश्री सातारा से।
0: जी तो आपके तमाम दोस्त

0: 8:15 से। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है FM 103.4 MHz पर। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं आर्किड बिजनेस कॉलेज राजेंद्र नगर और सगुना मोड़ पटना।
2: उड़ान उड़ान उड़ान कार्यक्रम के साथ एक बार फिर से राजेश आप सबों के बीच आ गया। थैंक यू, बहुत सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो रिस्पांस दिखाया है उड़ान कार्यक्रम में। ढेर सारे सवाल पूछे गए जो हम नंबर देते हैं 75208000। जी हाँ, 75208000 पर आपने BCA और BBA के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछे हैं अपने करियर के लिए। और मानो ऐसा लगता है राजेश हूँ आपका, राजेश को, कि हमारा ये उड़ान कार्यक्रम लाना आर्किड बिजनेस कॉलेज की तरफ से सफल हो रहा है इस साल भी। हम हर साल आते हैं अभी ही और आपको जानकारियां देते हैं। सवाल ये भी पूछे गए कि BCA और BBA करके आप क्या कर सकते हैं। आपने पूछा कि हम क्या कर सकते हैं, हाँ, तो जवाब मिला कि आप वहां से भी रोजगार ले सकते हैं और अगर जो आगे पढ़ना चाहें तो MBA और MCA भी कर सकते हैं। और इसी आरके बिजनेस कॉलेज जो इस कार्यक्रम को, जिनकी तरफ से हम लेकर आ रहे हैं, जो कि आर्य कुमार रोड राजेंद्र नगर और सगुना मोर पटना में है, उनका संस्थान है ABC कॉलेज ऑफ एडुकेशन। वहां से आप MCA और MBA भी कर सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, ढेर सारे सवाल आए जिसके जवाब दिए गए, मन गद गद हो गया। और ये जो नंबर है ना 25208000 7520800800, सचमुच अपनी प्रासंगिकता बना लिया। आप युवा साथियों की तरफ से फोन आए हमें भागलपुर से, सुपौल से, कटिहार से, बक्सर से, दरभंगा से, लहरिया सराय से, जी हाँ लहरिया सराय से, पटना से भी फोन कॉल्स आए, बहुत अच्छा लगा। और इसमें युवतियों, हाँ, छात्राओं, हाँ, के भी फोन कॉल आए, जो हमें और भी अच्छा लगा, जो एक उन्नत भविष्य है हमारे बिहार का ये दर्शाता है। बहरहाल BCA और BBA की पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है, आप कर सकते हैं। आज हमने बातचीत की है स्पेशली आप लोगों के लिए। आशीष जी आज नहीं होंगे, आज होंगे आर्किड बिजनेस कॉलेज के वैसे युवा और युवती जो BCA और BBA कर रहे हैं और फ्यूचर में एक बहुत बड़ी प्लानिंग लेकर बैठे हैं कि उन्हें करियर में ये मिल जाएगा और कितना कॉन्फिडेंट है। उनकी बातचीत जो हमारे से हुई, आपके राजेश से हुई, मैं आर्किड बिजनेस कॉलेज गया और उन लोगों से बात किया रैंडमली, इसने कि नहीं कि छाट लिया, नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, हमने रैंडमली बातचीत किया, अभी उसके अंश आपको हम सुनवाएंगे। फिलहाल एक बात बता दें, किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लीजिए लेकिन ये जरूर देखिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है उसका, फैकल्टीज कैसे हैं, ये सारी बातें उन लोगों ने बोली है अपने अपने बातचीत में। और कहाँ से एफिलिएशन है, एफिलिएशन जो परमानेंट है या टेम्पररी है। आर्किड बिजनेस कॉलेज जो है ना, ये स्थायी मान्यता प्राप्त है BCA और BBA के लिए पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से। 27 वर्षों से लगातार युवाओं के साथ काम कर रहा है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ये संदेश सुनिए।
3: मेरे कॉलेज की मान्यता समाप्त हो गई है।
4: क्या तुमने स्थायी मान्यता वाले कॉलेज में दाखिला नहीं लिया था?
3: स्थायी मान्यता का कौन सा कॉलेज है बिहार में?
4: आर्किड बिजनेस कॉलेज, जहाँ से BCA या BBA कोर्सेज कर सकती हो।
3: फिर तो आर्किड से ही BCA या BBA करना सेफ है।
5: आर्किड बिजनेस कॉलेज राजेंद्र नगर एवं सगुना मोड़ पटना। कॉल करें 7520800800, याद रखें 7520800800।
2: और अब बारी आती है कि हम आज जिन युवाओं से हमने बातचीत की है उनके बात को आप तक पहुंचाएं। अमन है, हाँ, अनुप्रिया है, खुशी है, अनुराग है, ढेर सारे लोग हैं जिनसे हमने बातचीत की। तो आइए शुरुआत करते हैं अमन से, फिर अनुप्रिया, फिर अनुराग और फिर खुशी। और अगर समय बचेगा तो और भी बहुत सारे लोग अपनी बात आपको इस उड़ान कार्यक्रम के माध्यम से, इस रेडियो के माध्यम से अंतिम युवा तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको निर्णय लेने में

0: आसानी हो। आपका नाम?
1: अमन कुमार।
0: कहाँ के रहने वाले हो?
1: लखीसराय।
0: क्या कर रहे हो आप?
1: मैं आर्केड बिजनेस कॉलेज से BCA कर रहा हूँ।
0: BCA ही क्यों कर रहे हो?
1: BCA क्योंकि अगर आज के टाइम पे देखा जाए तो कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जहाँ कंप्यूटर की जरूरत नहीं है, जहाँ पे IT फील्ड इंटरफेयर ना कर रहा हो। तो अगर आपको एक अच्छा जॉब चाहिए, अगर आपको इस चीज से प्रेम है, तो आप फिलहाल BCA कर सकते हैं आर्केड बिजनेस कॉलेज से।
0: आर्केड बिजनेस कॉलेज को कैसे चुना?
1: यहाँ से मेरे मामा ने BCA किया था और आज वो गुड़गांव में TCS में जॉब कर रहे हैं। तो ये चीज कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक जगह बनाती है कि अगर आप आर्केड से अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हो तो आप भी एक वेल प्लेस्ड हो सकते हो।
0: इस कोर्स को कर लेने के बाद अगर जो आप जॉब करना चाहते हैं तो आर्केड बिजनेस कॉलेज से भी कुछ एक्सपेक्टेशन होगा आपका, कुछ चाहत होगी आपकी, क्या?
1: मैं अगर बताऊं तो पिछले साल की बात है कि एक मृणाल पाठक जो हमारे सीनियर थे, उन्होंने TCS में जॉब लिया है, वो भी 8 लाख के पैकेज के साथ। तो कहीं ना कहीं ये बात तो बताती है कि आर्केड जॉब देती है। अब बच्चे में काबिलियत है कि नहीं, ये बच्चे पे डिपेंड करता है। तो अगर हम अपना पूरा टाइम अपने करियर को दें तो हम भी जॉब ले सकते हैं आर्केड बिजनेस कॉलेज से।
0: बहुत अच्छी बात कही अमन आपने कि अगर आप में काबिलियत है, आप ठीक से पढ़ेंगे तो आप खुद से नौकरी ले लेंगे। और आपने ये भी कहा कि आर्केड बिजनेस कॉलेज से पढ़ने के बाद नौकरी मिलती है। बहुत ही अच्छा टेम्परामेंट है आपका। एक बात अब हम आपसे कहना चाहेंगे, जो लोग सुन रहे हैं इस रेडियो प्रोग्राम को, पूरा बिहार सुन रहा है, उन युवा साथियों को थोड़ा मोटिवेट कीजिए, कुछ कहिए।
1: अगर आप इसलिए पढ़ाई कर रहे हो कि नौकरी मिल जाए तो फिर मत पढ़ो, मेरा यही कहना है। अगर पढ़ाई से प्रेम है, कर सकते हो, तो आके आर्केड बिजनेस में पढ़ो, क्योंकि आर्केड बिजनेस कॉलेज कहीं ना कहीं पहले दिन से ही ये सिखाता है कि इफ यू हैव द स्किल देन यू फिक्स्ड योर प्राइस।
0: अच्छा, एक बात बताइए, क्या आप शुरू से ही क्षेत्र में जाने वाले थे या कहीं और जाना चाहते थे और वहाँ नहीं हुआ जिसकी वजह से आप इधर आए?
1: मैंने भी JEE का तैयारी किया था, मुझसे नहीं हुआ, मैं अच्छे कॉलेज पे नहीं जा पाया। तो मैं उनके लिए बता दूं कि आर्केड बिजनेस कॉलेज आपके लिए बहुत अच्छी जगह है अगर आप अपने सपनों को उड़ान देना चाहते हो। तो
0: चलते चलते आर्केड बिजनेस कॉलेज के विषय में कुछ कहना चाहिएगा?
1: इस कॉलेज को 27 वर्षों का अनुभव है और इस कॉलेज को किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। बिहार का नंबर 1 कॉलेज है, पाटलिपुत्रा से परमानेंटली एफिलिएटेड है।
2: मेरे कॉलेज की मान्यता समाप्त हो गई है।
3: क्या तुमने स्थायी मान्यता वाले कॉलेज में दाखिला नहीं लिया था?
2: स्थायी मान्यता का कौन सा कॉलेज है बिहार में?
3: आर्केड बिजनेस कॉलेज, जहां से BCA या BBA कोर्सेज कर सकती हो।
2: फिर तो आर्केड से ही BCA या BBA करना सेफ है। आर्केड बिजनेस कॉलेज, राजेंद्र नगर एवं सगुना मोड़, पटना। कॉल करें 7520800800। याद रखें 7520800800।
0: उड़ान कार्यक्रम चल रहा है जिसमें हम बात कर रहे हैं BCA और BBA की। जी हाँ, BCA और BBA वो पढ़ाई है जिसको करके रोजगार मिलने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। आज हम कॉलेज की तरफ से या गार्जियन से या और किसी से, करियर काउंसलर से, किसी से बात नहीं कर रहे, बात कर रहे हैं आर्केड बिजनेस कॉलेज के स्टूडेंट से। वो क्या सोचते हैं, हाँ क्या करते हैं, क्या फ्यूचर है उनका, उन्होंने क्यों चुना इस कोर्स को, ये जानना चाहते हैं। और आप युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा ये, अगर आप BCA और BBA करना चाहते हैं तो आर्केड बिजनेस कॉलेज, जो 27 वर्षों से लगातार आप युवाओं के साथ BCA और BBA के लिए काम कर रहा है, उनसे आपको बात करनी चाहिए। नंबर है 7520800800, 7520800800। और अब बेगूसराय की खुशी रस्तोगी क्या कहती हैं, इनसे सुनते हैं।
4: माय नेम इज खुशी रस्तोगी। मेरे एक दोस्त आर्केड में पढ़ता था, उसी ने मेरे को रिकमेंड किया है आर्केड बिजनेस कॉलेज के लिए। यहाँ बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, बहुत अच्छा लगा हमको यहाँ पे आके, और यहाँ पे बहुत अच्छे, मतलब यहाँ के फैकल्टीज वगैरह बहुत अच्छे हैं। स्टूडेंट से यही कहना चाहेंगे कि आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। अगर आपको किसी और फील्ड में जाना है तो उस फील्ड में जाए, या फिर आपको BCA वगैरह या आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन फील्ड में आना है तो उसमें आए।
0: बिल्कुल बिल्कुल खुशी, टाइम वेस्ट तो कभी नहीं करना चाहिए। समय की बर्बादी अपनी बर्बादी है। आप पैसा फिर से कमा सकते हैं लेकिन गुजरा हुआ वक्त आपको फिर से वापस नहीं मिल सकता। अगर आपने एक बार गलत कोर्स का चुनाव कर लिया, गलत इंस्टीट्यूशन का चुनाव कर लिया, तो बहुत मुश्किल में पढ़ सकते हैं, सिर्फ वर्तमान में नहीं भविष्य में भी। इसीलिए BCA और BBA हम बार बार कहते हैं और सालों से इसी समय आते हैं उड़ान कार्यक्रम लेकर, और आप सबों को

0: मोटिवेट करते हैं। आर्केड बिजनेस कॉलेज की तरफ से ये कार्यक्रम लेकर आते हैं हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। आप डायल करके ज्यादा जानकारी ले सकते हैं, 7520800800 ये नंबर है, 7520800800। और अब आइए मिलते हैं।
1: मेरा नाम अनुराग कुमार है, मेरा घर सिवान हुआ, मैं यहाँ पटना आया था, मुझे आईटी फील्ड में ही काम करना था और उसी में जॉब करना था, इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं बीसीए कर लेता हूँ, बीसीए एक अच्छा कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में अच्छा ग्रेजुएशन का कोर्स है। फिर मैंने इसको ऑनलाइन रिव्यू पे चेक किया कि पटना में सबसे अच्छा बीसीए के लिए कौन सा है, ऑनलाइन पता चला कि आर्केड बिजनेस कॉलेज अच्छा है, बाकी दो तीन कॉलेजेस भी आए। मैंने सबका ऑफलाइन रिव्यू भी चेक किया कि ऑनलाइन सच नहीं हो सकता है, कुछ भी डाल देगा लोग। मैंने ऑफलाइन भी चेक किया कि क्या क्लासेस रेगुलर चलती हैं, क्या काम होता है यहाँ पे, मैंने वो सब पता किया। मेरा एक मित्र भी था इसमें और उसको भी भेज के पता किया, हॉस्टल्स में भी बाकी पता किया, तब पता चला कि नहीं, सही में क्लासेस रेगुलर होती हैं और यहाँ के बच्चों पे दबाव बनाया जाता है। क्योंकि आजकल के मैं बच्चों में देखता हूँ कि आजकल के जो भी बच्चे होते हैं वो उन पे दबाव नहीं बनाया जाए तो वो बस कोर्स करे, ख़त्म करे, निकल जाए, बस वो ख़त्म करने आते हैं। कि बच्चे अगर जैसे सप्ताह में 5 दिन तो रेगुलर क्लासेस होते हैं, कभी कभी शनिवार को भी क्लासेस हो जाते हैं, जैसे सोमवार से शुक्रवार तो क्लासेस होते ही हैं, शनिवार को कभी कभी क्लासेस हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या किया गया है कि बच्चों को अटेंडेंस बनाया गया कि 75% से नीचे नहीं जाना चाहिए, अगर उससे कम आ रहा है इसका मतलब कि बच्चों में कमी है। तो फिर उस एक हर महीने एक अटेंडेंस रिपोर्ट बनाया जाता है, वो रिपोर्ट पेरेंट्स ग्रुप में रहता है, पेरेंट्स ग्रुप जो कि बच्चों के ग्रुप से अलग होता है, उसमें कोई बच्चा नहीं रहता है, उसमें सिर्फ फैकल्टी मेंबर रहते हैं और पेरेंट्स रहते हैं। तो पेरेंट्स को डायरेक्ट पता चल जाता है कि मेरा बच्चा कॉलेज गया है कि नहीं गया है, तो इससे बच्चों पे दबाव बना रहता है कि हमेशा कॉलेज जाना है, कॉलेज में पढ़ाई करना है, कॉलेज ऐसा एनवायरमेंट देता है। ये हमारा कॉलेज सुंदर सा है, छोटा सा है, अच्छा सा है, इतना अच्छा है कि इसमें जो एनवायरमेंट वो बनता है, वो वातावरण बनता है पढ़ाई का, इससे बच्चों पे दबाव बनता है कि अगर मरने का मन नहीं भी करे, आगे सिर्फ बैठ भी जाओ तो सुन लेने से उतना ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि आपको जॉब मिल सकता।
0: अच्छा, कहा जाता है कि प्लेसमेंट में या जॉब के लिए ये 100% असिस्टेंस देते हैं, आप लोगों को क्या पता चला, क्या पता चला यहाँ जॉब की क्या संभावनाएं हैं?
1: जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि इस कॉलेज में आने के बाद आप अगर इनकी बातों को मान ले, अपना कुछ भी दिमाग नहीं लगाएं, सिर्फ इनकी बात मान ले, जो फैकल्टी मेंबर है, जो हमारी एचओडी मैम है, जो यहाँ के प्लेसमेंट सेल वाले हैं, सिर्फ उनकी बात मान ले, वो जो जो कह रहे हैं वो कर ले, सिर्फ उतना करने से आपको एक अच्छा जॉब मिल सकता है अच्छी कंपनी।
0: पूरा बिहार सुन रहा है इस कार्यक्रम को, आकाशवाणी के 6 रेडियो स्टेशन से हम पहुंच रहे हैं। आप हमें ये बताइए, बेगूसराय से आप पटना तो आ गए, लेकिन बहुत सारे लोग अभी घर पर बैठे हैं, सोच रहे हैं, उनको बताइए कि आर्केड बिजनेस कॉलेज कैसा है, क्या है, कौन सा कोर्स ज्यादा अच्छा रह सकता है।
1: आर्केड बिजनेस वो कॉलेज है जो हमें वोकेशनल कोर्स के माध्यम से अच्छे जगह पर जॉब दे सकता है। आर्केड बिजनेस वो कॉलेज है जो हमें पढ़ाई के साथ साथ अदर स्किल्स पे भी ध्यान देने के लिए काफी प्रेशर बनाता है। आर्केड बिजनेस कॉलेज हमारे एंटरटेनमेंट को भी ध्यान में रखते हुए अदर कल्चरल एक्टिविटीज या फिर अदर को करिकुलम एक्टिविटीज भी कराते रहती है।
0: बहुत खूब। और अब बारी आई अनुप्रिया की। अनुप्रिया,
2: मेरा नाम अनुप्रिया है, मैं आर्केड बिजनेस कॉलेज की छात्रा हूँ, बीसीए सेकंड ईयर में। मेरा घर नवादा डिस्ट्रिक्ट है, मेरे को बिहार में कॉलेज लेना था और मेरे को आईटी फील्ड में और टेक फील्ड में इंटरेस्ट था, तो मैंने सर्च किया और रिव्यूज देखा तो मेरे को पटना का बेस्ट कॉलेज आर्केड लगा और यहाँ रेगुलर क्लासेस होते हैं जो कि मेरे को वो सबसे बेस्ट लगा, इसलिए मैंने एडमिशन लिया।
0: आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद, अभिवादन कि आप उड़ान कार्यक्रम में आए और पूरे बिहार के युवा साथियों और उनके माता पिता तक सही बातें रखी। जी हाँ, बीसीए और बीबीए की पढ़ाई बहुत ही प्रोफेशनल है। उड़ान कार्यक्रम हर साल इसी समय हम आपके लिए लेकर आते हैं और इस बार भी लगातार लेकर आ रहे हैं, सुनना नहीं भूलिएगा। और जो अगर आपके पास कोई सवाल है ना, तो इस कार्यक्रम को हम जिनकी तरफ से लेकर आते हैं, आर्केड बिजनेस कॉलेज 27 वर्षों से बीसीए और बीबीए की पढ़ाई करवा रहे हैं और लोगों को उनके मुकाम तक पहुंचने में मदद कर रहे हैं। इनका नंबर है 7520800800, 7520800800।

0: इस नंबर पर फोन करें और बात करें। तब तक राजेश को दे इजाजत, नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे आर्किड बिजनेस कॉलेज राजेंद्र नगर और सगुना मोड़ पटना।
2: उड़ान, अभी आप सुन रहे थे यह प्रायोजित कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए हेलो मनपसंद कार्यक्रम का शेष भाग।
3: हेलो मनपसंद।
4: हेलो
3: जी, नमस्ते। मोनू केसरी जी मोहनिया से बोल रहे हैं। क्या करते हैं मोनू जी मोहनिया में?
4: सर किराना दुकान है, वही चलाते हैं।
3: वाह, क्या बढ़िया काम करते हैं। किराना दुकान भी है और आप रेडियो सुन सुन करके अपने ग्राहकों को भी सुनवाते हैं और आपका अपना भी मनोरंजन होता है, आपका काम भी हो जाता है ना? बड़ी अच्छी चीज है। आकाशवाणी सासाराम के कौन कौन से प्रोग्राम सुनते हैं?
4: सबसे हमको अच्छा यही लगता है, हेलो मनपसंद सुनते हैं ज्यादा।
3: अच्छा है,
4: कार्यक्रम है और सुनते हैं।
3: हेलो मनपसंद में आज कौन सा गीत और किस फिल्म का?
4: फिल्म का नाम है प्रेम रोग, गाने का बोल है भौरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार।
3: राज, खूबसूरत फिल्म है और ये गीत भी बहुत बढ़िया है। आपकी पसंद का ये गीत सुनवा रहे हैं हम अपने तमाम श्रोताओं को। लीजिए सुनिए।

0: हेलो मनपसंद
1: नमस्ते सर।
0: जी, नमस्ते। बताइए कौन सा आप बोल रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं?
1: हम आकाशी से निसार बोल रहे हैं।
0: आकाशी से निसार भाई बोल रहे हैं।
1: जी सर।
0: क्या करते हैं निसार भाई?
1: कॉम्पिटिटिव तैयारी करते हैं सर।
0: परीक्षा की तैयारी करते हैं?
1: जी।
0: किस लेवल की तैयारी करते हैं आप?
1: डिफरेंस
0: जी, तो आकाशी में रहकर ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं या कहीं ऑफलाइन भी करते हैं क्लास?
1: ऑनलाइन ही करते हैं सर, घर पे जो होता है थोड़ा मोड़।
0: जी, बिल्कुल निसार भाई, ऊपर वाले से दुआ है निसार भाई को जल्द से जल्द कामयाबी मिले। और निसार भाई बताइए, परिवार में कैसा चल रहा है?
1: जी सर, अपना बताइए सर। ठीक है ना। जी
0: बहुत बढ़िया है, और आप लोगों से जुड़कर तो और भी अच्छे हो जाते हैं ना निसार भाई। निसार भाई, अब ये आप बताइए कि किस फिल्म का कौन सा गीत आज हम लोग सुने? फिल्म
1: बजरंगी भाईजान।
0: है बजरंगी भाईजान।
1: जी सर, गाना का बोला भर दो झोली ए मोहम्मद।
0: भर दो झोली मेरे मोहम्मद। तो आइए निसार भाई, आपकी पसंद पर ये गीत।

0: हेलो मनपसंद
1: हेलो
0: जी, नमस्ते।
1: नमस्ते सर।
0: क्या हाल चाल है?
1: ठीक है सर, मैं नसीम अंसारी वाहिद राजस्थान। जी
0: नसीम अंसारी जी से हमारी मुलाकात हो रही है।
1: सर, वाहिद रिपोर्टर का नाम है।
0: जी अंसारी जी,
1: हम सर आपका सब प्रोग्राम सब सुनते हैं सर, जितना भी साप्ताहिक प्रोग्राम है ना
0: जी
1: वो करीब करीब सब सुनते हैं। और नमस्ते रोहतास भी, कृषि बाड़ी जो आता है, कृषि जगत का कार्यक्रम, वो भी बहुत ध्यान से सुनते हैं, बड़ा अच्छा लगता है हमको। मतलब कि नमस्ते रोहतास जैसे तो प्रोग्राम हम किसी भी रेडियो स्टेशन से नहीं सुने अभी तक।

0: हेलो मनपसंद
1: हेलो
0: जी, नमस्ते।
1: मनपसंद। नमस्ते
0: क्या हाल चाल है?
1: सर। ठीक
0: नसीम अंसारी जी से हमारी मुलाकात हो रही है।
1: है सर। वाहिद राजस्थान।
0: जी अंसारी जी, जी
1: नमस्ते रोहतास जी। कृषि बाड़ी जो आता है, कृषि जगत का कार्यक्रम, वो भी बहुत ताव से सुनते हैं। बड़ा अच्छा लगता है हमको। मतलब कि नमस्ते रोहतास जैसे तो प्रोग्राम हम किसी भी रेडियो स्टेशन से नहीं सुने अभी तक।
0: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे सारे प्रोग्राम सुनते हैं और आप सारे प्रोग्राम को सुनकर उसका विवेचना भी करते हैं और आपको अच्छा लगता है, ये जानकर बहुत खुशी हुई।
1: अच्छा लगता है। सुनेंगे भी। पत्र नहीं भेजते हैं लेकिन टेलीफोनिक फरमाइश में हमेशा कॉल लगाते हैं तो लग जाता है, तो बात हो जाता है। कभी कभी नहीं भी लगता है।
0: आपका प्रेम है कि आप हर बार ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं और लग जाता है तो बात करते हैं। तो इसी तरह से आप कोशिश करते रहिए और हम लोगों से जुड़े रहिए। हम भी कोशिश करते हैं कि हर बार हम अपने तमाम श्रोता दोस्तों का कॉल लें, उनका गीत लें, उनका नाम लें, उनके जगह का पता रेडियो में उसको प्रसारित करें, है ना? कोई समस्या आ गई नसीम भाई, तो हो सकता है कि किसी दिन रिकॉर्डिंग के बावजूद आपका गीत शामिल नहीं हो पाया, तो उसके लिए नाराज़ नहीं होना है ना?
1: नहीं, सब नाराज क्या होना।
0: तो नसीम भाई, अब तो किस गीत को और किस फिल्म का सुनना चाहते हैं?
1: आज फिल्म हमको सुनाइए। राजा और रंक फिल्म का गाना है, ओ खिड़की वाली कल फिर आना।
0: कल फिर आना। जी बिल्कुल नसीम भाई, हम अपने तमाम श्रोताओं के साथ आपको सुनवा रहे हैं राजा और रंक फिल्म का ये गीत।

0: हेलो मनपसंद,
1: हेलो मनपसंद, हम सुन रहे हैं, गाना सुनने की मन कर रहा है, भक्ति शंकर जी का।
0: पहले ये बताइए आप कहाँ से बोल रहे हैं और कौन सा आप बोल रहे हैं?
1: हम बोल रहे हैं भगवान।
0: आप भगवान बोल रहे हैं?
1: हाँ,
0: कहाँ से?
1: खखड़ा से।
0: खखड़ा से?
1: हाँ,
0: तो क्या करते हैं भगवान जी खखड़ा में?
1: क्या करते हैं, खूब घूमते हैं।
0: खूब घूमते हैं?
1: हाँ, मस्ती लेते हैं भगवान के लिए।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया आप करते हैं। आपके जैसा जीवन सबको मिले कि आप सिर्फ घूमते रहिए और खुश रहिए और मस्ती में रहिए, है ना?
1: मस्ती
0: और
1: रहते हैं भगवान का।
0: हाँ हाँ बिल्कुल, भगवान के सेवा में लगे रहिए और मस्ती में रहिए। मस्ती में रहना ही भगवान के तरफ से सेवा है। तो आप भगवान जी क्या सुनना चाहते हैं आज? किस फिल्म का गीत हम आपको सुनवाएं खखड़ा में? किस
1: भोलेनाथ का
0: फिल्म का? अच्छा अच्छा चलिए हम आपको सुनवा रहे हैं भोलेनाथ की शान में ये गीत।

0: हेलो मनपसंद
1: नमस्कार सर।
0: जी, नमस्कार। कौन साहब बोल रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं?
1: नगर से गिरेंद्र सिंह।
0: क्या बात है गिरेंद्र जी, बहुत बहुत प्रणाम आपको।
1: जी प्रणाम आपको दिया सर।
0: आप तो हमारे नियमित श्रोता हैं, आपके पत्र भी हमारे पास आते हैं और हम पत्रों के साथ आपसे मुखातिब भी हुआ करते हैं, है ना?
1: हाँ सर, आप ओम प्रकाश जी है ना?
0: जी जी बिल्कुल पकड़े, आपकी सेवा करने वाले आज हम ओम प्रकाश ही हैं। गिरेंद्र जी, क्या हालचाल है, क्या करते हैं नबी नगर में आप अभी?
1: किसी किसानी काम करते हैं, अभी बच्चा के अभाव में अभी काम शुरू हो गया।
0: जी जी, हर जगह लगभग भारत में खेती किसानी का कार्य अब लगभग शुरू ही हो गया है, तो आज किस फिल्म का और कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: आज सुनेंगे सर लाल दुपट्टा मलमल का।
0: लाल दुपट्टा मलमल का
1: गाने का बोल रहे क्या करते थे साजना,
0: क्या करते थे साजना। तो आइए हम और आप मिलकर सुनते हैं गीत।

तो अब इसी के साथ हेलो मनपसंद कार्यक्रम से आज अपने ओम प्रकाश को दीजिए इजाज़त। लेकिन जाने से पहले हम आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू कर लें। श्रोता दोस्तों, हर बुधवार को रिकॉर्डिंग की जाती है, वैसे तो हमारे तमाम श्रोता जानते हैं, लेकिन जो हमारे श्रोता नहीं जानते हैं और हम चाहते हैं, बहुत सारे कॉल आते हैं दोस्तों, लेकिन कहते हैं ना दिल मांगे मोर, तो और भी चाहते हैं नए श्रोता हमसे जुड़ें और हम नए श्रोताओं के भी हो जाएं। इसके लिए हमें बताना होगा और हम बता रहे हैं कि हर बुधवार को पूर्वाह्न 11 बजे से लेकर 12 बजे तक रिकॉर्डिंग की जाती है और रिकॉर्डिंग का फ़ोन नंबर है, आप नोट कर लें, 0618421130। आपकी सहूलियत के लिए एक बार फिर से नंबर दोहरा दें, 0618421130। अब इसी के साथ हेलो मनपसंद आज का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। नमस्ते।

हेलो मनपसंद, अभी आप सुन रहे थे हमारा फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम। सूत्रधार थे ओम प्रकाश, प्रस्तुतकर्ता संतोष कुमार। शिक्षा वह ज्योति है जिससे ज्ञान का प्रकाश फैलता है, अज्ञान का अंधकार छंटता है। शिक्षा की ज्योत जलाने की शुरुआत आप कहीं से भी कर सकते हैं।

जल का संचय भविष्य का सुखद संदेश है। पानी को यूं ही व्यर्थ न बहने दें, संभव हो तो बरसात के पानी को भी इकट्ठा करें।

हमारी छोटी छोटी बचतें भी बड़े संग्रह का रूप ले सकती हैं। बचत की आदत डालें, भविष्य को सुरक्षित बनाएं। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित समाचार संध्या। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश रवाना। कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। वियतनाम में नाव दुर्घटना में 15 भारतीयों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदा विधेयक की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान। फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉर्वे और इंग्लैंड तथा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला। और तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ऐतिहासिक 2 दिवसीय न्यूजीलैंड यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। 4 दशकों से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा रही जिसने दोनों देशों के संबंधों को नई गति दी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को न्यूजीलैंड का विश्वसनीय मित्र बताते हुए भारतीय समुदाय के योगदान और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत है।
2: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूँ हम सफल होंगे।
1: मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसके अध्यक्ष होंगे। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। गोवा में मीडिया से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली 41 सदस्यीय समिति सरकारों, राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के विचार जानने के लिए राज्यों का दौरा कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट के आज वियतनाम के फुक्वोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर

0: पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों में से 10 तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश से और 2 केरलम से थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटकों, 3 चालक दल के सदस्यों और 1 परिचारक सहित कुल 36 लोग सवार थे। 17 यात्रियों और चालक दल के 4 सदस्यों सहित 21 लोगों को बचा लिया गया और अस्पतालों में भर्ती कराया गया। 2 जीवित बचे लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें गहन चिकित्सा देखभाल दी जा रही है। एक रिपोर्ट।
1: 32 भारतीय पर्यटकों और 4 चालक दल के सदस्यों को ले जा रही यह नाव होन में रूत नोगोई द्वीप से लगभग 400 मीटर दूर पलट गई, जिसके बाद बचाव अभियान शुरू किया गया। हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि खोज और बचाव अभियान जारी है। कुछ घंटे पहले हुई इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। वहीं प्रभावित परिवारों को जानकारी और सहायता प्रदान करने के लिए हो ची मिन्ह सिटी स्थित भारतीय दूतावास में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। यहां 8436789185523714 और 8433452414 नंबरों से संपर्क किया जा सकता है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई इस दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। अपने संदेश में उपराष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने व्यक्तित्व निर्माण में पुस्तकालयों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए युवा पीढ़ी से पुस्तकालयों से जुड़ने की अपील की है। आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने राष्ट्र निर्माण में पुस्तकालयों की भूमिका का उल्लेख किया और कहा कि वे आधुनिक शिक्षा के साथ साथ जन समुदाय में देश की संस्कृति और ज्ञान के प्रसार का सशक्त माध्यम हैं। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय में 32,000 से अधिक पुस्तकों का संग्रह है। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय में शोधकर्ताओं के लिए समर्पित सुविधाएं, एक आधुनिक बहुउद्देशीय सभागार, समकालीन पाठन क्षेत्र, बाल क्षेत्र, एक शोध केंद्र और 1 करोड़ ऑनलाइन पुस्तकों तक पहुंच प्रदान करने वाला एक ई पुस्तकालय मौजूद है। पुस्तकालय में हर स्थान पर मुफ्त वाईफाई उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि कई मॉनिटर भी लगाए गए हैं, जिससे आगंतुक अध्ययन के दौरान नोट्स ले सकते हैं, सामग्री डाउनलोड कर सकते हैं तथा अपने विचारों को और विकसित कर सकते हैं। पुस्तकालय अत्याधुनिक RFID आधारित पुस्तक प्रबंधन प्रणाली से सुसज्जित है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना ने देश भर में 2 लाख से ज्यादा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण मंजूर करने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। योजना के अंतर्गत 20,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है और लगभग 11 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। नई दिल्ली में आज विशेष कार्यक्रम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये उपलब्धि भारत की खाद्य प्रसंस्करण विकास यात्रा के अगले चरण के लिए मजबूत आधार है। श्री पासवान ने योजना के तहत मिलने वाली सीड कैपिटल की सहायता का भी उल्लेख किया। इसके माध्यम से 4,18,000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की मदद की गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय है मां और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विश्व जनसंख्या दिवस 2026 के अवसर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सर्वोत्तम पद्धतियों पर मासिक वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच स्वास्थ्य सेवा नवाचारों को साझा करना और उनका विस्तार करना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने

0: आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 भी अपनाई गई।
1: ट्रांसपोर्ट सेक्टर में विशेष रूप से हमारी रोड सेक्टर, रेलवे, जलमार्ग और एविएशन, एक क्षेत्र में कार्बन न्यूट्रल हम कैसे बने, अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल का भी उपयोग कैसे करें और प्रदूषण से तो मुक्ति मिलेगी भी, और उसके साथ साथ जो नई नई टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, रिसर्च है, अलग अलग ब्रिक्स देशों में एक दूसरे में कैसे कोऑपरेशन करें, कोऑर्डिनेशन निर्माण करें, इसके बारे में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है और उसमें आगे की नीति भी तय हुई है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों में देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इन इलाकों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा शामिल हैं। इस बीच विभाग ने कल असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम और बिहार में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिनों में बारिश वाले इलाकों के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश में कल लू की स्थिति हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के फिर से सक्रिय होने के बाद महाराष्ट्र में खरीफ फसल की बुआई में तेजी आई है। कृषि आयुक्त कार्यालय के अनुसार 6.51 हेक्टेयर पर बुआई पूरी हो चुकी है। इस बुवाई में 7 जुलाई तक गन्ने को छोड़कर राज्य के 14.44 करोड़ हेक्टेयर औसत क्षेत्र के 45% हिस्से को सम्मिलित किया गया है। गन्ने की खेती सहित 6.58 करोड़ हेक्टेयर में बुवाई और रोपाई का काम पूरा हो चुका है। ये कुल क्षेत्र का 42% है। तूफान बावी के चीन के पूर्वी तट की ओर बढ़ने के कारण चीन में एहतियातन 6 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। ये तूफान जापान के साकिशिमा द्वीपों और उत्तरी ताइवान से गुजरने के बाद अब चीन के लिए खतरा बना हुआ है। मेघालय अनानास महोत्सव 2026 का चौथा संस्करण नई दिल्ली के दिल्ली हाट में शुरू हो गया है। इसमें बाजार संपर्क को बढ़ावा देने के लिए राज्य के अनानास उत्पादकों को प्रदर्शित किया जा रहा है। और अब खेल खबरें। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। फ्रांस और स्पेन पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम, प्रीतिका प्रदीप और चिकिता तनिपार्थी की टुकड़ी ने आज तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में रजत पदक अपने नाम किया। टीम को महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा के फाइनल में कोलंबिया से हार का सामना करना पड़ा। वहीं प्रीतिका प्रदीप ने व्यक्तिगत महिला कंपाउंड में कांस्य पदक जीता। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में चेकिया की कैरोलिना मुखोवा और लिंडा नोस्कोवा आमने सामने हैं। वहीं पुरुष डबल्स के फाइनल में ब्रिटेन के हेनरी पैटन और फिनलैंड के हैरी हेलियावारा ने क्रोएशिया के मटे पाविक और अल साल्वाडोर के मार्सेलो अरेवालो की जोड़ी को 7-6, 7-6 से हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया है। भारत ने इंग्लैंड के साथ 5 T20 मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला साउथहैम्पटन में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 16 ओवर में 1 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर रखी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट मैच लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर खेला जा रहा है। दूसरे दिन आज भारत ने अपनी दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक बिना विकेट गवाए 42 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड की पहली पारी 170 रन पर सिमट गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश रवाना। कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। वियतनाम में नाव दुर्घटना में 15 भारतीयों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने

0: शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदा विधेयक की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया और फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉर्वे और इंग्लैंड तथा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9 बजे हैं। लोकधारा के अंतर्गत लीजिए सुनिए कुछ लोकगीत।

लोकधारा कार्यक्रम में अभी आप भोजपुरी लोकगीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, महफिल।

किसी की शामें सादगी, शहर का रंग पा गई, सबा के पाँव थक गए मगर बहार आ गई। अभी आप सुन रहे थे दर्शन सिंह जी महाराज का लिखा नगमा, गायक कलाकार थे गुलाम अली। इन्हीं गीतों के साथ ही आज की महफिल अब यहीं संपन्न होती है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती के मुंबई केंद्र से कार्यक्रम आज के फनकार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है? यशोदन, एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: यशोदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोलो रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे यशोदा आ गई सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

0: नमस्ते दोस्तों। दोस्तों आज के फनकार में आज एक ऐसी फनकार जिन्होंने अपनी गायकी से सबके दिलों को लुभाया।
1: अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना।

0: प्यार का।
1: जिन्होंने अपनी अदाओं से लोगों को मोहित किया, जिन्होंने अपनी मेहनत से हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की और महज 13 बरस की उम्र में वे मुंबई

0: चलिए दोस्तों, अब आपको बता ही देते हैं, आज की फनकार हैं गायिका उमा देवी यानी टुनटुन।
1: हमारे देश के, मेरे इधर के उधर के, आमने के सामने के, थोड़े भाइयों थोड़े मेरे प्यारों, मेरा आप सबको बहुत बहुत मोटा मोटा आशीर्वाद, प्यार और फिर छोटा सा मुन्ना सा नमस्कार।
0: टुनटुन नाम से उन्होंने अपने अभिनय की पारी जीती। 1947 में उमा देवी को अपना पहला एकल गीत गाने का मौका मिला, जिसके लिए उन्हें 200 रुपए की राशि भी मिली थी और ये राशि उन दिनों बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी।
1: सुरैया जी, फिल्म स्टार सुरैया, हाय हाय हाय हाय, उन्हीं के साथ मेरा पहला मौका गाना गाने का दर्द में मिला। आप लोग काफी सुनते हैं ये गाना, उसमें मैं भी हूँ उनके साथ, उनसे लिपटी खड़ी होके गाना गा रही थी, बेताब है दिल दर्द मोहब्बत के असर से। इसी में हम दोनों ने अपनी अपनी गाने की अदायगी की है।

0: मेरी नजर।
1: दोस्तों, उमा देवी को नौशाद साहब का संगीत बहुत पसंद था। जब नौशाद साहब ने उमा देवी का ऑडिशन यानी स्वर परीक्षा ली तो वे भी उमा देवी के गायन से काफी प्रभावित हुए और जब दर्द में उन्होंने पहला गाना गाया तो पहला ही गीत सुपर डुपर हिट हुआ। उसके बाद तो उनके गायन का सिलसिला तेजी से चल पड़ा।

गाना। जब ये यूपी में पिक्चर लगी, इसका नाम है अनोखी अदा। तो साहब सिनेमा में इतने पैसे फेंकते थे इसके रिदम और गाने पर कि मैं बयान नहीं कर सकती।

0: मात्र चूंकि संगीत की दुनिया बदल रही थी और नई प्रतिभाएं अपना असर दिखा रही थीं, इसलिए उमा देवी के गाने लगातार कम होते चले गए। उन्होंने अपने दोस्त दिलीप कुमार साहब से कहा कि वो अपनी किसी फिल्म में अभिनय का मौका दें। इस तरह 1950 की फिल्म बाबुल में पहली बार नजर आई दिलीप कुमार के साथ।
1: देखो पहले मैं गाने गाती थी और अच्छी बहुत मशहूर हीरोइनों के गाने दिए मैंने, तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा शौक पैदा हुआ कि मैं भी हीरोइन बन जाऊं। अब मुश्किल ये हुई कि हीरोइन सिंगल होती और मैं डबल। मैंने दिलीप कुमार जी के संग रोल लिया और वो पिक्चर थी बाबुल। बाबुल में मैं उनकी प्रेमिका थी, लेकिन मुश्किल ये हुई कि दो तीन हाथ मारे तो वो फिर पलट के कभी नहीं।
0: दिलीप कुमार ने ही उनका नया नाम रखा था टुनटुन।

0: उमा देवी के गायन का सफर दोपहर की तेज धूप की तरह चमका, लेकिन इससे पहले कि शाम ढले यानी उनके गायन का सफर धीमा हो, उन्होंने एक नया रास्ता चुन लिया। वो रास्ता था अभिनय का, और अभिनय का ये सुझाव भी संगीतकार नौशाद की ओर से ही था, और उमा देवी बन गईं टुनटुन।
1: हाय हाय हाय हाय।
0: हास्य अभिनेत्री के रूप में उन्होंने अनगिनत किरदार निभाए, और फिल्मी पर्दे पर लोगों को दिल खोलकर हंसाना उनका शगल बन गया।
1: हाय हाय हाय हाय।
0: लोगों को उमा देवी के करियर का ये दूसरा रास्ता इतना पसंद आया कि लोग आज भी उन्हें टुनटुन के ही नाम से याद करते हैं। एक रूढ़िवादी पंजाबी परिवार में जन्मी उमा देवी को परिवार की ओर से कोई बढ़ावा या कोई मदद न मिली, इसलिए जीवन के खट्टे मीठे रास्तों को तय करती हुई अपने हुनर को ही उन्होंने अपनी जिंदगी में मील का पत्थर बना लिया।

0: 50 और 60 के दशक में टुनटुन ही एक महिला कॉमेडियन थी जिनके पर्दे पर आते ही हॉल में ठहाके गूंजने लगते थे। उस दौर में हर दूसरी तीसरी फिल्मों में वे नजर आया करती थीं। ये थी उनके अभिनय की कामयाबी और यही थी उनकी प्रतिभा। गुरुदत्त के साथ टुनटुन ने 3 फिल्मों में अभिनय किया, प्यासा, मिस्टर एंड मिसेस 55 और आर पार।
1: मोहब्बत

0: शिकायत कर लो।
1: अमिताभ बच्चन के साथ टुनटुन नजर आई फिल्म नमक हलाल में। दोस्तों आखिरी बार टुनटुन फिल्म कसम धंधे की में नजर आई। आज उमा देवी यानी टुनटुन हमारे बीच नहीं है, लेकिन वे अपनी आवाज अपने फन के जरिए आज भी हम सबके दिलों पर राज कर रही हैं।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गायिका उमा देवी यानी टुनटुन पर। शोध, आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर कर

FM 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बजे हैं। रस रंग के तहत लीजिए सुनिए कुछ एल्बम सॉन्ग्स।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: और अब आइए सुनते हैं शंकर महादेवन को।

इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से रस रंग के अंतर्गत हिंदी एल्बम सॉन्ग्स। आइए सुनते हैं सुनिधि चौहान की गाई ये रचना।

अभी आपने अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में ये रचना सुनी और इन्हीं रचनाओं के साथ ही एल्बम सॉन्ग्स कार्यक्रम रस रंग अब यहीं संपन्न होता है।

हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:30 हुए हैं और यह वक्त है जब आप सुनना चाहते हैं सुरीले नगमे, मीठे नगमे, प्रेम के, प्यार के, प्रीत के, मोहब्बत के शानदार नगमे। चलिए हम आपकी तमन्ना को पूरी करते हैं और आपके लिए पेश करते हैं कार्यक्रम चित्रपट तराने। चित्रपट तराने कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता दोस्तों को संजय चतुर्वेदी का सप्रेम नमस्कार। श्रोताओं, जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती हैं,

रात ढलती है और जैसे जैसे रात ढलती है हमारे सपने भी जवान होते हैं, क्योंकि उस समय अपनी आँखों में हम ख्वाब सजाए बैठे होते हैं, जो किसी की खूबसूरती का होता है, किसी कामयाबी का होता है या किसी योजना का होता है। तो रातों को अपनी आँखों में ख्वाब सजाइए और ख्वाबों को मूर्त रूप भी दीजिए इन शानदार गीतों के साथ।

जिंदगी की राहों में पसंद और नापसंद, ये दो ऐसे होते हैं जिनसे हमारा वास्ता हर रोज़ का होता है। कोई चीज़ हमें रास आती है, कोई रास नहीं आती है, कोई निराश कर जाती है, लेकिन ज़िंदगी का मतलब ही है कि आप आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपनी मंजिल की तरफ चलिए, मुस्कुराते हुए रहिए, राहें आसान हो जाएंगी।

गज़ल की रोशनी में हल्के हल्के आई है, तुम्हारी याद तो मखमल पे जल के आई है, भिगो रहे हो कहाँ से इतनी नज़रों से, कहाँ से ऐसे मोहब्बत में ढल के आई हो।

खुदा के सामने हूरों में तुम भी मिल जाना, तुम ही को मांगना है इंतखाब करके मुझे।

हिंदुस्तान का तेरा तू? हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ,

मोहब्बतों के तकाजे चैन से मरने नहीं देते, यहाँ ऐसे मंजर हैं कि दिल भरने नहीं देते।

तो सोचता हूँ आज के इस कार्यक्रम से संजय चतुर्वेदी को इन्हीं गीतों के साथ दीजिए आज्ञा। नमस्कार, ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है FM बैंड के 103.4 MHz पर। एक नज़र हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। प्रातःकालीन प्रसारण में 7:30 पर आप सुनते हैं नमस्ते रोहतास, प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम, और 8:20 पर अपनी फरमाइशों के फिल्मी नगमे सुनिएगा पसंद आपकी कार्यक्रम में। आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार आप 8:40 पर सुनते हैं और 9:10 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे फिल्म संगीत कार्यक्रम गीत मलिका। श्रोताओं, कल रविवार है और कल के दिन हमारे नन्हे श्रोता अपना साप्ताहिक प्रसारण सुनते हैं अंकुर। जी हाँ, आप भी सुनिएगा, सुनना नहीं भूलिएगा 10:05 पर।

0: हमारे सांध्यकालीन प्रसारण में गांव घर कार्यक्रम आप सुनेंगे 6:10 पर आकाशवाणी के पटना केंद्र से भोजपुरी समाचार बुलेटिन 6:05 पर और लोक गीत सुनिएगा संध्या 6:00। गुड इवनिंग रोहतास, आप हमारे केंद्र से प्रतिदिन सुनते हैं 7:15 पर। अब एक नज़र कल के मौसम पूर्वानुमान पर। कल यानी रविवार को न्यूनतम तापमान 30°C अधिकतम 36°C रहने का अनुमान है। हवा की रफ्तार 18 किलोमीटर/घंटा हो सकती है और आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी 60% यहाँ 60% संभावित है। कार्यक्रम संबंधी सूचनाएं और मौसम पूर्वानुमान संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है FM बैंड के 103.4 MHz पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित समाचार, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: पर अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे। 11:10 पर समय होगा आपकी फरमाइश कार्यक्रम का। आइए सुनते हैं समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गई हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्यौरा हमारी विशेष संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ऐतिहासिक 2 दिवसीय न्यूजीलैंड यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। 4 दशकों से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा रही जिस

0: ने दोनों देशों के संबंधों को नई गति दी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को न्यूजीलैंड का विश्वसनीय मित्र बताते हुए भारतीय समुदाय के योगदान और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत राय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठन करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के चुनाव के एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। गोवा में मीडिया से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली 41 सदस्यीय समिति सरकारों, राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के विचार जानने के लिए राज्यों का दौरा कर रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा लगाए गए उस आरोप की आलोचना की है जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अब्दुल्ला का ये बयान अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट के आज वियतनाम के फु कोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों में से 10 तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरलम में से थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटक, 3 चालक दल के सदस्यों और 1 परिचारक सहित कुल 36 लोग सवार थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। साउथैम्पटन में खेले जा रहे 5 T20 मैचों की श्रृंखला के अंतिम मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत के सामने 258 रन का लक्ष्य रखा है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 19वें ओवर में 7 विकेट पर 193 रन बना लिए हैं। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अमृत भूषण। Prime Minister Narendra Modi has concluded his historic 2-day visit to New Zealand and departed for India. The visit, the first by an Indian Prime Minister to New Zealand in over 4 decades, gave a major boost to bilateral ties. During the visit, Mr. Modi held talks with his New Zealand counterpart, Christopher Luxon. The two leaders witnessed the exchange of 5 memoranda of understanding in areas including defence, tourism, sports, disaster management and dairy and animal husbandry. A major highlight of the visit was the community event